मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 20 मई 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक

0: व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड और मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रकृति मानो अपने सबसे सुंदर रूप में सज जाती है खुशहाली और उमंग। जी हाँ, इस ऋतु में हर जीव जंतु और मनुष्य के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। पक्षियों का चहचहाना, मधुमक्खियों का गुनगुनाना और हवा का सुगंधित होकर वातावरण को आनंद में

प्रभु की वंदना, ईश्वर को स्मरण करने, उनकी कृपा प्राप्त करने और मन को शांति देने का एक पवित्र मार्ग है। इसे सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है।

प्रार्थना सच्चे दिल से परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर और विश्वास के साथ की जानी चाहिए, न कि केवल शब्दों को दोहराकर। ये प्रार्थना परमेश्वर की स्तुति, क्षमा, मार्गदर्शन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए निवेदन का एक सही तरीका सिखाती है।

0: वंदना, अभी आप भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: स्वामी विवेकानंद का जन्म जब हुआ था तब भारत अनेक बुराइयों से जूझ रहा था। उनमें अशिक्षा भी एक थी। लॉर्ड मैकाले की क्लर्क बना देने वाली शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार हो चुका था। विवेकानंद इस शिक्षा पद्धति के विरुद्ध थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि शिक्षा के अभाव में राष्ट्र का युवा उन्नति नहीं कर सकता और न भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां दूर होंगी। इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यानों के माध्यम से शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास किया और कहा कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य के अंदर उस देवत्व को अभिव्यक्त करना है जो उसमें पहले से ही विद्यमान है। बालकों को शिक्षा देते समय और भी एक बात याद रखने की यह है कि उन्हें मौलिक चिंतन करने को उत्साहित करना होगा। यदि इस प्रकार बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वे लोग ठीक ठीक मनुष्य बनेंगे और जीवन संग्राम में स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। तत्कालीन शिक्षा पर स्वामी जी ने व्यंग किया था कि यह क्लर्क पैदा करने की मशीन के सिवाय कुछ नहीं है। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद को इस देश के शिक्षकों से काफी अपेक्षाएं थी। उन्होंने कड़वे सच के साथ कहा कि गुरु को अपना व्यक्तित्व पहले आदर्श बनाना होगा, उज्जवल चरित्र रखना होगा, तभी शिष्य या छात्र उनके साक्षात संपर्क में रहकर सच्ची शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षक बालकों के अंदर प्रसुप्त ब्रह्म को जगाएं, उन्हें मौलिकता से परिचित कराएं और स्वयं आदर्श छवि प्रस्तुत करें। वे चाहते थे शिक्षा ऐसी हो कि गुरु शिष्य संबंधों की उपेक्षा न हो, गुरु मात्र वक्ता न हो, वह छात्र के मस्तिष्क में ऐसा ज्ञान भर दे जो शिष्यों की प्रवृत्ति के अनुसार हो, उसकी अवस्था के अनुसार हो, उसे केवल गलतियां न बताकर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने में सहायता करे, छात्रों की भावना को ठेस न पहुंचाए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नारियों के संबंध में विचार कुछ इस तरह प्रकट किए कि क्या महिलाएं पर्दा प्रथा से सुरक्षित रह पाएंगी। सुरक्षा के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। उन्हें धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, रसोई, सिलाई,

0: जोड़ दिया। शिक्षकों को छात्रों के सामने अपने व्यक्तित्व को आदर्श बनाने की बात कही। वहीं नारी को भी शिक्षित करने की आवश्यकता अपने व्याख्यानों के माध्यम से बताई।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे, आलेख और स्वर था पद्माक्षी अवस्थी का। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, भूपेंद्र सिंह ए हरिहरन और साथियों के स्वर में। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: काश्तकार दादा दीदी मन, आज मैं तुमके नड़ेर चो कमानी वाट के सांगे। नड़ेर चो कमानी काजे कम ले कम 1.2 मीटर गड़िया माटी बीती ठान खूबे नगत रहे से। संगे संगे हुन ठान चो पानी धर तो सकत बले नगत रतो राय। खाले बाटे ठस पखना बीती पानी थेबलो खाले चो भूई आरु आगर चिकन माटी नड़ेर कमानी काजे नगत नी रहे। नड़ेर चो कमानी काजे पानी होतोर नगत वर्षा होतोर आरु सिंचाई बले खूबे जरूरी आए। नड़ेर चो नगत किसी मन के सुना। पहिल किसिम आए केरा बस्तर, जोन ठान ने आगत ले नड़ेर कमानी नी कर सोत असन ठान काजे ये किसिम खूबे नगत आए। ये किसिम सूखा सहनशील किसिम आए। ये किसिम ने गोटो गच ने 85 ठान फर फरे से। फर ने पानी 330 मिलीलीटर तक रहे से और पानी स्वाद बीती रहे से। असनी दूसर किसिम के बले आमी धरुक सकूं, दूसर किसिम मंचो नाव मन के मैं सांगून दे से IND 051 IND 039 कल्प मित्र चंद्र शंकरा लक्षदीप आर्डनरी। ये सपाय नड़ेर चो किसिम मनात। ये सपाय किसिम संगे नड़ेर चो उपजन के आगर करतो काजे शीतकार बेरा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ले कम होन गेले सिंचाई आगर करुक लागे से। संगे संगे जेठ बतर ने अप्रैल ले जून महीना सिंचाई के कम नी होक देतो राय और राती बेरा कचरा काड़ी मन के डसाउन कोमला करतो राय। बीज के छाटून भाती नर्सरी ने जून जुलाई महीना ने लगाउक पड़े से। फिर हुता गोटोक बरख ने तैयार होलो बूटा, जेथा ने गोटोक ले 6 ठान पाना होली से बूटा आधा भीता महा मोटरो हो और पाना फुटू रहो असन बूटा मन के लगातो राय। एचो कमानी काजे भूई के साफ सफाई करुक लागे से। डेंग था खोय से जाले सम बनाउक लागे से। फिर 1 मीटर लाम ओसार आरु गड़िया खोदरा खोड़ूक लागे से। ये काम अप्रैल महीने करतो राय, तेबे खोदरा ने घाम पाए दे और कीड़ी माकड़ी बीमारी चो नानी कीड़ी घाम पाउन मरुन जादे। फिर जून ने खोदरा के माटी आरु नगत सरलो गोबर के मिसाउन भरतो राय। जसन सिंचाई काजे सुविधा आसे बल्ले रोपतो काम बरसाले 20-25 दिन पूरे बल्ले होक सके। जेचोले वर्षा मूर होतले बूंद नगद बसुन रहे दे। मांतर लेख करतो राय कि बूटा मंडालो ठान ने पानी नी थेबो। नड़ेर बूटा के 11 हाथ लामी लामा मंडातो राय। चौकोन हिसाब ले मंडाले 2.5 एकड़ ने 177 ठन बूटा मंडातोर हो सके। बूटा मन के मंडाते खन खूबे राखा जागा करुक लागे से। रोप तो बूटा के आगर घाम ले बचा तो काजे छाए देतो राय और सिंचाई करते रहतो राय। वर्षा बेरा पानी निस्का तो नंगत हिसाब रहतो राय और शीतकार बेरा बूटा के बचा तो काजे सिंचाई करते रहतो राय और बूटा लगे लगे कुमला करते रहतो राय। बूटा लगे चो ठान ने लाटा बूटा नी रहुक देतो राय। नड़ेर बूटा चो नंगत बाढ़ती काजे वर्षा मूर हो तो पहिल 40 ले 50 किलो गोटोक गच हिसाब ने जैविक खत दिलो ने नंगत रहे से। गोबर खत नहाले कंपोस्ट संगे 5 किलोग्राम लीमचो खत के लगाले माटी सुधरे से और पानी धरतो सकत बाढ़े से चे। संगे संगे स्त्रवण नावचो बीमारी ले बले बूटा बाचे से। नड़ेर बूटा ने 200 ले 300 लीटर पानी गोटोक बूटा हिसाब ले 4-4 दिन ने जेठ बत्तर ने देतो राय। शीतकार बेरा 1-1 हफ्ता पाछे पानी देउक लागे से। पानी कम रलो हिसाब ने नड़ेर गच्चो चारो कुती 2 फीट ले 4 ठान भीने भीने ठान ने टपक सिंचाई

0: हिसाबले 60 ले धरून 80 लीटर पानी रोजे दिना हिसाबले दिलो ने बले हुक सके। नड़ेर बूटा ने तना श्रवण बीमारी जौटे से, ये होलो ने गच ने खंडिया खंडिया महा होन जाए से, हुताले लाल धमसिया महा रंग बोय से, जोन सुकून भाती करिया होन जवाय। ये जुलाई ले नवंबर तक हो से, ये रोग होलो ने बूटा मुरुक सके। ए चोले बचा तो काजे बरसा मूर होलो बेरा गोबर नहले कंपोस्ट खत संगे 5 किलोग्राम लीम खली गोटोक गच्चो हिसाब ने रोजे बरक देतो राय। रोग होन गेलो ने सबले पहिल करिया लसा के छेनी संगे काटून निस्काउन देतो राय और हुता ट्राइकोडरमा विरडी एके लिपून देतो राय। असन होलो ठान ने बार्डो पेस्ट बल्ले 100 ग्राम तूतिया और 100 ग्राम चूना के 1 लीटर पानी ने घोरून लिपलो ने बले गुणकारी होय से। गोटोक रोग होय से शिखर अवरुद्ध, ये रोग होलो ने पाना मंचो पूरे बाट कोचमलो महा पाना झोपा ने निकरतोर, पाना चो पूरे बाना दखा देतोर, पाना कम होतोर दखा दे से। ये रोग माटी ने बोरान जीनिस कम रलो ने होय से, एक आजे माटी परीक्षा करालो ने माटी ने बोरान जीनिस कम दखा दिलो ने बरक कार ने 2000 फरवरी ले मार्च और अगस्त ले सितंबर ने 50 ग्राम सुहागा गोटोक गच्चो हिसाब ने देतो राय। दादा दीदी मन, ये रहे नड़ेर कमानी चो वाट, असन हिसाब ले कमानी कर लो ने तुम्ही नड़ेर चो खूबे उपजन पाउक सकास।
1: बेड़ा खाड़ा चो गोट, अभी आप सुन रहे थे ये कृषि समय की कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली वाद्य धुनों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उलट भैरम पाड़। वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

हुलहुली। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उलट भैरमपाड़। वादक कलाकार थे भारत और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आज सुबह 7:30 पर हल्बी समाचार बुलेटिन और शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया जाएगा। नमस्कार जगदलपुर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। इसमें आप सुनेंगे स्वास्थ्य की बातें और होगी फिल्मी गीतों से सजी मधुरिमा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें आप सुनेंगे आशिकी फिल्म के नगमे। गुलशन, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीर्षक गीत सुबह 10:00। शीर्षक होगा चूड़ी। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिएगा जलधर और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

एक ही कलाकार सुबह 11 बजे आधारित होगा। पार्श्व गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता दिलजीत दोसांझ पर सुबह 11:30 पर विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम सब रस में। लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में सुनिएगा मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

दोपहर 12:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगूट आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं एफएम बैंड पर। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी आज शाम 5:00। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे।

गे हल्बी बोली में। शाम 7 बजे होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर आम चो गांव। ग्रामीण श्रोता आनंद लेंगे अपने इस कार्यक्रम का शाम 7:21 पर। रात्रि 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम कुड़ई फूल में सुनिएगा मेरी राम बघेल और साथियों के गाये भत्री लोकगीत। पीलामन का जे गोट रात्रि 8:30 बजे, इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, प्रस्तुति होगी माधुरी यादव की। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। वाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जैविक खेती मिशन के बारे में रात्रि 9:30 पर, प्रस्तुति दीपिका ठाकुर की। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा ग्राम विकास संगठन की पारंपरिक व्यवस्था इस विषय पर। श्रीमंधर रामनाग से ली गई बलबीर सिंह कच्छ की ये भेंट वार्ता। रजनीगंधा पुराने फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर। ये तो थी हमारे केंद्र से आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं समाचार, क्रमशः संस्कृत और फिर हिंदी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3rd दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

आज के नमस्कार जगदलपुर में आपके लिए है स्वास्थ्य की बातें। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता, समाचार और मधुरिमा की सौगात। श्रोताओं, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जी हाँ, आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो मुस्कुराते रहिए और हार को हराते रहिए। श्रोताओं नमस्कार, जगदलपुर में आज आपके साथ हूँ मैं यानी कौन? जी हाँ श्रोताओं, आपने सही पहचाना, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शेफाली। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 20 मई है और इतिहास के पन्नों को अगर पलटें या कैलेंडर में देखें तो ये दिन वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी का भी दिवस मनाया जाता है, पर क्यों? आइए जानते हैं। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों जैसे परागणकों यानी कि पॉलिनेटर्स के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। इस तारीख का चुनाव आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जांसा की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था, जिनका जन्म इसी दिन सन 1734 में हुआ था। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारी थाली में आने वाले लगभग एक तिहाई, जी हाँ लगभग एक तिहाई खाद्य पदार्थ मधुमक्खियों और अन्य परागणकों पर निर्भर हैं। अगर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देखें तो मधुमक्खियां पौधों, फूलों और जंगलों के प्रजनन में सहायता करती हैं, जिससे जैव विविधता का संतुलन बना रहता है। और अगर बात करें आजीविका और पोषण की, तो इससे प्राप्त होने वाले शहद, मोम और अन्य उत्पादों के माध्यम किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय का प्रमुख साधन है। श्रोताओं, अगर सरकार द्वारा भी मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद दिवस NBHM और राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत किसानों को 60 से 90 तक की प्रतिशत की भारी सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। श्रोताओं, आधुनिक समय में कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड्स और प्राकृतिक आवासों के खत्म होने से मधुमक्खियां खतरे में हैं। इस दिन को मनाने और इसके संरक्षण के लिए आप और हम भी मिलकर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपने बगीचे या घर के आसपास अधिक से अधिक फूल वाले पौधे लगाएं, हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें, बगीचे या छत पर मधुमक्खियों और अन्य पक्षियों के पीने के लिए एक छोटा पानी का बर्तन रखें। श्रोताओं, मधुमक्खियों का होना सिर्फ शहद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण के लिए कितना आवश्यक है, इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। अगर हम मधुमक्खी के जीवन को देखें तो पाते हैं कि वो विभिन्न फूलों से रस लेकर एक मीठा पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे शहद कहा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य और त्वचा को निखारने में बेहद लाभदायक है। या ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मधुमक्खी परिश्रम करके शहद बनाती है, जिसका प्रयोग दूसरों के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए प्रेम रूपी रस से जीवन को मीठा बनाएं।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
6: श्रोताओं, गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। हाय ये गर्मी, उफ ये गर्मी, अत्यधिक तपती धरती और पसीने से लथपथ तन बदन। ऐसे में ठंडी ठंडी चीजों का प्रयोग बड़ा राहत देता है, पर जरा रुकिए, ठंडी और गर्मी का ये मेल स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है और क्या, हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे जीवन का अनमोल धन है। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता और लेते हैं इस वक्त जानकारी डॉक्टर रजनी खत्री से, पैथोलॉजी टेस्ट संबंधी सावधानियां इस विषय पर। बातचीत कर रहे हैं दिनेश नामदेव।
7: श्रोताओं, हमारा और आपका सभी का ये अनुभव है कि जब भी हम शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो निदान के लिए हमें कुछ पैथोलॉजी टेस्ट लिखता है और उन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद वो अपना पूरा उपचार करता है। हालांकि प्रारंभिक दवाइयां वो हमें पहले ही लिख देते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये कई तरह के होते हैं और इन टेस्ट को कराने में हमें कई तरह की सावधानियां भी रखनी चाहिए, लेकिन इन कई बातों से हम अनभिज्ञ रहते हैं और हमारी असावधानी से इन टेस्ट की रीडिंग या रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि डॉक्टर को हमारा उपचार करने में परेशानी आती है। कई बार तो हमें एक ही टेस्ट को दो दो बार कराना पड़ता है। तो पैथोलॉजी टेस्ट कराते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी खत्री। आप पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
8: थैंक यू।
7: जैसा कि मैंने कहा कि कई तरह के पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं और डॉक्टर इन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर ही दवाइयां लिखता है, प्रेस्क्राइब करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पैथोलॉजी टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं?
8: देखिए, पैथोलॉजी का कोई एक आंकड़ा नहीं कह सकते क्योंकि ये हजारों तरीके के हो सकते हैं।
7: जी जी।
8: कुछ टेस्ट हम ब्लड से करते हैं
7: जी,
8: कुछ टेस्ट हम यूरिन से करते हैं
7: जी,
8: कुछ स्पुटम से होते हैं
7: जी जी,
8: कुछ हार्मोनल प्रोफाइल के लिए सिर्फ सीरम की आवश्यकता होती है
7: जी जी,
8: और कुछ में हम स्मीयर्स लेते हैं
7: जी,
8: थ्रोट के, वजाइना के, आंखों
7: जी,
8: के
7: जी जी,
8: और ईयर्स के
7: जी,
8: और कुछ में टिश्यूज लेते हैं जैसे बायोप्सीज वगैरह
7: जी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आजकल जो कहा जाता है साइलेंट किलर के रूप में जो जाना जाता है डायबिटीज, हम ऐसे कई लोग प्रायः इसका टेस्ट कराते हैं, तो इसके टेस्ट कराने में कई तरह की भ्रांतियां हैं। पहली बात तो ये कि जो हम फास्टिंग का टेस्ट कराते हैं ब्लड का, तो वो रात में खाना खाने के 12 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, या कभी कभी होता है हमने 11 बजे खाना खाया रात को और सुबह जाकर 6 बजे टेस्ट करा लिया। तो इस संबंध में जबकि हम ब्लड शुगर की टेस्ट करा रहे हैं, चाहे वो फास्टिंग की बात हो या खाना खाने के बाद की बात हो, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
8: देखिए, जहाँ तक ब्लड शुगर का सवाल है, वो नेचुरली साइलेंट किलर तो है
7: जी,
8: और अपने इंडिया में इसका एविडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा
7: जी,
8: है। तो इसके लिए फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल दो तरीके के टेस्ट होते हैं
7: जी,
8: और तीसरा होता है रैंडम
7: जी।
8: रैंडम तो किसी उसका खाने से कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसा कि नाम से सजेस्ट है। बट फास्टिंग जो है उस समय मेनतः दो सावधानियां रखनी चाहिए कि कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि साथ में यूरिन सैंपल में अवश्य कराएं फास्टिंग सैंपल में। पर जैसे लिपिड प्रोफाइल है उसमें हमसे 12 से 14 घंटे की फास्टिंग चाहिए रहती है।
7: लिपिड प्रोफाइल मतलब जो हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं।
8: कोलेस्ट्रॉल सारे बॉडी में जो 5-6 टाइप के फैट्स होते हैं उनका टेस्ट होता है
7: जी जी। और डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि चूंकि हमें कल टेस्ट कराना होता है ब्लड शुगर का, तो हम आज जो भोजन करते हैं बहुत संभल संभल कर करते हैं, तो क्या इससे ब्लड शुगर की रीडिंग पर फर्क पड़ता है?
8: जी बिल्कुल, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। पेशेंट के खाने के समय पर असर पड़ता है कि पेशेंट किस समय खा रहा है और क्या खा रहा है।
7: जी जी,
8: कई बार पेशेंट को ये डाउट रहता है कि कल मुझे शुगर टेस्ट कराना है तो आज मैं कम मीठा खाऊं या नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भरपेट जैसा रूटीन में भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब वैसा ही
7: करना है,
8: नहीं कोई चेंज नहीं लाना चाहिए।
7: जी जी, इसी से संबंधित एक टेस्ट और होता है मैडम, HbA1c, क्या वो भी हमें खाली पेट कराना पड़ता है?
8: नहीं, HbA1c के लिए पेशेंट को खाली पेट रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वो टेस्ट दिन में किसी भी समय किया जा सकता है
7: जी, जी।
8: क्योंकि वो आपके वर्तमान ग्लूकोज की रीडिंग नहीं बताता
7: जी।
8: वो हमें पेशेंट के खून में पिछले 3 महीने में उसकी शुगर की मात्रा कितनी थी वो बताता है। भले उसकी वर्तमान शुगर नॉर्मल हो
7: जी,
8: पर उसका HbA1c बढ़ा हुआ है तो वो डायबिटिक है
7: जी। कई टेस्ट ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब जिन्हें प्रायः खाली पेट कराने के लिए कहा जाता है
8: जी।
7: और कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे खाली पेट होने का कोई संबंध नहीं है
8: जी।
7: तो ऐसे टेस्ट जिन्हें हम भरे पेट भी करवा सकते हैं, यदि वे टेस्ट हम खाली पेट कराते हैं तो क्या उनसे रीडिंग पर फर्क पड़ सकता है?
8: नहीं, जो टेस्ट भरे पेट में करा सकते हैं उस पे रीडिंग पे कोई असर नहीं आता है। पर निश्चित तौर पे जो टेस्ट आपको खाली पेट कराने हैं जैसे कुछ हार्मोन्स हैं
7: जी,
8: और लिपिड प्रोफाइल है और फास्टिंग ब्लड शुगर है
7: जी,
8: और थायराइड है
7: जी,
8: थायराइड प्रोफाइल के लिए टेस्ट, इनके लिए निश्चित तौर पर आपको कम से कम 10 घंटे की फास्टिंग चाहिए
7: जी।
8: पर यदि जो किडनी से रिलेटेड टेस्ट हैं, लीवर से रिलेटेड टेस्ट हैं, या नॉर्मली आपको जो रूटीन टेस्ट हैं, बुखार से रिलेटेड बुखार आपको डायग्नोस कराना है मलेरिया टाइफाइड के लिए, तो उनमें खाने पीने का कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं
7: जी। जी, आपने KFT और LFT की बात की, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट की बात की, तो मैडम इसमें भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे कहीं ना कहीं ब्लड शुगर से जुड़ी रहती हैं। तो यदि हम संयमित भोजन नहीं करते हैं और LFT और KFT कराते हैं तो क्या उसमें कोई दुष्परिणाम की संभावना है?
8: देखिए, दुष्परिणाम की संभावना तो नहीं आती, पर जैसे KFT है जिसे हम RFT भी कहते हैं, रिनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, इट्स अ ग्रुप ऑफ टेस्ट
7: जी,
8: है ना। तो इसमें मेन रहता है प्रोटीन
7: जी।
8: यदि आप प्रोटीन कम या ज्यादा ले रहे हैं तो, और वो किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है, मींस यूरिन में आपका प्रोटीन आ रहा है, तो आपका, आपने यदि वैसी डाइट ली है कम प्रोटीन वाली, तो थोड़ा बहुत असर आ सकता है
7: जी। जी,
8: और LFT जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो मेनली होता है जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल आता है वो उसको फैट को डिसॉल्व करने के लिए होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है
7: जी।
8: तो यदि आपने नॉन फैटी डाइट ली है या बहुत ज्यादा फैटी डाइट ली है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है लिवर एंजाइम्स पे
7: जी, जी, जी।
8: अदरवाइज
7: कोई बहुत
8: असर नहीं।
7: मैडम, यूरिन टेस्ट की बात हम करें तो कई बार डॉक्टर हमसे कहते हैं सुबह की पहली यूरिन चाहिए। कई बार कहा जाता है कि यूरिन का पहला अंश निकाल दें, बाद का अंश निकाल दें, बीच का अंश चाहिए। कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, कभी की भी यूरिन आप दे सकते हैं, तो इस संबंध में आप हमें कुछ बताइए जिससे ये हमसे किसी तरह की असावधानी ना हो जाए।
8: देखिए, यूरिन में मेनली टेस्ट होते हैं यूरिन में शुगर
7: जी,
8: यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, आपने देखा होगा क्लिनिशियन लिखते हैं RM मींस रूटीन माइक्रोस्कोपिक, और तीसरा एक टेस्ट होता है फास्टिंग। तो यूरिन में जो टेस्ट है जैसे शुगर टेस्ट करना है तो वो आपको सेम ब्लड सैंपल के साथ ही कलेक्ट करना है। जैसे आपने फास्टिंग के समय ब्लड सैंपल लिया, उसी समय पे आपको यूरिन सैंपल भी लेना है, और PP के समय खाने के 1.5 घंटे के बाद यदि ब्लड सैंपल लिया तो उसी समय पेशेंट का यूरिन सैंपल भी लेना है। बट जो प्रेगनेंसी के लिए है उसमें हमको फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेडी का कलेक्ट करना पड़ता है। और कई बार पेशेंट के मन में, जैसे आपने बताया कि बीच का सैंपल वो इम्पोर्टेंट है यूरिन कल्चर के लिए, तो इसमें मिड स्ट्रीम यूरिन कहते हैं उसको, मतलब स्टराइल कंटेनर पेशेंट को दिया जाता है, लैब में ही कलेक्ट करवाना चाहिए यूरिन, और इनिशियल फ्यू ड्रॉप्स डिस्कार्ड करवाना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि यूरेथ्रा में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी आ जाएंगे नहीं तो। इनिशियल फ्यू ड्रॉप्स डिस्कार्ड करी पेशेंट ने, फिर बीच का कलेक्ट किया और फिर लास्ट का डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसको हम मिडस्ट्रीम कलेक्शन, ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यूरिन कल्चर
7: जी। मैडम, रूटीन माइक्रोस्कोपिक के लिए क्या करना चाहिए?
8: रूटीन माइक्रोस्कोपिक आप दिन में कभी भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आप कंटेनर जिसमें कलेक्ट कर रहे हैं वो लैब से ही लें, एक दिन पहले लाके ले सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर लैब पे ही कलेक्ट करके तुरंत दे सकते हैं फ्रेश सैंपल
7: जी। मैडम, प्राय डॉक्टर हमें विडॉल टेस्ट भी हमें प्राय लिखा जाता है, तो क्या इनके संबंध में भी किन्हीं सावधानियों की आवश्यकता होती है?
8: नहीं, इनके लिए इतनी जरूरत नहीं रहती। विडाल का जहां तक सवाल है, वो पॉजिटिव ही, विडाल टेस्ट मुख्यतः टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसकी जो एंटीबॉडीज हैं ब्लड में डेवलप ही 7 से 10 दिन के बाद होती हैं, मतलब सेकेंड वीक के बाद ही टेस्ट पॉजिटिव आता है।
7: जी, जी।
8: तो पेशेंट को यदि लंबे फीवर की हिस्ट्री है कि डॉक्टर साहब मेरा बुखार 10 दिन से नहीं उतर रहा है, तो विडाल टेस्ट के लिए जाते हैं।
7: मैडम, कई बार होता क्या है कि हमें जब भी बुखार आता है, हम बिना डॉक्टर को दिखाए क्लोरोक्वीन फास्फेट की गोली खा लेते हैं और उसके बाद हम मलेरिया का टेस्ट कराने लेबोरेटरी जाते हैं। तो कुछ जानकारों का कहना है कि यदि हमने एक गोली भी क्लोरोक्वीन फास्फेट की खा ली, तो जो मलेरिया के पैरासाइट या बैक्टीरिया, आप अपनी भाषा में जो भी बोलती हो, वो माइक्रोस्कोपिक रेंज से दूर चले जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रह पाते।

0: होते हैं T3, T4 एंड TSH। जी। इसमें मेन सावधानी रखनी चाहिए कि कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए पेशेंट की, और सुबह खाली पेट ही सैंपल कलेक्ट करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ये डॉक्टर को अवश्य बताएं कि आपको पहले थायराइड है, और यदि कोई आप टैबलेट ले रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, या फिर कोई टैबलेट ले रहे हैं तो उसके संबंध में भी जरूर जानकारी देनी चाहिए।
1: मैडम, कई बार डॉक्टर हमें स्पूटम टेस्ट की सलाह भी देते हैं, कभी कभी स्टूल टेस्ट की सलाह भी देते हैं, तो इन दोनों के बारे में भी कुछ हमें बताइए।
0: देखिए, स्पूटम एक ऐसा सिक्रीशन होता है जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग से आता है। तो पहली चीज तो पेशेंट को, जैसे हम कंटेनर देते हैं कि भैया इसमें सुबह का स्पूटम सैंपल ले आना, तो वो पहले पैथोलॉजिस्ट को ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये सिर्फ सलाइवा तो नहीं है। सलाइवा मुंह का सिक्रीशन होता है जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, थूक जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। बट स्पूटम पेशेंट को, गांव के पेशेंट है तो उनको बताना पड़ता है खखार चाहिए हमको, तो ये दोनों में डिफरेंस करना चाहिए, है ना। और अर्ली मॉर्निंग डीप कफ स्पुटम को ही कलेक्ट कर लेना चाहिए।
1: आपने कहा कि डीप कफ, तो किस तरह से करें?
0: मतलब यदि पेशेंट को कफ है तो ही डॉक्टर उसको वो रखेंगे। जैसे हल्की खांसी है तो पेशेंट को माइल्ड सा कफ है तो उस पर, कई बार ड्राई कफ होता है, पेशेंट को स्पुटम आता ही नहीं है, जिसे आम भाषा में सूखी खांसी या गीली खांसी कहते हैं। पर यदि पेशेंट को गीली खांसी है तो अर्ली मॉर्निंग डीप कफ स्पुटम कॉन्सेंट्रेट रहता है, जिसमें यदि ब्लड आ रहा है साथ में या बैक्टीरिया फ्लोरा हमें ज्यादा मिलता है तो हम इजिली डायग्नोज कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और कारण है।
1: जी मैडम, इसीलिए डॉक्टर्स प्रायः उस वक्त कहते हैं कि सुबह खूब जोर से खखार ना है और उसके बाद जो कफ निकलता है वो टेस्ट के लिए लाना है। मैडम, इसी तरह हमें स्टूल टेस्ट भी कराना पड़ता है, तो क्या उसके लिए भी हमें कंटेनर हॉस्पिटल का चाहिए होता है, या आवश्यकता अनुसार हम घर में सैंपल निकाल के लेबोरेटरी ले जा सकते हैं, या इस संबंध में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, विशेषकर जब हम स्टूल टेस्ट कराते हैं?
0: स्टूल टेस्ट के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि क्लिनिशियन ने क्या लिखा है। स्टूल फॉर शुगर लिखा है, रिड्यूसिंग शुगर, जो यूजुअली बच्चों में किया जाता है। स्टूल फॉर रूटीन या फिर स्टूल फॉर कल्चर। यदि स्टूल फॉर शुगर और रूटीन के लिए लिखा है तो आप किसी भी साफ कंटेनर में, जिसको पानी से वॉश किया जाए साबुन से, और उसके बाद पूरा साबुन का अंश निकाल के उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा है कि जैसे बच्चों का सैंपल कलेक्ट करना है तो बच्चे, कई बार माएं उनके पैंटी से सैंपल ले आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें वाटर या कंटेंट की मात्रा कितनी है ये समझने में दिक्कत होती है। और स्टूल फॉर कल्चर है तो स्टराइल कंटेनर एक पैथोलॉजिस्ट की लैब से कलेक्ट करके उसमें ही सैंपल कलेक्ट करना चाहिए।
1: मैडम, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक लैब में किसी तरह का कोई टेस्ट कराया और हम उसके दो घंटे बाद दूसरी लैब में कोई टेस्ट कराते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी रीडिंग में फर्क रहता है, रिजल्ट में फर्क रहता है। और ऐसा आजकल जो भी व्यक्ति बीमार होता है वो प्रायः सभी लोग ऐसा करते हैं, वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि इस लैब का रिजल्ट सही है या उस लैब का रिजल्ट सही है, तो ये भ्रांति हम कैसे दूर करें?
0: देखिए, इसमें ये कोई गलत धारणा नहीं है।
1: जी,
0: है ना, टेस्ट में वेरिएशन आ सकते हैं।
1: जी,
0: एक लैब से दूसरी लैब में वेरिएशन आ सकते हैं।
1: जी,
0: ये मुख्यतः इसके कई कारण होते हैं।
1: जी,
0: जैसे पेशेंट के खान पान, पेशेंट ने कोई एक्सरसाइज की है, या एक ही लैब से यदि उसने टेस्ट भी कराया है और अलग अलग आ रहा है तो क्या मशीनें अलग अलग लैब में होती हैं? काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, जिसे हम इंटर लेबोरेटरी वेरिएशन कहते हैं। ये 10% तक एक्सेप्टेबल
1: है,
0: पर उससे ज्यादा नहीं।
1: जी,
0: है ना, आप दो घंटे की बात कर रहे हैं, दो दिनों की बात कर रहे हैं, पेशेंट की ग्लूकोज तो हर मिनट में बदल जाती है।
1: जी,
0: तो हम किसी पर्टिकुलर उसको ब्लेम नहीं कर सकते।
1: जी जी,
0: ये वेरिएशन मान्य है।
1: मैडम, ये भी सुना गया है कि आजकल सारे टेस्ट हैं वो मैकेनाइज्ड हो गए हैं, मशीनों के द्वारा होते हैं, और हमें सैंपल सिर्फ मशीन में डालना पड़ता है और मशीन हमें रीडिंग दे देती है। कुछ जानकारी ये कहते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद यदि किसी का हमने हेमोग्लोबिन टेस्ट किया है तो 45 या 50 बार हेमोग्लोबिन करने के बाद हमें उसे साफ करना चाहिए, फिर कोरिलेट करना चाहिए, फिर उस पर आगे के टेस्ट करना चाहिए। तो मैडम, लेबोरेटरी कितना ध्यान रखती है कि जो उनके पास पेशेंट आते हैं टेस्ट के लिए उनकी रिजल्ट, उनकी रीडिंग सही आए?
0: देखिए, इसके लिए कैलिब्रेशन सिस्टम होता है। आपकी जो मशीनें हैं,
1: जी,
0: नो डाउट आजकल मशीनों का जमाना है, पैथोलॉजी में भी नई नई मशीनें इन्वेंट हो गई हैं, पर ये बात बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि हम मशीनों में सैंपल डाल देते हैं और टेस्ट लग जाते हैं। हर टेस्ट का एक कोरिलेशन होता है। यदि पेशेंट का बिलिरुबिन इतना आया तो उसके साथ SGOT, SGPT, उसके जो लिवर एंजाइम्स हैं, क्या वो भी बढ़ रहे हैं? क्या फिर हम पेशेंट के सैंपल सीरम का कलर देखते हैं, क्या वो भी येलोइश है? क्या उसके साथ जो

0: स्किन सैंपल लिया है, उसको भी डिस्कलरेशन है
1: जी,
0: उसकी उसने कोई क्लिनिकल हिस्ट्री दी है
1: जी।
0: पेशेंट कई बार पैथोलॉजिस्ट को स्पेशली हिस्ट्री नहीं बताते हैं
1: जी।
0: यदि उनके पास कोई हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है या पास्ट हिस्ट्री है
1: जी।
0: तो वो पैथोलॉजिस्ट से छुपानी नहीं चाहिए, वो हमेशा उन्हें अवश्य बतानी चाहिए
1: जी जी। तो मैडम आज पैथोलॉजी टेस्ट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी और हम ये समझते हैं कि जो हमारे सुनने वाले होंगे उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी आज हुई होगी और जो थोड़ी बहुत गलतियां वे करते रहे होंगे अब इस संबंध में नहीं करेंगे। आपको हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य की बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था पैथोलॉजी टेस्ट संबंधी सावधानियां। डॉक्टर रजनी खत्री से भेंट कर रहे थे दिनेश नामदेव। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो सावधानी बरतते हुए स्वस्थ जीवन बिताइए। वैसे भी श्रोताओं, अच्छा स्वास्थ्य सभी सुखों का आधार है, क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन अच्छी सेहत नहीं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों से दूर रहना नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह फिट होना है। मानसिक शांति के लिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन करें और जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।
3: जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं शांति नाग। पहल आज चमूर खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्ला की एतो 5 बरक ने छत्तीसगढ़ चो बस्तर संभाग देश चो सबले बड़े विकसित आदिवासी संभाग बने दे। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर जिला चो नेतानार ने जन सुविधा केंद्र चो करला मूर। बल्ला की एतो 1.5 बरक ने बस्तर ने रलो 70 ठान सुरक्षा शिविर मन के असन सेवा केंद्र मन ने बदलतर हो दे। रायपुर ने होलोबीती कार्यक्रम ने आपातकालीन सेवा डायल 112 भीतरे 400 अत्याधुनिक गाड़ी मन के दखला हरा झंडा। छत्तीसगढ़ चो जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन चो लाभ अमरातो काजे 18 मई ले मूर होली जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। राज्य सरकार गांव चो मेहरार मन के ऊर्जा क्षेत्र ने सशक्त बनातो काजे दीप्ति योजना के दिली मंजूरी। अदाय खबर सरसराले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ चो आपलो 2 दिवसीय प्रवास दाए 18 और 19 मई के रायपुर और बस्तर ने आयोजित कई कार्यक्रम मन ने शामिल होला। केंद्रीय गृह मंत्री 19 मई के बस्तर चो संभागीय मुख्यालय जगदलपुर ने मीडिया ले गोट बात करते बल्ला की एतो 5 बरक ने छत्तीसगढ़ चो बस्तर संभाग देश चो सबले विकसित आदिवासी संभाग बने दे। हुनमन बल्ला की सरकार चो लक्ष्य आय की बरक 2031 तक बस्तर चो लोग मन चो औसत आमदनी 6 गुना तक बढ़ो। केंद्रीय गृह मंत्री बल्ला की बस्तर के नक्सल मुक्त बनालो पाछे केंद्र और राज्य सरकार मिसुन एतो 5 बरक काजे एचो बाढ़ती बीती गोटोक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार करलो आसे। एचो भीतरे बस्तर संभाग ने रलो सुरक्षा बल मन चो 200 असन शिविर मन ले 70 ठान कैंप मन के शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ने बदलतर हो दे। ये सेवा डेरा ले हुता रतो लोग मन के शासन चो सफा योजना मन चो लाभ अमरातर हो दे। जोन थाने बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी और वनोपज प्रसंस्करण शामिल आसे। ये चो संगे ची बस्तर चो हरेक आदिवासी परिवार के गोटो गोटो गाय भैंस देतर हो दे और ये तो 6 महीना ने यथा सरकारी डेयरी चो गोटोक बड़े नेटवर्क तैयार करतर हो दे। ये चो काजे छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB संगे अनुबंध कर ली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्ला की सरकार बाटले बस्तर चो लोग मन के सुरक्षा देतो संगे संगे हुनमन चो पूरा बाढ़ती चो कोशिश बले करतर हो दे। यथा चो जुआन और मेहरार मन चो सशक्तिकरण करतर हो दे। संगे ची जनजातीय संस्कृति चो संरक्षण और संवर्धन हो दे। श्री शाह बल्ला की हिंसा कोनी बले गोट चो समाधान नुआ और लड़ाई झगड़ा ले बल्लो ने हिंसा ले काचे वाड़ती नी होए। हुनमन बल्ला की ये तो 5 बरक ने केंद्र और राज्य सरकार मिसुन बस्तर चो लोग मन तक सरकार चो सफाई सुविधा मन अमरा दे और ए संसार ने बाढ़ती चो गोटोक लोकतांत्रिक मॉडल बने दे। ये चो पहल केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर ने आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद चो 26वीं बसका चो अध्यक्षता करला। ये बसका ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड चो मुख्यमंत्री मन संगे ची केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो चो निदेशक और ये चारों राज्य मन चो पुलिस महानिदेशक और पुलिस और प्रशासन चो बड़े अधिकारी शामिल होला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 मई के अपनो छत्तीसगढ़ प्रवास दाए बस्तर जिला चो नेतानार गांव ने जन सुविधा केंद्र चो मुरकरला। ये जन सुविधा केंद्र के आदिवासी जन नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर चो नाव ने बनालो रासे। ये जन सुविधा केंद्र CRPF चो सुरक्षा परिसर ने बनालो रासे। कार्यक्रम के संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री बल्ला की गेलो 6 दशक ने नक्सलवाद चो कारण ने बस्तर के खूबे बड़े जोन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान होली से हुंचो भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो नेतृत्व ने सरकार एतो 5 बरक ने करे दे। हुनमन बल्ला की एतो 1.5 बरक ने बस्तर ने रलो सुरक्षा बल मंचो 200 असन कैंप मन ले 70 ठान कैंप मन के जन सेवा केंद्र मन ने बदलून हुनमन के आदिवासी कल्याण केंद्र बनातर हो दे। ये सेवा केंद्र मन ने बैंकिंग आधार राशन कार्ड कौशल प्रशिक्षण संगे केंद्र और राज्य सरकार चो सपा योजना मन बीती सुविधा मन देतुर हो दे। एक छाड़ून नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चो सहायता ले बस्तर संभाग ने रतोबीती मेहरार मन के पशुपालन और डेयरी उद्योग ले बले जोड़तोर हो दे। जन सुविधा केंद्र ने जन्म आय जाति और बले कैक प्रमाण पत्र गोट की ठान ने बनाऊ खो दे। ये केंद्र ने मेहरार मन के बैंक सखी चो बले प्रशिक्षण देतर हो से। केंद्रीय गृह मंत्री अमली प्रशिक्षण केंद्र ने ट्रेनिंग धरतो स्व सहायता समूह चो मेहरार मन संगे गोठबात करला और हुनमन ले जानला की कसन हुनमन तेतर बिकुन आपलो आमदनी के बढ़ाए सोत। श्री शाह जगदलपुर ने आयोजित उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम ने बले शामिल होला। ये दाय हुनमन शहीद जवान मन चो घर चो लोग मन सुरक्षा बल मन चो जवान मन संगे ची नक्सल हिंसा ले प्रभावित लोग मन संगे गोठबात करला। कार्यक्रम के संबोधित करते हुनमन बल्ला की जेबे केंद्र सरकार नक्सलवाद के खत्म करतो संकल्प धरू रहे तो हुंचो उद्देश्य माओवाद चो खात्मा करतोर चिन्हुआ बल्कि बस्तर क्षेत्र चो गरीब आदिवासी मन चो जीवना ने हुन सपाई सुविधा मन अमरातोर बले रहे जोन बड़े बड़े शहर मन ने आसे। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर प्रवास दाए जगदलपुर ने अमर वाटिका ने अमरून माओवाद चो विरुद्ध लड़ाई ने सबले बड़े बलिदान देतो बिता शहीद जवान मन के श्रद्धांजलि दिला। ए मौका ने केंद्रीय गृह मंत्री बल्ला की बस्तर चो माटी ने शांति सुरक्षा और बाढ़ती करतो ने जवान मन चो बलिदान नी भूलकतो बीती आए। हुनमन बल्ला के देश चो सुरक्षा काजे आपलो प्राण देतो बिता वीर जवान मन चो त्याग केबे फुका नी जाए। एदा श्री शाह बीजापुर नक्सली हमला ने शहीद जवान कालेंद्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी चो घर चो लोग मन ले भेंट होला। हुनमन घर चो लोग मन चो मंजी बसुन हुनमन चो दुख के बाटला और सरकार बाटले हरेक प्रकार चो होतो बीती सहायता देतोर भरोसा दिला। केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा बल मन चो जवान मन संगे गोठबात करून हुनमन चो हरेक चो बाढ़ती करला और हुनमन चो साहस और समर्पण के सहराला। कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बले रला। एचो पहल केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर ने 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 फॉरेंसिक मोबाइल वैन के हरा झंडा दिखाउन रवाना करला। संगे ची 33 ठान विशेष निगरानी वाहन और 60 ठान राजमार्ग गश्ती वाहन बले रवाना करला। एवे तक छत्तीसगढ़ चो सिर्फ 16 जिला मन ने डायल 112 आपातकालीन सेवा रली मांतर अदाय राज्य सरकार ए सेवा चो बाढ़ती सपाय 33 जिला मन ने कर ली से। सुरक्षा मानक मन सहायता क्षमता के और बरसक बनातो काजे डायल 112 सेवा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीती ठान चितातो तकनीक के जोड़लो आसे जे चोले संकट ने फसलो मनुख चो वास्तविक भौगोलिक स्थिति चो सही पता करुक सक दे। मेहरार मंच सुरक्षा के पहल संगाते ये व्यवस्था ने पैरिक बटन और विशेष निगरानी सुविधा मन बले जोड़लो रासे। ये आधुनिक व्यवस्था भीतरे अति आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बले बनालो रासे। कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बले रला। छत्तीसगढ़ ने जनगणना 2027 भीतरे 1 महीने घर सूचीकरण और घर मंचो गणना चो काम चले से। प्रदेश ने एबे तक 60% ले अगर घर मंचो गणना चो काम पूरा कर लो रासे। ए अभियान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी ले एबे तक 48,700 ले अगर ब्लॉक मन ले 29,600 ले अगर ब्लॉक मन ने गिनती चो काम पूरा होली से। गिनती काम चो मामला ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला सबले पहल आसे जोन थाने 100% लक्ष्य पावलो रासे। जनगणना चो मामला ने राज्य ने गांव और दूरिया जिला मन ने काम नंगत चले से मातर बड़े शहर मन और नगर निगम क्षेत्र मन ने जनगणना चो काम चिंता करतो असन कम दर्ज करलो रासे। लेख करते गुट ए आए की प्रदेश ने घर गिनती चो काम 30 मई तक चले दे। छत्तीसगढ़ चो जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन चो लाभ अमरातो काजे 18 मई ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान मुरहोली से 25 मई तक चलतो बीती ए अभियान प्रदेश चो 8000 ले अधिक गांव मन ने चलातर हो से। आदिम जाति विकास विभाग चो ए अभियान भीतरे प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुल्लो गांव मन के शामिल करलो रासे। रायपुर जिला के छाड़ून प्रदेश चो सपाय जिला मन ने स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजना मन चो लाभ पात्र लोग मन तक अमरातर हो दे। अभियान भीतरे सिकल सेल और टीबी चो जांच काजे स्वास्थ्य शिविर बले लगातार हो से। अधिकारी गांव मन ने जन सुनवाई करून आदि सेवा केंद्र मन ने शिकायत मंच निराकरण करसोत। राज्य सरकार गांव चो मेहरार मन के ऊर्जा क्षेत्र ने सशक्त बना तो काजे बरक 2026 ले 2031 तक चो समय काजे दीप्ति योजना के मंजूरी दिली से। ये योजना भीतरे गांव मन ने सोलर दीदी तैयार करतर हो दे जे मन के सौर ऊर्जा प्रणाली मंचो स्थापना चलातोर और दखा रखा चो प्रशिक्षण देतर हो दे। ये मेहरार मन सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जसन ऊर्जा सुविधा मन के चला दे। योजना ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के महिला ऊर्जा सहकारी समिति मंचो रूप ने बाढ़ती करतोर हो दे। बस्तर और महासमुंद चो कोनी कोनी समूह पहल ची विक्रेता चो रूप ने पंजीकृत होला से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एके ऊर्जा आत्मनिर्भरता चो बाटने बड़े ढाका सांगला से। लोक निर्माण विभाग चो सचिव मुकेश कुमार बंसल गेलो 17 मई के कांकेर जिला ने सड़क मन पुलिया मन और भवन बनतो काम मन चो समीक्षा करला। हनुमन अधिकारी मन के बनतो काम मन के झपके करतो और नगद गुण बीति हो तो निर्देश दिला। श्री बंसल बल्ला की कोनी बले स्तर ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो दे। नरहरपुर कॉलेज भवन बंतो ने देरी ने हुन ठेकेदार के नोटिस जारी करतो निर्देश बले दिला। हुनमन मानसून ले पहल सड़क मंच मरम्मत पूरा करतो काजे बल्ला। हुताय लोक निर्माण विभाग चो सचिव श्री बंसल 16 मई के नारायणपुर ने विभागीय अधिकारी मन और ठेकेदार मंच बले बसका धरला। बसका ने हुनमन जिला ने बंतो बीती सड़क मन पुलिया मन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंचो बंतो बीती बाढ़ती चो समीक्षा करला। हुनमन अधिकारी मन और ठेकेदार मन ले बल्ला की बनतो काम मन झपके और गुणबीति संगे काम मन के पूरा करा। बसका चो पाछे श्री बंसल महाराष्ट्र सीमा तक बनतो बीति राष्ट्रीय राजमार्ग 130 डी के काम मंचो निरीक्षण करला। बस्तर चो पीला मंचो खेल प्रतिभा के नंगत बनातो काजे जगदलपुर ने झपके ची बस्तर चो पहल आवासीय खेल अकादमी मूर करतर हो दे। खेल और युवा कल्याण विभाग चो संचालक तनुजा सलाम गेलो 16 मई के जगदलपुर अमरून अकादमी चो तैयारी मन के दखला। ये अकादमी ने लेका मन के एथलेटिक्स फुटबॉल और तीरंदाजी चो प्रशिक्षण देतर हो दे। प्रवेश बलों ने भर्ती काजे झपके ची चयन ट्रायल आयोजित करतर हो दे। ये था 13 ले 17 बरक आयु वर्ग चो खिलाड़ी मन भाग धरुक सक दे। हुनमन अधिकारी मन के खिलाड़ी मन काजे नंगत वातावरण और सुविधा मन देतो बले निर्देश दिला। ऐ दिने श्रीमती सलाम पंडरीपानी चो खेलो इंडिया लघु केंद्र ने चलतो बीती हॉकी सेंटर चो बले दौरा करला। हुनमन एथा छात्रावास भवन और जिम हॉल चो निरीक्षण करून केंद्र ने प्रशिक्षण धरतो खिलाड़ी मंचो संख्या और खेल जिनिस मंचो रतोर बारे ने जानकारी धरला। आकाशवाणी चो 90 बरक पूरा हो तो उपलक्ष्य ने 17 मई के आकाशवाणी जगदलपुर बाटले वॉकथान चो आयोजन करतोर होली। वॉकथान दंतेश्वरी मंदिर ले मूर होन कैक बाटमन ले होते आकाशवाणी केंद्र परिसर अमरून संपन्न होली। ए आयोजन ने आकाशवाणी चो अधिकारी कर्मचारी उद्घोषक कंपियर कर्मचारी मंचो घर चो लोग मन और सादा लोग मन भाग धरला। ए मौका ने आकाशवाणी जगदलपुर चो कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर बल्ला की वॉकथान ले आकाशवाणी स्वास्थ्य अनुशासन और सामाजिक सहभागिता चो संदेश देतोर कोशिश कर ली से। नारायणपुर जिला चो गरांजी ने गेलो 15 मई के पारंपरिक काना हरलाल पेन कर साथ यात्रा चो आयोजन करतोर होली। ए आयोजन ने बस्तर संभाग चो कई क्षेत्र मन संगे ची महाराष्ट्र चो गढ़चिरौली ले बलेदेव धामी अमरला। ए कार्यक्रम ने वन मंत्री केदार कश्यप बले शामिल होला। ए मौका ने हनुमान बल्ला की असन प्रकार चो आयोजन समाज के आपलो जड़ और परंपरा मन ले जोड़तो काम करे से। हनुमान बल्ला की जनजाति समाज चो संस्कृति रीति रिवाज और परंपरा मन प्रकृति ले जुड़ी से जोन पर्यावरण संरक्षण चो संदेश दे से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बाटले दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिला से। जिला अस्पताल के ए प्रमाण पत्र स्वास्थ्य सेवा मंच गुण नंगत प्रबंधन और मरीज मन के देतो बीती सुविधा मन काजे दिलोरा से। बीजापुर जिला प्रशासन बाटले चलतो बीती बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम भीतरे एवे तक 25 ठान ग्राम पंचायत मन बाल विवाह मुक्त घोषित होली से। ए काम ने महिला और बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग चो टीम जुगे करुण सहायता करे से। ए कार्यक्रम ले समाज चो सपाए वर्ग चो लोग मन के बाल बिया चो दुष्परिणाम मन और एचोले जुड़लो कानूनी प्रावधान मन चो बारे ने जानकारी देतर हो से। नारायणपुर जिला चो ओरछा विकास खंड चो रायनार गांव ने नुआ मोबाइल टावर लगा लो रासे। रायनार ने मोबाइल टावर लगतो के झोरी गांव नूलवट्टी और डीडर भट्टी गांव चो लोग मन के संचार सुविधा मिले से। एक छाड़ून रेंगाबेड़ा और मडाली बाटे बले मोबाइल सिग्नल अमरली से। पहिल एथा मोबाइल टावर नी होतो के गांव चो लोग मन के फोन करतो नहाले सिग्नल खोजतो काजे डोंगरी नहाले डेंग बीती रुक मन ने चेगुक पड़ते रहे जेचोले हुन मन के कैक प्रकार चो मुश्किल मन होते रहे। मोबाइल टावर लगतो के अदाय अभुजमार चो पीला मन घरे बसुंची देश दुनिया चो जानकारी धरुक सक दे। होताय गौरिया मन के शासन चो कल्याणकारी योजना मन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल भुगतान चो सुविधा बले मिरे दे। असने स्वास्थ्य नहाले कोनी आपातकालीन समया ने गौरिया मन अदाय एम्बुलेंस डॉक्टर मन नहाले जिला प्रशासन ले बले संपर्क करुक सक दे। सरासरी दाय मूर खबर मन एक हार फेर सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्ला की ए तो 5 बरख ने छत्तीसगढ़ चो बस्तर संभाग देश चो सबले विकसित आदिवासी संभाग बने दे। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर जिला चो नेतानार ने जन सुविधा केंद्र चो करला मूर। बल्ला की ए तो 1.5 बरख ने बस्तर ने रलो 70 ठान सुरक्षा शिविर मन के असन सेवा केंद्र मन ने बदलतर हो दे। रायपुर ने होलो बीती कार्यक्रम ने आपातकालीन सेवा डायल 112 भीतरे 400 अत्याधुनिक गाड़ी मन के दखला हरा झंडा। छत्तीसगढ़ से जनजातीय गांव मन तक सरकारी योजना मन चो लाभ अमरातो काजे 18 मई ले मूर होली जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। राज्य सरकार गांव चो मेहरार मन के ऊर्जा क्षेत्र ने सशक्त बनातो काजे दीप्ति योजना के दिली मंजूरी। एची संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ए अंक इथाय सरे से जुहार।
2: हल्बी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया गया। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। समय है मधुरिमा का, पर पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
4: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
5: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
4: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
6: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
7: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
9: 8700001424।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
12: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: पेश है मधुरिमा। मेरी हर खुशी का वास्ता तुमसे है, मेरी हर खुशी का वास्ता तुमसे है, मेरी हर मंजिल का रास्ता तुमसे है। तुम्हारी हर एक बात पर बहुत एतबार है, वजह बस इतनी सी है कि बहुत प्यार तुमसे है।

हर पल प्यार का इरादा है आपसे, हर पल प्यार का इरादा है आपसे, अपनापन ही कुछ इतना ज्यादा है आपसे। न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए, न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए, कयामत तक साथ निभाने ये वादा है आपसे।

आज की मधुरिमा के गीत सजे थे अग्निपथ और एक दूजे के लिए। इन फिल्मों से मधुर आवाज में गाया था अलका याग्निक, एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

शरीर सुंदर हो या ना हो, शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, इसी के साथ नमस्कार जगदलपुर से अपनी रेडियो साथी शेफाली को दें इजाजत। शुभ दिवस।

नमस्कार जगदलपुर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: देता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
6: India is accelerating towards universal health coverage.
7: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6: Pandemic preparedness and emergency responses.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
10: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
7: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
11: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, मैं सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
12: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
13: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
14: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
15: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा

0: और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and cultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे.
2: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा bilateral ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है. Nordic देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं. पिछले एक दशक Nordic देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है. तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही Nordic देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं.
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म दैट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज आर सेट टू आशर इन अ न्यू गोल्डन ईरा विद द रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रेड एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील. अ कॉरेस्पॉन्डेंट कवरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू नॉर्वे हैज फाइल्ड दिस रिपोर्ट फ्रॉम ओस्लो.
5: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Gorbole, Akashwani News, Oslo, Norway.
2: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies, or government-aided educational institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee JPC on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC Chairperson P.P. Chaudhary said, India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of 7 state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission, and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
6: सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि.
7: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. द कमेटी ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिम एन के सिंह हु इज एन इकोनॉमिस्ट एंड गुलाम नबी आजाद हु इज अ प्रोमिनेंट लीडर विथ वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस फॉर पार्ट ऑफ इट. दैट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विच रिकमेंडेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड विधानसभा शुड बी हेल्ड इन द कंट्री.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Uttar Pradesh is reeling under severe heat wave with record-breaking temperatures.

0: 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लोकमंजरी, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विभिन्न बोलियों में लोकगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया, ये हल्बी लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकमंजरी में विभिन्न बोलियों में लोकगीत। अब सुनिए कीर्ति निषाद और साथियों का गाया ये हलबी लोकगीत।

0: तीनों कॉलेज ने।
1: चिंता नहीं करा,
0: फीस तो दाख।
2: हे हे, काय हाल है, काय होली आए?
1: फीस जो फिकर
2: राहुल, जो बैंक खाता तो आसी चे, बाट सर सरा बैंक ले काम पड़ लो इतरो पीला पढ़ाई कर जा सर सरा मेरे दे और हुन बोले 4 लाख तक बिन झंझट चो आए हुन कहाँ से मिठाई
3: आरबीआई बोले से
4: नंगत करा मूर लेन देन बेरा रहा चतुर।
5: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए योगेश्वर पुजारी और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

लोक मंजरी में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
2: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है, तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है, तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
3: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
4: Hello children.
5: Hello ma'am.
6: Hello ma'am.
4: Hello, hello. How are you all?
5: We are fine ma'am.
6: I am fine ma'am.
7: How are you ma'am?
4: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
5: Yes, ma'am.
6: Yes, ma'am.
4: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes, ma'am.
8: Pets are so lovely.
4: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
4: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
4: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
4: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
4: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
4: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
4: Can you name some birds?
12: Sparrow.
4: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
13: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
4: Yes, peacock is a colorful bird.
14: Ma'am, parrot.
4: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
0: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम?
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिक का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे,

0: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
1: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
0: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
2: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
3: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
2: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
3: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
3: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: एनसीईआरटी अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। सुबह के 9:30 हुए हैं। डीजे सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्य

फिल्म आशिकी 1990 में रिलीज हुई थी और ये भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित और ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया था महेश भट्ट ने। ये फिल्म राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल के शानदार डेब्यू और नदीम श्रवण के सदाबहार गानों के लिए जानी जाती है जिसने उस समय सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

आशिकी फिल्म की कहानी एक महत्वाकांक्षी गायक राहुल यानी राहुल रॉय और एक अनाथ लड़की अनु यानी कि अनु अग्रवाल की प्रेम कहानी पर आधारित है। दोनों एक पुलिस स्टेशन में मिलते हैं जहां प्यार पनपता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राहुल अनु को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है और बाद में खुद को एक गायक के रूप में स्थापित करता है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है आशिकी। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका संगीत था। नदीम श्रवण द्वारा रचित इस फिल्म ने बहुत ज्यादा सफलता हासिल की और गायक कुमार सानू को रातों रात स्टार बना दिया। इसके गाने आज भी लोगों की पसंद का हिस्सा हैं। इस फिल्म के निर्माता थे गुलशन कुमार। लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये सदाबहार नगमा।

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राहुल रॉय, अन्नू अग्रवाल, रीमा लागू, दीपक तिजोरी। फिल्म के लीड अभिनेता राहुल रॉय की आवाज को आदित्य पंचोली ने डब किया था। गीत लिखा था समीर रानी मलिक और मदन पाल ने। आशिकी फिल्म के गानों को मुख्य रूप से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज दी थी। कुछ चुनिंदा गानों में उदित नारायण ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

इस फिल्म ने 36वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुल चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीन श्रवण, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक कुमार सानू और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल। इसके साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त।

0: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म आशिकी के तराने। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: समाचार।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रूपये की जगह 550 रूपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केंद्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकते हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा आज सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन में।

अनिरज ने संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चूड़ी इस शीर्षक पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। सचमुच में महिलाओं के श्रृंगार में चूड़ी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा है देव कोहली ने, संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम है क्रोध।

चूड़ी केवल श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनी जाती बल्कि कलाई में लगातार चूड़ियों के रगड़ने से रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन में शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है चूड़ी। चूड़ी हाथों की थकान को दूर करने और ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में सहायक होती है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म यस बॉस से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द हैं जावेद अख्तर के, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

कांच की चूड़ियां शुभता, सकारात्मकता और सौभाग्य की सूचक मानी जाती हैं। लाल चूड़ियां ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक हैं, तो हरी चूड़ियां अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली का प्रतीक हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। अनजान के शब्दों को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों की खनखनाहट घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाती है। आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन में।

0: गुलशन। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत, शीर्षक था चूड़ी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक।

0: तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अब लीजिए सुनी जलधर और साथियों के गाए हलवी लोकगीत।

बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे जलधर और साथियों के गाए हल्बी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड, 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

आज हम बातें करेंगे एक नाम, दिलजीत दोसांझ, जो आज के बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही लोकप्रिय है, जो एक भारतीय गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। दिलजीत ने अपने अनोखे अंदाज और स्टाइल से सबका दिल जीत लिया। इनका म्यूजिक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है।

0: दिस।
1: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
2: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
1: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
3: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
4: रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 को पंजाब के जलंधर के दोसांझ कला गांव में हुआ था। उनका असली नाम दलजीत सिंह दोसांझ है, लेकिन उन्होंने स्टेज नाम के रूप में दिलजीत को चुना। दिलजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के एक सरकारी स्कूल से की, जहां उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अपने गायन के करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनका गाने का जुनून इस तरह प्रभावित रहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाया।

दिलजीत ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2004 में अपने पहले एल्बम इश्क दाउड़ा अदा के साथ की, लेकिन उन्हें असली पहचान 2011 में आई। उनका गाना लक 28 कुड़ीदा रिलीज हुई। ये गाना चार्ट बस्टर्ड बन गया और दिलजीत को रातों रात स्टार बना दिया, और इस गाने ने उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया।

0: आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर गुरुवार और शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: दिलजीत ने सिर्फ सिंगिंग में ही अपना जलवा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना दबदबा बनाया। उन्हें अपना बॉलीवुड डेब्यू 2016 में फिल्म उड़ता पंजाब से मिला, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अफसर का रोल निभाया। उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया और उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया।

0: दिलजीत ने यो हनी सिंह के साथ मिलकर रैप ट्रैक गाया। इन संगीतमय जोड़ी को श्रोताओं ने खूब सराहा। हनी सिंह के संगीत निर्माण कौशल और ट्रैक पर उनके दमदार रैप के साथ साथ दोसांझ की भावपूर्ण और प्रभावशाली आवाज ने एल्बम को हिट बना दिया और प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा प्राप्त की।
1: I will dance like this only.

दिलजीत दोसांझ ने अपनी मेहनत और प्रतिभा को बरकरार रखा, चाहे वो पंजाबी म्यूजिक हो या बॉलीवुड। दिलजीत ने हर जगह अपना जादू बिखेरा। दिलजीत ने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग करियर में कई अवार्ड जीते। उन्हें अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और लोकप्रिय गीत पुरस्कार शामिल हैं।

उनकी यात्रा एक प्रेरणा है उन सबके लिए जो अपने सपनों को फॉलो करते हैं। दिलजीत दोसांझ का सफर ये दिखाता है कि अगर आप टैलेंट पर भरोसा रखते हैं और लगन से काम करते हैं तो सफलता

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता दिलजीत दोसांझ पर केंद्रित कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विभिन्न प्रदेशों के गीतों का कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले सुनते हैं सीमा मिश्रा और संजय भागी की आवाजों में राजस्थानी गीत। संगीत है निर्मल मिश्रा का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?

0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अब पेश है बंगला गीत हरिपद शील की आवाज में।

0: शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रूपये की जगह 550 रूपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी 20 जून तक अपने विद्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयन के लिए 26 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ये योजना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा कर सकते हैं। और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में सुनिए मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आप सुन रहे हैं मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी गीत।

किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में अभी आप सुन रहे थे मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल भी गीत। यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: दीदीमन जुहार भेट तो होलू मानतर आमी रोजे दिन आसन काई ना काई नंगत गोट बात मन के करूँ से हुसनी आजी आमी डिजिटल साक्षरता चो बारे ने गोट बात करूँ दे आजी चो समय डिजिटल चो जुगा है मोबाइल कंप्यूटर और इंटरनेट आमचो जीवना चो हिस्सा बन ली से ये सपाय तकनीक के सही और सुरक्षित ढंग ले काम करतो क्षमता के डिजिटल साक्षरता बुलवात सरल भाषा ने मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट और डिजिटल सेवा के सही काम ने उपयोग करतो के तकनीकी साक्षरता बोलवात तकनीकी साक्षरता चो माने सोझे मोबाइल चला तो नहीं आए बल्कि इंटरनेट चो सही उपयोग करतोर ऑनलाइन जानकारी धरतोर डिजिटल भुगतान करतोर ऑनलाइन पढ़ाई और काम करतोर साइबर सुरक्षा के समझतोर ये सपाय काम चो जानकारी होतो के डिजिटल साक्षरता बोलवात साक्षरता डिजिटल साक्षरता चो महत्व आए जसन की शिक्षा ने सहायता आजी चो समय ने ऑनलाइन पढ़ाई वीडियो क्लास और डिजिटल नोट चो उपयोग बढ़ली से जेचो ले पिला मन आसानी ले शिक्षा धरुक सको ऑनलाइन सेवा चो लाभ मिले से सरकारी योजना बैंकिंग और बिल भुगतान ये सपाय ऑनलाइन होय से तकनीकी जानकारी होलो ने लोग मन घरे बसुन बाती सेवा चो लाभ धरुक सकूत रोजगार चो अवसर मिले से कंप्यूटर और इंटरनेट चो जानकारी रलो ने नौकरी चो अवसर मिले से आजी चो समय ने लगभग हर क्षेत्र ने तकनीकी कौशल चो जरूरत आसे समय और धन चो बचत होए से ऑनलाइन काम करलो ने लंबा लाइन लगतो चो जरूरत नहीं पड़े समय और खर्च दोनों चो बचत होए से तो दीदी मन असनी गुड बात होते रह दे असनी जहाला आसे ये जहाला के सुनु
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवन इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर किता
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो दीदी मन नंगत गोट मन के सुन लू और आमी गोट बात करते रहूं डिजिटल साक्षरता चो बारे ने तकनीकी संचार साक्षरता ले संचार के सरल बना तो जसन की मोबाइल ईमेल और सोशल मीडिया चो मदद ले लोग मन लापी रोन बात बाती बले आसानी ले गोट बात करुक सकोत तकनीकी साक्षरता ले सावधानी संगातो बले खूबे जरूरी आए मजबूत पासवर्ड संगातो राय और काके नहीं सांग तो राय हुसनी मोबाइल ने ओटीपी हुआ है उनके बले काके नहीं सांग तो राय आजिकाली खूबे फर्जी लिंक मन ऐसे मोबाइल थाने हुन लिंक के बले नहीं खोलतो राय सोशल मीडिया जो सही उपयोग करतो राय गलत जानकारी और अफवाह मन ले बचतो राय तकनीकी साक्षरता जो प्रमुख साधन आए स्मार्टफोन कंप्यूटर इंटरनेट ईमेल सोशल मीडिया यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग ये सपाय तकनीकी साक्षरता जो साधन आए भारत ने तकनीकी साक्षरता का जे भारत सरकार बाटले तकनीकी साक्षरता के बढ़ावा देतो का जे कई की योजना मंचो मुर करला सो जसन की डिजिटल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन भारत ने दीक्षा ऐप लोक सेवा केंद्र ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ और कई की योजना मंचो जरिया ले लोग मन के लगे डिजिटल सेवा अमरे से ये सपाय योजना चो उद्देश्य लोग मन के डिजिटल रूप ले सशक्त बनातो राय तकनीकी साक्षरता आजी चो समय का जे सबले बड़े जरूरत आसे ये शिक्षा और रोजगार ने मदद करे से और लोग मन के आत्मनिर्भर और जागरूक बनाए से इची का जे सपाय के डिजिटल तकनीक के सही और सुरक्षित उपयोग सीखतोर खूबे जरूरी है तो दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लू मानतर आमी रोजे दिन आसन और नंगत गोट मन के जानू से भेंट वार्ता चो जरिया ले असनी आजी ललिता दीदी मन आम के स्वसहायता समूह ले जुड़न बाती काय काम बुता के कर सोत असनी नंगत गोट मन के सांग दे और एमन संगे गोट बात करला सोत बलवीर से कक्ष आले तेवे एमन चो गोट बात के सुनू
4: रेडियो सुन तो भाई बहन मन खूबे खूबे सेवा जोहार। जसन की आपन मन के आमी कई कसन महिला स्व सहायता समूह मन संगी गोट बात करुन उन मन चो जन काम किया है जानू से, तो असने ची आजी भले आमता ने गोटुक महिला स्व सहायता समूह ने जुड़ लो उन्होंने इले से आज सब ले आ गए। तुझो नाव आरु गांव चुनाव संग।
5: मुझे नाम ललिता ठाकुर है, मैं ग्राम पंचायत कुमरावन ले आए।
4: कुमरावन?
5: हाँ।
4: अच्छा, तो बोले कौन विकास खंड?
5: बकावन।
4: बकावन,
5: बकावन।
4: अच्छा, तो ललिता ये सांग जसन की तुम जो स्व सहायता समूह से है?
5: हाँ।
4: काय नाम है? स्व सहायता
5: राधा स्व सहायता समूह है, मैं हूँ ताचो अध्यक्ष है।
4: अच्छा, अध्यक्ष।
5: हाँ।
4: अच्छा, कितलो दिन हो लिए की बना लो?
5: मतलब 2015 में बन ली से हम जो समूह।
4: 15 ने?
5: हाँ
4: हाँ, 15 ने बोले 8-1 साल हुए।
5: हाँ, 8-1 साल हुए से।
4: अच्छा, तो बोले ने समूह जो गठन कर तो का जाए।
5: हाँ।
4: बोले तुम के काय करू पड़ ली कसन बना थोड़ी?
5: पहले तो बाहर से दीदी मनीला, सीआरपी दीदी मन।
4: अच्छा।
5: उन मन गांव चो फिर 10 जन दीदी मन के चयन करला, फिर आम चो एक समूह बन ली, फिर उताले अध्यक्ष सचिव चुनला, फिर बुक कीपर जो बुक लिखतो भी थी रजिस्टर उनके चुनला।
4: अच्छा।
5: हाँ, और उन चो बाद आमी असली समूह चलाते रहलू, हर सप्ताह 20-20 रुपए जमा कर लू, फिर आमी बैंक लोन निकला लू, फिर आम के आरएफ पैसा मिल ली 15,000 रुपए आमचो जो निधि बढ़ा तो काजे। फिर उनचो बाद ले आम के जनपद बांट ले 60,000 CIF राशि मिल ली।
4: अच्छा।
5: फिर उनके बाद आम के जो बाहर ले CRP दीदी मनीला और जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि बीती रासायनिक खाद के छांडा और जो ऑर्गेनिक खेती बीती है उन चो काजे आमर मन के बदला और गांव में 2-2 जन के कृषि सखी रूप में चयन करला।
4: अच्छा।
5: हाँ, हूँ ताले फिर आमन मन के 2 जन के चयन करला, फिर आम चो ट्रेनिंग होली और गांव में आमन मन जो आम चो गांव चो दीदी दादा मन रासायनिक खाद के लगाते रहो, उन मन के आम ही सांगलू की जैविक खाद लगावा जो गुड़ गोबर नीम पत्ता से बनवाए उनके लगावा बोलू, क्योंकि रासायनिक खाद से कई प्रकार चम की बीमारियां हुए से।
4: हाँ।
5: जब छोटे छोटे उम्र में बाल पाके से पीला मन चो कुपोषित हो सो पीला मन और कई मतलब उम्र मतलब हाइट बलनी बड़े से छोटे हाइट हो सो।
4: हाँ।
5: तो हूँ निकाजे आम मन मन दीदी मन के सांगलू और हूं चुपाद ने आम के रायपुर में हाक दिला ट्रेनिंग होली आम चो।
4: अच्छा।
5: रायपुर में ट्रेनिंग धरुक गेलू पेहुम बाटली उन भाती आमन मन के फिर आमी गांव गांव ने जान ट्रेनिंग मन दिलू सब दीदी मन के।
4: अच्छा।
5: हाँ, और एबे आम चो बकावन ब्लॉक में 20 गांव में ये महिला सशक्तिकरण किसान महिला सशक्तिकरण काम चले से।
4: अच्छा।
5: एक गांव में 60 दीदी किसान परिवार के जो अति गरीब में ये बात उसन लोग के चयन कर लू आमन मन।
4: अच्छा।
5: और उन मन के आमी जैविक खेती के बारे में सांगलू।
4: हाँ।
5: अरुमन एवे हुनमन हुन चीज के अपना सोध।
4: अच्छा।
5: अरुमन कर सोध।
4: हाँ।
5: जन आगे चो लोग असनी सेमी के कुमडा के असनी खाले लगाऊं देओ तो कई तुदा कीड़ा हो अच्छा से फलेबल नहीं तो हुन चो काजे आमन मन सांगलू की कतार विधि से करा।
4: अच्छा।
5: कतार विधि से लगावा और
4: लाइन
5: लाइन लाइन बीती और फिर सेमी वगैरह लगात का सांगलू तो मन होता लगा सोत तो अब हुमन जो पैदावार बल अच्छा हुए से।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: तो संगीता ये सांग जसन की तुम्ही बोले ने जैविक जो खेती चो ये चो आगे पूरा जसन की रायपुर ट्रेनिंग जाओ।
5: हाँ।
4: बोल से तो ये आगे पूरा एक सिखाला तुमके?
5: हाँ, रायपुर में हमके सिखाला।
4: अच्छा।
5: हमके ट्रेनिंग दिला की कसन कसन खाद बना तो रहे।
4: अच्छा।
5: हाँ, उन चो बाद फिर आमी ये था यून भाती।
4: अच्छा। तो ये भी बोल का है कि उन मन के तुम गांव गांव ने जाऊन बते के सिखाए साथ?
5: हाँ, गांव गांव में जाऊन आमन मन सिखाऊं सुन मन के।
4: अच्छा।
5: और उन मन कर सोत बोले।
4: अच्छा। तो बोले कितलो गांव ने बोले 60 कितलो गांव ने बोले
5: मतलब आम चो बकावन ब्लॉक में 20 गांव में।
4: अच्छा।
5: 20 गांव में एक गांव में 60 किसान के।
4: अच्छा, एक गांव के 60 किसान
5: जो अति गरीब में सोत उस परिवार के आमन मन चयन कर लू से।
4: अच्छा। तो बोले ने ये काम कितलो दिन होली?
5: ये काम 3 साल।
4: 3 साल
5: मतलब एक कृषि बीती जो नाम जो जैविक खेती बीती है ये बीती 6 साल होली।
4: अच्छा, 6 साल।
5: 6 साल होली।
4: अच्छा। जसन की तू गरीब किसान मन के बोले चुनतर बोले से।
5: हाँ।
4: तो बोले ने ये चो बोले चुनाव बोले कसन करसा से कौन गरीब आए को किसी खातरा है कहीं बेड़ा खाड़ा ने गरीब आए कि असनी गरीब है
5: मतलब आर्थिक स्थिति से जो गरीब हो से जन आमी कोनी गांव में बल जाऊं से आमर में दूसरा गांव चल रहूं से आमर में के पता नहीं चले तो समूह बांटले हुन गांव में कृषि सखी मतलब सक्रिय महिला चुनलो रासे पशु सखी चुनलो रासे तो हुन मन के आमन मन जाऊं बात

0: करूं से, फिर हुन मन गांव चलो गा तो जानो कि कौन परिवार गरीब आए कौन परिवार अमीर आए, तो उस लोग के हम चयन करूं भाती, फिर हम जो लिस्ट में हम शामिल करूं से।
1: अच्छा बोले तुम के कृषि सखी बोल सो।
0: हाँ हम के कृषि सखी बोल सो।
1: तो समय समय कृषि विभाग ले कहीं तुम के बोले प्रशिक्षण मिलते रहे से बोले कहीं।
0: हाँ ये बात कृषि विभाग ले बोली बात मन मन के प्रशिक्षण दे उकलाए और हम बाटले बीज ओगरा बोला मन मन के दी बात।
1: अच्छा
0: कृषि विभाग बांट लिया।
1: हाँ बोले तुम्हें उनके पर किसान मन के दीवा।
0: हाँ किसान मन के मन दी। हाँ
1: अच्छा
0: हाँ। बांट ले होली उड़द होली रागी होली, तो हम आम के किसान कृषि विभाग बांट लिया मन के दीवा, तो अमन मन किसान मन के लिस्ट बनाने भाती दे दी। हाँ
1: अच्छा अच्छा तु बोले कित लो गाँव के तु देखो जल कित गाँव चुका बन ले।
0: मैं पांच गाँव चो।
1: पांच गाँव।
0: हाँ मतलब चार बकाउंड क्लस्टर में चार झनास हो
1: बल्ले सब के अलग अलग।
0: हाँ, अलग अलग दिला से चार झनासु सीनियर सीआरपी में, मैं पांच गांव के दखे से बकाउंड क्लस्टर में ही और बाकी तीन आसो जो दूसरा क्लस्टर के तक सो।
1: अच्छा तो जैसन की किसान मन की तुम अलग ले कहीं असन प्रशिक्षण वगैरह बोला आयोजन हो से तुम जो।
0: हाँ महीना में दो महीना में हम मन एक एक बार देते रहू मन मन के।
1: अच्छा हाँ और कहीं शासन चो कोई योजना चो लाभ अगर धरत रहा है तो कोई किसान मन के चो बोले हमारा तो काम।
0: हाँ ये चो बोले जन हार्टिकल्चर बांट ले कुनी कुनी गेंदा बल लगा सोत पनारा वगैरह लोग पनारा लोग मन गेंदा लगा सो, तो मन मन की हमी बात करुन भाती गेंदा चो फूल दिला तोर, या फिर छोटे छोटे जो पंप वगैरह हो से जो छोटे किसान मन घिनुक नहीं सकत, तो हम हुन हॉर्टिकल्चर विभाग बांट ले बात करुन भाती मन के थोड़े अनुदान में हम हुन मल दिलाऊ से।
1: अच्छा तो कहीं बोले योजना चो लाभ धर तो कई तो प्रक्रिया हो से कागजात डॉक्यूमेंट।
0: हाँ
1: तो ये सब काम
0: बात कर जब किसान मन संगम बात करूँ तो मन दी बात।
1: अच्छा बोले फार्म वगैरह भर।
0: हाँ, फार्म वगैरह भरुआ और हम जमा करूंगी वहाँ।
1: अच्छा तो अब तक बोले तीन छह साल होली बोल सी।
0: हाँ
1: कितलो असन किसान मन के सन तुम्हें लाभ उन मन के अमरा ला सास।
0: मन एक गांव में जहन 60 किसान आसो तो 60 किसान में से हमें कम से कम 40 किसान के एक गांव में असन हम लाभ दी लालू से।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो किसान मन काय चीज का ज्यादा रुचि धरसोत खेती बाड़ी हिसाब ने बोले काय चीज के।
0: खेती बाड़ी में सब्जी लगा तो सब्जी ओगरा में और भी फिर पशुपालन ओगरा में बोले।
1: अच्छा
0: हाँ क्योंकि हम जो पशु विभाग बांटले बोले हम बात करूँ भाती हम मन के मुर्गी ओगरा दिलालू से।
1: अच्छा
0: तो क्योंकि पशु सखी बोला हम जो समूह बांटले बनाला से, तो हम टीकाकरण जब बोले बीमारी हो तो पशु सखी में जा सो तो टीकाकरण कर सो।
1: अच्छा हाँ तो असन कहीं बड़े रूप ने कोनी किसान के बड़े ज्यादा रूप ने कहीं असन लाभ मिला था 10 लाख 20 लाख उसन ना जन। अच्छा बोले नानी नानी
0: नानी नानी ये बे।
1: हाँ
0: नानी नानी दिलो से।
1: अच्छा दख तु तो इतलो काम करसीस बोले ने तुम चो जोन बोले ने मेहनत आ बोले ने काया विभाग बांट ले तुम चो।
0: हाँ अब दिवात मेहनता विभाग बांट ली जनपद बांट लिया हम के।
1: अच्छा
0: जिला पंचायत बांट लिया मन मन की मीरुआ।
1: अच्छा जिला पंचायत ले।
0: हाँ जिला पंचायत ले मन मन की मीरुआ।
1: अच्छा तो ये कृषि सखी बन तो काजे कहीं पढ़ा लिखा बल लागे से कितलो पढ़ा लिखा लागे से।
0: अब तो हर चीज मोबाइल में काम कर तो बीती है, तो 10वीं पास हो तो और मोबाइल चला तो जरूरी है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ
0: या फिर अभी 5वीं पास बिल्कुल जो मोबाइल चला जान सो तो मन मन के मतलब जानकारी रहता जरूरी है इसका जी।
1: तो अच्छा ये तो होली कृषि मित्र बीती काम है कि नहीं तक तो ही फिर बोले ने स्व सहायता समूह चो
0: हाँ,
1: अध्यक्ष बोली आज
0: हाँ,
1: है कि नहीं
0: हाँ,
1: तो तुम चो स्व सहायता समूह का काम हो ऐसे।
0: आम चो स्व सहायता समूह में भी आंगनबाड़ी में जसन राशन वगैरह दिला तो खाद्य जो विभाग हम बीती काम करूँ सामी।
1: अच्छा बोले ने खाद्यान्न दे तो
0: हाँ राशन वगैरह खरीदन भाती जो आंगनबाड़ी के दे तो।
1: अच्छा हाँ और
0: अभी यही काम ही वैसे क्योंकि गांव में इतना समूह आसो तो हर कोई एक एक एक एक काम करूँ।
1: अच्छा बोले ने सबके बांट
0: हाँ
1: ला
0: सबके बांट लो रहा से।
1: हाँ
0: सब समूह एक एक कौन तो बंधन काम करे से हम ये काम करूँ से कौन तो गोठान काम करे से सबके बांट लो रहा से।
1: अच्छा नहीं तो कई समूह जो लोग का है कि असन व्यक्तिगत आपलान काज बल पैसा समूह धरन बाती धंधा वगैरह करुआ तो असन बल कहीं तुम चो समूह चलो कर सोत।
0: हाँ धंधा वगैरह कर सोत जसन कोनी चिकन सेंटर उन खोलला से और कोनी दुकान चला सोत।
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले अलग अलग व्यक्ति
0: अलग अलग व्यक्तिगत पहले समूह लोन धरुन भाती कर सोत।
1: अच्छा तो पहले ने ये चो जन हिसाब किताब आए प्रबंध लिखा पढ़ी
0: हाँ।
1: मीटिंग वगैरह कसन वैसे महीना दिन ने सप्ताह दिन ने
0: सप्ताह दिन में हुआ है एक बार
1: अच्छा
0: हाँ और जो जो बुक मेंटेन जितरो बलिया पैसा वगैरह एक बुक के पर रुवाए उन सब लिखा पढ़ी करवाए
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो दक महिला मन जैसे कि 6-7 साल तो ये बल से समूह बना लर तो असन महिला मंचो जो कहीं परिवर्तन बोले दखो कला मेरे से उन मंचो गोड बात पढ़ा लिखा पींदा वड़ा घर चो साफ सफाई कहीं
0: हाँ पहले तो पहले अंगूठा लगाते थे तो अब धीरे धीरे दस्तखत कर रुक लाए सीख ला हूँ
1: अच्छा
0: हाँ पहले बाहर खूब कम जाते रहते उतरो नहीं निकल रहे घर चो काम फिर बेड़ा अब धीरे धीरे महिला मन बाहर बाहर जहन भाती जहन काम कर सोत महिला समूह से ही कहीं कहीं काम निकले तो हुमन मन जा सोत काम कर सोत पहले घर में ही रहो चूल्हा चौका संभालो अब समूह चो माध्यम से हनुमन चो बोले खूब बदल ली
1: अच्छा हाँ हाँ तू चो खुद चो बदलाव चो चो बोल कहीं अनुभव आसे समूह बना बेला दे
0: हाँ पहले मैं ही बोले घर में ही रहे कहाँ नहीं जाते रहे जब से समूह में जुड़ ले तब से ट्रेनिंग वगैरह होली तब दो चार लोगों जो बीच में उड़तोर बस्तोर ये सब होली
1: अच्छा
0: पहले तो गांव में ही रहो फिर रायपुर जाऊं ट्रेनिंग धर तो लोग मन के सीखा तोर ये थोड़े नॉलेज बढ़ लिया मन बन के
1: अच्छा
0: एक खेती किसानी के बारे में तो जानते नहीं रहे तो जब से जुड़ ले से तब से मैं बोले थोड़े बहुत जाने
1: अच्छा बिल्कुल एक झिझक मिट ली असन लागे
0: हाँ झिझक मिट ली थोड़ी
1: अच्छा बिल्कुल तू कितलो पढ़ ले सी साले पढ़ा लिखा
0: मैं ग्रेजुएशन
1: ग्रेजुएशन
0: हाँ
1: काय विषय का BSc ने
0: हाँ
1: अच्छा तो ये तो सखी मित्र ने आशीष स्व सहायता समूह ने
0: हाँ
1: आशीष तो BSc बोले कर ली सी
0: हाँ
1: तो बोले तू चो बोले असन व्यक्तिगत हिसाब ने कहीं भविष्य और कहीं सोच आसे
0: आसे
1: काय
0: मतलब अभी पढ़ाई वगैरह करूँ और आगे बढ़तूर
1: अच्छा
0: हाँ
1: कहीं घर चो काम की कहीं नौकरी पैसा
0: नौकरी पैसा
1: अच्छा तो ये चोबल तैयारी चले से
0: चले से
1: चले से
0: हाँ
1: अच्छा काय मतलब कहीं बोल सोच ली से सोती कहीं बन तो रहा है सन कहीं
0: सोच लेस तो
1: नहीं कहीं मास्टर इन बन से कहीं कहीं अधिकारी बन से काय बन से
0: हाँ अधिकारी वगैरह
1: अच्छा
0: हाँ
1: कहीं PSC वगैरह तैयारी
0: हाँ
1: हाँ तो द कितलो अच्छा है BSc कर ली सी
0: हाँ
1: और कहीं MA वगैरह चोबल कोर्स कहीं कर से प्राइवेट वगैरह ने
0: नहीं डाल ले से
1: नहीं डालने से
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा ये सांग जैसे कि तु बल्लिस की 5 गांव चो है कि नहीं
0: हाँ
1: कृषि सखी मित्र आज तो आजकल तो बल्ले ने लोग जुगे फायदा का जे जो रासायनिक खेती करो मतलब चाहूगा
0: हाँ
1: तो ये आजकल तुम कसन मन के समझाए सोत का मन समझे सोत कि नहीं जैविक खेती का रुत का जे
0: पहले पहले तो नहीं समझते रला हनुमन क्योंकि रासायनिक खाद में पहले सुन लो रासायनिक खाद लगाते रहो तो जमीन एकदम बंजर होली से हनुमन जो उत्पादन बल थोड़े कम हो मतलब कम हो से हुनिका हनुमन ज्यादा रासायनिक खाद डाल सो तो आमन मन सांग लू कि पहले जब शुरुआती में कि तुमन मन नहीं डाला के जमीन बंजर हो से तुम्हें थोड़े से जगह में पहले जैविक खाद के करुण दखा अमी पूरा में नहीं थोड़े थोड़े एरिया में 10-15 डिसमिल में पहले हमने मन के हम करुक लाए बोलू जब उन जो उत्पादन अच्छा होली और लागत कम होली क्योंकि उन सब घर में ही बना तो रहे दवाई खाद सब घर से ही बीती है गोबर गौमूत्र गुड़ बेसन ये सब जो तो उन सब में लागत कम होली तो उन बाद में हमन मन धीरे धीरे उन चीज के अपना ला
1: अच्छा बल्ले ने एदा खिनिक समझे सोत बोले
0: अबर समझ सोत खिंडी
1: अच्छा तो असन उनमन के कहीं असन प्रैक्टिकल बनान बती बोल दखा सास
0: हाँ जब हम शुरू शुरू में गेलियो तो बनोन भाती एक गांव में जन किसान मन के हाक दून भाती तो हम प्रैक्टिकल करूं दखा लू मन मन की
1: अच्छा
0: काय काय चीज लागू आए कसन बना तो रहा है किदल दाय हुन छिड़काव कर तो रहा है ये सब चीज
1: अच्छा बोले ने समझे सोते दाय
0: हाँ अबर समझ सुन
1: अच्छा तू दख तू इतलो अच्छा पढ़े लिखे बल आ सारू बोले ने गांव चो जोन समूह बनान बाती फिर किसान भाई बहन मन के जोन सिखा तो जोन काम है ये बोल गोटो समाज सेवा काम
0: हाँ,
1: है कि नहीं
0: हाँ,
1: तो इतलो अच्छा कई कसन जवान लेकर लेकिन मन खाली नौकरी ची डगर हुआ
0: हाँ,
1: मन तर तु समाज सेवा संग संग का है कि तू चो खुद चो बोले और सोच ली सी
0: हाँ,
1: है कि नहीं
0: हाँ,
1: तो ये इतलो अच्छा बोले नंगत काम है तो कोनी आमचो महिला लेकी मन नोनी मन पढ़ा लिखा आसो जाल का है कि असनी समाज सेवा संग पढ़ा लिखा बोल करूक ला सको इतलो
0: हाँ,
1: अच्छा गोट के सांग लीस
0: हाँ,
1: तू कहीं बोलूक चाहसीस तुम चो कहीं तुझ मार्गदर्शन असन कहीं असन महिला मन के नहीं तुझ तुम संग जो रे आसन लेका लेकी मन के पढ़े लिखे
0: पढ़े लिखे मैं हूं मन के यही संग चाहे से कि आजकल जो डेट में कि हम नौकरी जो पीछे ही भागू से लेकिन आमचे जो गांव जो आसपास में कितरो लोग मतलब असन पिछड़ा वर्ग में आसो गांव ची आमचो दीदी मन दादा मन हुमन मन के बले आगे ने तो राय असनी छोटे मोटे काम करुन करुन हुमन मन के बल तुमन मन असनी करा धीरे धीरे समाज सेवा करा और आगे बढ़ावा
1: तो ललिता ठाकुर ती इतलो अच्छा बोले ने तुझो पूरा अनुभव चो कहने के सांगलिस फिर केवी भेटघाट वाल जोहार।
2: हाँ तो दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लू ये दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सांगला कि ये सोसायता समूह ले जुड़न बाती कितरो नंगत काम बुता के करसो तो और संगे संगे कृषि सखी बले आसोत। तो दीदी मन नंगत गोट मन के सुन लो ने मन हरी खुन जवाए और मन हरी खुलो ने गीत गोविंद सुनु भवाए। तो दीदी मन असनी गीत आसे ये गीत कुरिया आ दिलीप कुमार पांडे और हुन मन चो संगवारी अले ते भी ये गीत के सुन।

हाँ तो दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लू गीत गोविंद असर नाय कितरी सुनते रलो ने बले मन नहीं भरे और सुनुक सुनुक भवय तो असनी और गीता से ये गीत कुरिया मनात कीर्ति निषाद और हुन मंचो संगवारी अले ते भी

हाँ तो दीदी मन काय नंगत गीत रली, गीत गोविंद ज्ञान ध्यान चो गुड़ सुनते रलो ने मन के खूबे हरिक लगवाए। और रोजी दिना असा नामी नंगत गोट मन के सुनू सी, नंगत गोट मन आम के कहीं ना कहीं सीखूक मेरे से। तो दीदी मन बोलतो गोटे राय तुम्हें भले जान सा कि जुग बारती चो जुग आए और जुग संगे बारती कर तो खूबे जरूरी आए। एची का जे आम के घर चो बूता संगे संगे और दूसरा काम बूता भले कर तो राय, कसन की चार पैसा कमानी करूक हो से और आप लोग मान सम्मान भले बाड़े से। तो दीदी मन नंगत गोट मन करते रलो ले समय चो मुरे पता नहीं चले और तुम्हें भले जान सा के समय चो कितरो मोल आए। फिर कोनी दिने नंगत गोट मन संगे भेंट कांड हों दे तो जातो पूरे मौके विदा दिया। एची संगे घर द्वार सुनतो सपाए दीदी मन और मोचो संगवारी बहन मन के मैं सेवती करें से जुहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण।
3: काश्तकार दादा दीदी मन, आज मैं तुमके नड़ेरचो कमानी वाट के सांगे। नड़ेरचो कमानी काजे कम ले कम 1.2 मीटर गड़िया माटी बीती ठान खूबे नगत रहे से। संगे संगे हुन ठान चो पानी धर तो सकत बले नगत रहतो राय। खाले बाटे ठस पखना बीती पानी थेबलो खाले चो भूई आरु आगर चिकन माटी नड़ेर कमानी काजे नगत नी रहे। नड़ेर चो कमानी काजे पानी होतोर नगत वर्षा होतोर आरु सिंचाई बले खूबे जरूरी आए। नड़ेर चो नगत किसी मन के सुना। पहिल किसिम आए केरा बस्तर, जोन ठान ने आगत ले नरेर कमानी नी कर सोत असन ठान काजे ये किसिम खूबे नगत आए। ये किसिम सूखा सहनशील किसिम आए। ये किसिम ने गोटोक गच ने 85 ठान फर फरे से। फर ने पानी 330 मिलीलीटर तक रहे से और पानी स्वाद बीती रहे से। असनी दूसर किसिम के बले आमी धरुक सकूं, दूसर किसिम मंचो नाव मन के मैं सांगून दें से IND 051 IND 039 कल्प मित्र चंद्र शंकरा लक्षदीप आर्डनरी। ये सपाय नड़ेरचो किसिम मनात। ये सपाय किसिम संगे नड़ेरचो उपजन के आगर करतो काजे शीतकार बेरा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ले कम होन गेले सिंचाई आगर करुक लागे से। संगे संगे जेठ बतर ने अप्रैल ले जून महीना सिंचाई के कम नी होक देतो राय और राती बेरा कचरा काड़ी मन के डसाउन कोमला करतो राय। बीच के छाटून भाती नर्सरी ने जून जुलाई महीना ने लगाव पड़े से। फिर हुता गोटोक बरख ने तैयार होलो बूटा, जेथाने गोटोक ले 6 ठान पाना होली से बूटा आधा भीता महा मोटरो हो और पाना फुटू रहो असन बूटा मन के लगातो राय। एचो कमानी काजे भूई के साफ सफाई करुक लागे से। डेंग था खोई से जाले सम बनाउक लागे से। फिर 1 मीटर लाम ओसार आरु गड़िया खोदरा खोड़ूक लागे से। ये काम अप्रैल महीने करतो राय। तेबे खोदरा ने घाम पाए दे और कीड़ी माकड़ी बीमारी चो नानी कीड़ी घाम पाउन मरुन जादे। फिर जून ने खोदरा के माटी आरु नगत सरलो गोबर के मिसाउन भरतो राय। जसन सिंचाई काजे सुविधा आसे बल्ले रोपतो काम बरसाले 20-25 दिन पूरे बले होक सके। जे चोले बरसा मूर होतले बूंद नगत बसुन रहे दे। मांतर लेख करतो राय कि बूटा मंडालो ठान ने पानी नी थेबो। नड़ेर बूटा के 11 हाथ लामी लामा मंडातो राय। चौकोन हिसाब ले मंडाले 2.5 एकड़ ने 177 ठन बूटा मंडातोर हो सके। बूटा मन के मंडाते खन खूबे राखा जागा करुक लागे से। रोप तो बूटा के आगर घाम ले बचा तो काजे छाए देतो राय और सिंचाई करते रहतो राय। बरसा बेरा पानी निस्का तो नंगत हिसाब रहतो राय और शीतकार बेरा बूटा के बचा तो काजे सिंचाई करते रहतो राय और बूटा लगे लगे कुमला करते रहतो राय। बूटा लगे चो ठान ने लाटा बूटा नी रहुक देतो राय। नड़ेर बूटा चो नंगत बाढ़ती काजे बरसा मूर हो तो पहिल 40 ले 50 किलो गोटोक गच हिसाब ने जैविक खत दिलो ने नंगत रहे से। गोबर खत नहले कंपोस्ट संगे 5 किलोग्राम लीमचो खत के लगा ले माटी सुधरे से और पानी धरतो सकत बाढ़े से चे। संगे संगे स्त्रवण नाव चो बीमारी ले बले बूटा बाचे से। नड़ेर बूटा ने 200 ले 300 लीटर पानी गोटोक बूटा हिसाब ले 4-4 दिन ने जेठ बत्तर ने देतो राय। शीतकार बेरा 1-1 हफ्ता पाछे पानी देउक लागे से। पानी कम रलो हिसाब ने नड़ेर गच्चो चारो कुती 2 फीट ले 4 ठान भीने भीने ठान ने टपक सिंचाई हिसाब ले 60 ले धरून 80 लीटर पानी रोजे दिना हिसाब ले दिलो ने बले होक सके। नड़ेर बूटा ने तना श्रवण बीमारी जौटे से। ये होलो ने गच ने खंडिया खंडिया महा होन जाए से। हुताले लाल धमसिया महा रंग बोए से जोन सुकून भाती करिया होन जवाए। ये जुलाई ले नवंबर तक हो से। ये रोग होलो ने बूटा मरुक सके। ए चोले बचा तो काजे बरसा मूर होलो बेरा गोबर नहले कंपोस्ट खत संगे 5 किलोग्राम लीम खली गोटोक गच्चो हिसाब ने रोजे बरक देतो राय। रोग होन गेलो ने सबले पहिल करिया लसा के छेनी संगे काटून निस्काउन देतो राय और हुता ट्राइकोडर्मा विरडी एके लिपुन देतो राय। असन होलो ठान ने बार्डो पेस्ट बल्ले 100 ग्राम तूतिया और 100 ग्राम चूना के 1 लीटर पानी ने घोरून लिपलो ने बले गुणकारी हो से। गोटोक रोग हो से शिखर अवरुद्ध। ये रोग होलो ने पाना मंचो पूरे बाट कोचमलो महा पाना झोपा ने निकरतोर पाना चो पूरे बाना दखा देतोर पाना कम होतोर दखा दे से। ये रोग माटी ने बोरान जीनिस कम रलो ने हो से। एक आजे माटी परीक्षा करालो ने माटी ने बोरान जीनिस कम दखा दिलो ने बरक कार ने 2 फरवरी ले मार्च आरु अगस्त ले सितंबर ने 50 ग्राम सुहागा गोटोक गच्चो हिसाब ने देतो राय। दादा दीदी मन, ये रहे नड़ेर कमानी चो वाट। असन हिसाब ले कमानी कर लो ने तुम्ही नड़ेर चो खूबे उपजन पाउक सकास।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिक की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोता सुमन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक का प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आसपास से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की नानू, रविंद्र सेन और यहीं से खुशी रौनक सेन। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से आप हैं दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से आप हैं हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दीदी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। विडुल उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं गंगाधर पोपलवाड़, समीयक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मीबाई पोपलवाड़ और भारत धुले। अंबेडकर चौर वाकोड़ी से आप हैं उत्तम जमधाड़े और देवशाला जमधाड़े। पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। ग्राम बुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। हिंदराज रेडियो श्रोता संघ खुपड़ी महाराष्ट्र से आप हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से आप हैं हरिभाव बिडले, श्रवण अनीता बिडले। गोरबा बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं देवलाल कर्ष, कामिनी कर्ष और यश कर्ष। डोंडीलोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवशंकर तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बेबी और पूजा तामोरिया। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। पुरानी भिलाई चरौदा से आप हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी। पटेलनगर मरोड़ से आप हैं डॉक्टर राजेश रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और बेबी आरजू जजोरिया। संत कंवरवाड भाटापारा से आप हैं रामगुलाब सेन, नूतन कुमार सेन और बेबी पूजा सेन। ग्राम नागर कोहका जिला राजनांदगांव से आप हैं जगराम साहू, बबलू, जामुन देवी साहू, राजू, दुष्यंत, लल्ला, प्रांजल, प्रेम, पूजा और बेबी आराध्य साहू। शनि मंदिर चौक खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी और दीपिका सैनी। सालर पहलगाम कश्मीर से आप हैं पीरजादा महराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केसरुद्दीन। रानीगांव नगरी से आप हैं किलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सिजल साहू। भवानी माता वार्ड खंडवा से आप हैं भाई राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय सेन। दतरंगी से आप हैं भागवत वर्मा, लेवई से आप हैं गुलाब दास। लचनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन और पुष्पराज सेन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मदनपुर से आप हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, सोमू और मानस राज। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव से आप हैं रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान। बन बघेरा डोंगरगढ़ से आप हैं योगेश शर्मा, आशा शर्मा, नीरज, नीलेश और अंजलि शर्मा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, उत्तरानी केवट और कृष्णा केवट। दुर्गा चौक रायगढ़ से आप हैं केंद्रलाल श्रीवास, लक्ष्मी बरेट, लक्ष्मण बाधवानी, अब्दुल सलीम, संतोष श्रीवास, मनोज यादव और गेंदु भाई। पारोन विश्नापुरी से आवे प्यारीदास मानिकपुरी, खिलेश मानिकपुरी, रोहनदास मानिकपुरी और नैन्सी मानिकपुरी। ग्राम भंडार शिवनी, जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। बोड़सरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। लछनपुर से आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, धनाक्ष और आरू साहू। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। गोलबाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित आर्य। पोटियाकला दुर्ग से आप हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। शहीद टेकराम चौक हाथबंद करेली से आप हैं भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार ध्रुव। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवणकर राही, सरिता गवणकर, सिद्धांत गवणकर, प्रिंस एकांश गवणकर। आकर हाइट्स बहादुरा नगर नागपुर से आप हैं शैलेश गवणकर, वैशाली गवणकर, श्वेता सुमित गवणकर और ध्वनि गवणकर परी। श्री रोकड़ेश्वर नगर जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं टिला रामचंद धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभी मंजूषा, गौतम इंगोले, रामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखा राम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। झुमरी तलैया से आप हैं झकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरासिया। बठिंडा रोड डाबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। खमहरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, माना साहू और प्रतीक कुमार। ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, निधि वर्मा, निखिल वर्मा, यश प्रणय वर्मा और पार्थ कश्यप। सोंगा धमतरी से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। आर्यनगर कोहका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। छत्तीसगढ़ धमता ग्राम सुकरी कला से आप हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि जंगेल और ओशिका जंगेल। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, हेमंत बबलू जैन, गुड्डू तिवारी और उमा तिवारी। सिद्धार्थनगर दरियापुर से आप हैं गजानन एले, नवदीप एले और विश्वदीप एले। ग्राम शेरी वार्डनेर से आप हैं बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक तिरसुनिया, मनोहर निषाद, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। ग्राम अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। ग्राम दुल्हापुर से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, रितिक और बलबीर। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी। जम्मू कश्मीर से आप हैं रवि राजदान, एम एस अब्बासी, देवलाल, रोशनलाल, मीरचंद और साहिल डार। पीपरपरा पलचुआ मुंगेली से आप हैं उत्तरा दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। एकता कॉलोनी रोहतक से आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और सुभाष लूना। ग्राम दुर्गा कॉलोनी हांसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। पूर्वी चंपारण बिहार से आप हैं आर्यन राज, सुमित राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ग्राम घुटकू से आप हैं नकुल सिंह लोनिया, अंशु आयुष चौहान, शांति काजल सिंह राजपूत, पूनम सिंह राजपूत, पुनीत सिंह राजपूत और ओम शंकर लोनिया। कनेडा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। लालपुर मारो से आप हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निमी पमी ध्रुव, सिया और हर्षिता ध्रुव। अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और नवासी देवी गव्या। गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर और निशा। चावला चौक गांधीधाम से आप हैं रमेश मूलचंदानी और जय मूलचंदानी। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म मेरे जीवन साथी का गीत, गीत मजरू के और संगीत आर डी बर्मन का। तो लीजिए आपकी पसंद आपकी नजर करते हैं।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए फिल्म नूरी का गीत। गीत रचना जानिसार अख्तर की और तर्ज बनाई है खय्याम ने। अनुरोध आप सबकी। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल यादव। मयंग रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। भाटापारा से आप हैं दानसिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तफा खान, रऊब भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। रेवले कॉलोनी बठिंडा पंजाब से आप हैं जागमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। खेरड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा, आरवी और बोड़खे परिवार। गांव कोली नांदेड़ से आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। गांव परसाटोला जिला अम्बागढ़ चौकी से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारिणी मसिया। सुराणा मोहल्ला बीकानेर से आप हैं नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं

जय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और वैदिक वेद। रोहनसी पलारी से अभय मुकेश कुमार साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू और मयंक साहू। कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ जिला खरगोन ग्राम गोगावा से आप हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफर खत्री। कलानौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गाफर डावर जी, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, अब्दुल रहमान डावर, अब्दुल कादर डावर और हमजा डावर। गोहलजिन सनावत से आप हैं मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इसहाक और तलहा बब्बू डब्बू। कासम कॉलोनी सनावत से आप हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिम मीना। ग्राम कुमली लौंडीगुड़ा से आप हैं बसंती पांडे, दुधेश पाणीग्रही, अवनीश पाणीग्रही, चुनौती पाणीग्रही, तेजल हिमांश और कमल पाणीग्रही। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतना नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुड़त। लगन पंडारिया छत्तीसगढ़ से आप हैं रुक्मणी बघेल, उत्तम कुमार, साहिल और भारती बघेल। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से आप हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू। शीतला माता चौक खंडवा से आप हैं कन्हैया मालाकार और राधिका मालाकार। रामगंज खंडवा से आप हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल और विवेक महोबिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अर्जान अब्बासी और अबान अब्बासी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा। आप हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। मेघापारा लोरमी से आप हैं मनोज कुमार साहू, कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं तिजन सिंह मरावी, देवानंद देवलाल मरावी एवं समस्त मरावी परिवार। सैयद मोहम्मद जावेद सगुप्त अंजुम आप हैं टावर चौक गुमला से। डबरापारा सौंगा मगरलोड जिला धमतरी से आप हैं कोमल सेन, तोषण कुमार सेन, पिंकी और रीना सेन। तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: दिल्ली शहर मोरी गेट से आप हैं कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजली, सोहम बोरगांवकर। गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। सपना संगीता रोड इंदौर से आप हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। जिला किशनगंज बिहार से आप हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु। सर्वानिया महाराज जिला नीमच से आप हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार और यशस्वी पाटीदार। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। छोटी बलिया कजत से आप हैं अहमद भाई फूले वाले, इकबाल भाई फूले वाले, दुरेशा बेगम फूले वाले। कपासहेड़ा नई दिल्ली से आप हैं नशरीन आज़ाद, बेबी आमना परी और मंजूर फिरोज राजा। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजाबिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चिना शेख। आप सभी ने सुनना चाहे साहिर का लिखा गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। धुन तैयार की है ओपी नैयर ने। फिल्म है नया दौर, तो पेश है आपकी पसंद आपकी नज़र।

इसी गीत के फरमाइशकर्ता और हैं। राजपूत कृषि फार्म, ग्राम मीरतला, जिला महोबा, यूपी से आप हैं। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र सिंह, गौरव सिंह और गुरु महाराज, जानवी राजपूत और विनीता सिंह। देवकी बिहार कॉलोनी, सलारपुर, सारनाथ, बनारस से आप हैं। बाबू यादव, सीमा यादव, अनु यादव, दुर्गेश यादव और अरुणेश यादव। ग्राम ममना सरीला, जिला हमीरपुर, यूपी से आप हैं। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम खकल, जिला जालौन, यूपी से आप हैं। दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंश सिंह गुर्जर और उनके समस्त परिवार। ग्राम जैसेला फालोदी, राजस्थान से आप हैं। राजा राम जवर, बिश्नोई, नाथू कोडेचा और महिपाल। ग्राम टौरी, जिला दतिया से आप हैं। सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल केवट, छोटू केवट, खुशी, खुशबू, पायल केवट, ऋतिक, अमित और आरुषि केवट। गायत्री मोहल्ला, पनवाड़ी, जिला महोबा, यूपी से आप हैं। देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज गुड्डी और अंकुश पांचाल। शिवाजीनगर वडाली देशमुख से आप हैं। राजेश खोबड़खेड़े, शिवसागर खोबड़खेड़े और इंद्रबाई खोबड़खेड़े। खांडवी बुलढाणा से आप हैं दिवाली रामधाड़े और स्वराज रामधाड़े। थिदोरी अमरावती से आप हैं सुनैना पवन भोंडे। ग्राम फूलझर घटारानी धाम से आप हैं योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू और कोकिला साहू। मुजगहन बालों से आप हैं चिंता राम साहू, नरबदिया बाई साहू, दिनेश दुलार और उर्वशी साहू। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से आप हैं देवी दीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कपिल, पूजा अहिरवार। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। धामोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव मट्टू। मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, प्रांशी पाल, निवेदा पाल, ज्योति पाल, मानसी पाल, सुदीपा पाल और सुशीला पाल। आप हैं ग्राम पोस्ट बीरखेरा, जिला हमीरपुर, यूपी से। रजौनी, जिला महोबा, यूपी से आप हैं उदयभान पाल, दीक्षा पाल, जयहिंद पाल, प्रतीक्षा पाल और विमलेश पाल। शिवकोठी ओमकारेश्वर से आप हैं राकेश पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, ओम सेन और पिंकी सेन। इसने रेडियो श्रोता संघ ग्राम मीरतला, जिला महोबा, यूपी से आप हैं सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि, दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर, नंदी, किशोर और ब्रिजनंदन। जय सिया माता रेडियो श्रोता संघ ग्राम

पवई जिला हमीरपुर यूपी से आप है किन्ना बाबू कुशवाहा, बलराम कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा, अभिजीत कुशवाहा, नंदिनी कुशवाहा, अंशिका कुशवाहा, शिवेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र कुशवाहा। जय माँ सरस्वती। रेडियो श्रोता संघ ग्राम ममना जिला महोबा यूपी से आप हैं सोहन सिंह राजपूत, भैया एल के राजपूत, आकाश सोनम सिंह, प्रियांशी और एस एस राजपूत। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, सालता रानी और हिना। संत गागड़े नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आप हैं अनिता गाठोड़े, रमेश चंद्र गाठोड़े और लोकेश। ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर यूपी से आप हैं रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव और आर्यन यादव।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म मेरी जंग का गीत। आवाजें हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चाहत आप सबकी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। छतरी तलाव अमरावती से आप हैं साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता। ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख बाहो और नूरजहां बानो। बदलापुर मुंबई से आप हैं बंटी गवणकर और सुभाष पोतेवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, धनेश तिवारी, सावन नायक, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी और बबला यादव, अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी। सहारनपुर यूपी से आप हैं राधा नामदेव। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो अभनपुर से आप हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। लोरमी गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा और पूर्वी। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव और तेजल यादव। पाकुड़ झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बौड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। ग्राम लुहेरी जिला महोबा यूपी से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु और रोनिका यादव। उदिता विश्वकर्मा और सुजिता विश्वकर्मा आप हैं देवरिया यूपी से। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से आप हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्य कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। ग्राम फारहांसी हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरव डूडी। शंभु दयाल खटक आप हैं गांव जाखोद राजस्थान से। नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा और पापाजी नायक चंद मल्होत्रा आप हैं खैल बाजार पानीपत से। रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का और कुनिका सिक्का। सब्जी मंडी बुलढाणा से आप हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयाज एनम। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। वली उल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी, फातमा नाज अंसारी और

हिना परवीन अंसारी, आप हैं पुराना तालाब डुमराव से, जेल रोड बक्सर से आप हैं राज अंसारी, शिल्पा राज और नेहा राज, जेल रोड मधुबनी से आप हैं गुड़िया कुमारी, नरेंद्र डोम, महेंद्र डोम और उमा डोमीन, दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जामनिया ज़िला गाजीपुर यूपी से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, विपिन जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल आप हैं गम्हरिया जमशेदपुर से, ग्राम वड़गांव डिघी तहसील नादोड़ा जिला बुलढाणा से आप हैं वासुदेव बोधवड़े, माधुरी बोधवड़े और आकाश कुमार बोधवड़े, गांव जमधड़ा जिला कच्छ भुज से आप हैं गंगा वणकर, प्रीति जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट और समस्त वणकर परिवार, जवाहरनगर दुर्ग से आप हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना और विपुल कांबड़े, ग्राम छिंदडीह पुजारी पारा जिला कोंडागांव से आप हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी, कोल सिटी बरकाकाना से आप हैं अफजलताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तेजवती सिंह, राज सिंह, अदिति सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा, चितलवाड़ी अकोला से आप हैं अमोल इंगोले, अर्चना इंगोले, सर्वेश इंगोले, अधीरा इंगोले और राजवी, तुलसीराम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती, ममता गोमती, जिगर, हर्षिता साहू आप हैं महुआ खपरखेड़ा से और नैनेलाल साहू आप हैं तेंदुडावर से, जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, भागेश्वर मंडा भी आप हैं ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव से, अभनपुर धर्मपुर अबस्तर से आप हैं वी पूनम नायडू, डी वनीता नायडू, डी कृष्ण राव नायडू, डी सोमशेखर नायडू, डी रोजा देवी नायडू, डी अक्षय नायडू और डी प्रांजल नायडू, सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव और नौबत यादव आप हैं ग्राम पीपल नीम चौक अल्मोड़ा केशकाल से। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त सुखेंदु मलिक को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आकाशवाणी का। ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity, and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions, and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, Ahn Jung-bak, in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense, defense industry, and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability, and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said, "It was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University, and the UN Peacekeeping Corporation." The minister said that he is looking forward to strengthening the special strategic partnership between the two nations. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle-launched precision-guided missile, V-3, marking a significant achievement for the country's defense sector. Defense Minister Rajnath Singh has complimented DRDO and termed it a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defense. More from our correspondent.
1: The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. During the tests, the missile system was operated through an advanced integrated ground control system designed to automate launch and operational readiness. The trials successfully demonstrated the missile's precision strike capability, reliability, and effectiveness in varied combat scenarios. The missile was developed by Research Center Imarat Hyderabad in collaboration with other DRDO laboratories. Developed entirely within the country, the project highlights the growing strength of India's domestic defense manufacturing ecosystem with the participation of MSMEs and private industries under the Atmanirbhar Bharat initiative. For production, DRDO has partnered with Bharat Dynamics Limited and Adani Defense Systems and Technologies Limited. The missile system was integrated on UAVs developed by New Space Research and Technologies Bengaluru for the trials. The successful completion of the test has cleared the way for serial production of the missile system, further strengthening India's indigenous defense capabilities. Allu Murli, Akashvani News, Vijayawada.
0: The Supreme Court today dismissed a petition challenging the center's decision to undertake caste enumeration as part of the upcoming census, saying the issue falls within the policy domain of the government. A bench headed by Chief Justice Suryakant observed that the government needs to know the number of people belonging to backward classes to frame welfare measures for them. The bench said there was nothing wrong in collecting such data and declined to interfere in the matter. The investigations into the recent incidents of fire reported in trains have revealed the possible involvement of anti-social elements in several cases. Sources said that the railway has taken these incidents seriously and the Railway Protection Force is carrying out intensive investigations into the matter. In an incident near Amarpura station in Rajasthan, an attempt was made by an unidentified individual to set fire to linen materials inside a coach, which led to the outbreak of fire. In a separate case in Howrah, a piece of cloth soaked in petrol was recovered from the bathroom of a train that caught fire. Similarly, in Kota, Rajasthan, the initial flames in the Rajdhani Express were also reported to have originated from the bathroom area. In Sasaram, Bihar, the incident took place in an empty train and coach with no power generator present. Union Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi has said that the government is dedicated to reducing the regulatory burdens by enhancing marketplace fairness through smart regulation and responsive governance. Addressing a function virtually on World Metrology Day 2026, Mr. Joshi stressed the need to make legal metrology a cornerstone of consumer confidence and industry accuracy that strengthens the quality of the standard. He said Prime Minister Narendra Modi has envisioned that the quality of Indian products must meet the global standards and be environmentally sustainable. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department or IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over northwest and central India during the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Odisha, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand for the next 4 days. Meanwhile, Assam, Meghalaya, Keralam, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands are expected to receive heavy rainfall until tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Bihar, Himachal Pradesh, interior Karnataka, Jharkhand, Lakshadweep and coastal Karnataka for the next 2 days. Most districts of Rajasthan are currently in the grip of intense heat and heat wave conditions. The Meteorological Centre has issued an orange alert for heat wave conditions in 2 districts of the state today, while a yellow alert has been issued for 14 districts. Our correspondent reports that the scorching sun has affected normal life.
2: Severe heat and hot winds are troubling people across the state. Along with the days, the nights are also extremely warm. In most districts, day temperatures are being recorded between 42 and 46 degrees Celsius, while night temperatures are running from 26 to 31 degrees Celsius. The Met Center has predicted that the heatwave conditions are likely to continue for next 3 days. Meanwhile, Health Minister Gajendra Singh Khimsar has directed to ensure all necessary arrangements in hospitals for heatwave management. Instructions have been issued to reserve separate beds for heat stroke patients, ensure the availability of essential medicines and arrange shared and drinking water facilities in hospitals. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
0: Punjab and Haryana are reeling under severe heat wave conditions with maximum temperatures ranging between 40 and 47 degrees Celsius across both states. The Meteorological Department has already issued an orange alert for the region. A report.
3: Director of the Chandigarh-based Met Department, Surinder Pal, told Akashwani that the weather will remain dry and temperatures would increase in the coming 3-4 days. Western districts in both the states would experience more heat wave conditions. In Punjab, these districts will be Amritsar, Firozpur, Tarn Taran, Mansa, Sangrur, Bhatinda and Muktsar. And in Haryana, Hisar, Rohtak, Jhajjar, Bhiwani, Gurugram and Faridabad would feel the maximum heat. In the last 24 hours, Faridkot in Punjab sizzled at 47.3 degrees Celsius. And Rohtak felt the heat at 46.9 degrees Celsius in Haryana. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
0: In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as a 35-year-old Narendra, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlights several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
6: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
7: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
4: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे

0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

जुहार दादा दीदी मन, जुहार। हाँ तो दादा दीदी मन, रोजी दिना असा नामी हुनी समया ने ज्ञान ध्यान और गीत गोविंद की धरुन भाती अमरव से अले तेबे में मोर करे से एची संगे कला और कलाकार सुनतो सब पाए गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया मन के मैं सेवती करें से जुहार और नानी नानी पिला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे मया। हाँ तो दादा दीदी मन, जुहार भेटतो होलू। मानतर आम्ही रोजी दिना आसन कहीं ना कहीं नगद गुड बात और उवाट मन के करूँ से हुसने आजी आम्ही कला चो जरिया ले पहचान बनातो चो बारे ने गुड बात करूँ दे। कला माने चो जीवना चो महत्वपूर्ण हिस्सा आए। ये सोजे मनोरंजन चो साधन नहीं आए बल्कि आप लो भावना विचार और संस्कृति के दखातो चो जरिया आए। आजी चो समय ने लोग मन के आप लो कला प्रतिभा चो जरिया ले देश विदेश ने प्रसिद्धि मिले से एची काजे बुलवात कला माने चो पहचान बना हुआ है। कला चो महत्व खूबे आए प्रतिभा के पहचान मिरे से हर माने लगे कोने ना कोनी कला रहे से। जब माने आप लोग कला के नंगत ढंग ले दखाए से तो समाज ने सम्मान और पहचान मिरे से। जसन की नंगत गीत कुरिया आप लोग आवाज ले प्रसिद्ध होए से चित्रकार आप लोग चित्रकारी ले पहचान बनाए से उसने कई कलाकार मन आप लोग कला चो जरिया ले पहचान बनाए सोत। कला माने चो आत्मविश्वास के बढ़ाए से माने आप लोग भावना विचार के खुलून बाती व्यक्त करे से जेचो ले लोग मन हुंचो हुनर चो बारे ने नगद गुड बात कर लो ने हुंचो आत्मविश्वास बाढ़े से। कला चो जरिया ले संस्कृति और परंपरा के बढ़ावा मिले से लोक नृत्य लोक गीत और हस्तशिल्प जसन कला मन आमचो संस्कृति चो पहचान है। एचो ले

0: याले आमच्यो परंपरा आगे पीढ़ी लगे अमरे से कला रोजगार चो अवसर दे से आजी चो समय ने कला सोजे शौक नहीं आए बल्कि रोजगार चो जरिया बले आए। लोग मन चित्रकारी नाचा गीत अभिनय सज्जा कला हस्तशिल्प और कई कला चो जरिया ले आप लोग करियर के नंगत बनाए सोत। हाँ तो दादा दीदी मन असनी गुड बात होते रह दे असनी जहाला से ये जहाला के सुनू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: हाँ तो दादा दीदी मन कितनो नंगत गोट मन के सुल्लू और आमी गोट बात करते रहूं कला चो जरिया ले पहचान बना तो चो बारे ने। सोशल मीडिया और कला ले आजी जो समया ने सोशल मीडिया कलाकार मन के नुआ पहचान दे से लोग मन यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक थाने आप लोग कला के दखन बाती लाखों लोग मन लगे अमरुन बाती आप लोग पहचान बनाए सो। जैसन की गीत कुरिया आप लोग गीत के अपलोड करे से नच कुरिया आप लोग नाचा जो वीडियो के साझा करे से कलाकार आप लोग चित्रकारी के ऑनलाइन बेस हो तो दादा दीदी मन बोल तो गोटे आए कि कला रलो ने फोका नहीं रोक पड़े कहीं ना कहीं कला आमचो लगे आसे तो आमी आप लोग कला के नंगत बनाउन बाती आप लोग पहचान और नाम कमाउक सकूँ कला चो जरिया ले। बस्तर चो कला और पहचान आप लोग पारंपरिक कला और संस्कृति काजे प्रसिद्ध आसे। आमचो बस्तर ने ठोकरा कला बांस शिल्प माटी कला लोक नृत्य लोकगीत ये सपाय देश विदेश ने प्रसिद्ध आसे। ये सपाय कला ले आमचो बस्तर के विशेष पहचान मिरली से कला चो जरिया ले आम के खूबे फायदा होए से सबले पहले तो आमचो आत्मविश्वास बाढ़े से मानसिक शांति मिरे से नुआ सोचो विकसित होए से समाज ने सम्मान मिरे से आर्थिक लाभ माने आम के पैसा कमातो चो जरिया मिरे से तो असन आए कि कला ले आम के खूबे फायदा मिरे से कला माने चो जीवना के नंगत और अर्थपूर्ण बनाए से माने के समाज ने अलग पहचान मिरे से और संगे संगे आप लोग प्रतिभा के उजागर करतो चो अवसर मिरे से एची का जे सपाय के आप लोग कला चो पहचान करुन बाती आगे बढ़ती करतो रहे। कला ने हुन शक्ति आसे जोन साधारण माने के बले विशेष पहचान दिलाऊ सके। हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट बात मन के सुन लू और नंगत गोट बात सुन लो ने मन के नंगत लागे से और हुंचो संगे खिनिक गीत गोविंद सुन लो ने और नंगत लागुआ तो दादा दीदी मन असनी गीत आसे ये गीत कुरिया मनात लोकनाथ वैष्णव और हुन मंचो संगवारी अले ते भी ये गीत के सुनू।

0: हाँ तो दादा दीदी मन काय रसरसल्या गीत के सुन लू और नंगत गोट बन के बल्ले सुन लू मानतर आम्ही रोजेदिना असन कोणी ना कोणी कलाकार चो गोट बात मन के करू से तो हुसनी आजी आम्ही आजी चो कलाकार ने हाकू साह जोन लोक चित्रकार आद एमन चो बारे ने गोट बात करूं दे। हाकू साह भारत चो प्रसिद्ध चित्रकार कला शोधकर्ता और लोक कला विशेषज्ञ रला। एमन भारतीय लोक कला और आदिवासी संस्कृति के देश विदेश ने पहचान दिला तो चो महत्वपूर्ण काम करला। हाकू साह चो जन्म 1934 के गुजरात ने हो रहे। एमन विशेष रूप ले आदिवासी जीवना लोक परंपरा और ग्रामीण संस्कृति ले प्रभावित रला। एमन भारत चो लोक और आदिवासी कला के गहराई ले अध्ययन करला। गाँव और आदिवासी क्षेत्र मन ने जौन बाती हुन थान चो कला संस्कृति और जीवन शैली के समझला। हाकू साहचो चित्रकला ने गांव चो जीवना प्रकृति लोक देवता आदिवासी संस्कृति धार्मिक भावना ये सपाय स्पष्ट रूप ले दखा दिवाए। हाकू साहचो चित्रकला चो विशेषता खूबे आए सरल और आकर्षक शैली एमन चो पेंटिंग ने सरल रेखा और प्राकृतिक रंग चो उपयोग होते रहे जेचो ले चित्र दख्तो ने साधारण रहे मानतर भावना ले भरपूर रहे। आदिवासी और लोक संस्कृति चो चित्रण करला एमन आदिवासी समाज चो परंपरा तिहार और जीवना के आपलो कला ने स्थान दिला। हाँ तो दादा दीदी मन असनी गोटपात होते रह दे असनी जहाला हसे ये जहाला के सुनू।
1: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंड सामान किन मोलवेंड कम मत्तांक जानवर किन इलाज तकवेंड राहत दरकना दुमिद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
0: हाँ तो दादा दीदी मन नंगत गोट बात के सुन लू और अमी गोट बात करते रहूं हाकू साह चो बारे ने। हाकू साह भारत चो संस्कृति ले एमन खूबे मया करते रहो जेचो ले एमन चो कला ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता चो झलक दखूब मिरवाए। प्राकृतिक रंग चो उपयोग करतोर खूबे पसंद करते रहो। हाकू साह भारतीय लोक कला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने पहचान दिलाला एमन कई प्रदर्शनी आयोजित करुन बाती लोक कलाकार मन के प्रोत्साहित करला। ये सोजे चित्रकार नहीं रहोत बल्कि लेखक शोधकर्ता शिक्षक रला। एमन के आप लोग कला योगदान काजे कई पुरस्कार और सम्मान मिलली। भारतीय लोक कला संरक्षण काजे एमन चो योगदान खूबे महत्वपूर्ण रहे। हाकू साह आप लोग कला चो जरिया ले भारतीय लोक संस्कृति और आदिवासी जीवना के नुआ पहचान दिला। एमन ये सिद्ध करला कि लोक कला सोजे परंपरा नहीं आए बल्कि आमचो संस्कृति चो विरासत आए। हाकू साह लोक कला के विश्व स्तर ने सम्मान दिला तो काम करला। हाँ तो दादा दीदी मन नंगत गोट बात तो होली मानतर नंगत गोट बात सुन लो ने मन के हरिक लगवाए और मन हरिक होलो ने गीत गुमे सुनुक भावाए तो असनी गीत आसे मोचो मोडरा ने और ये गीत कुरिया मनात बलवीर सेकक छ और हुन मंचो संगवारी अले ते भी ये गीत के सुनू।

हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गीत के सुनते रहूं। गीत गोविंद असन है कितरे सुनते रहो ने भले मन नहीं भरे और सुनुक सुनुक भाव है। तो असनी और गीत आसे मोचो मोडरा ने ये गीत कुरिया आज जलधर और हुमनचो संगवारी अले तेबे ए मंचो गीत के सुनू।

हाँ तो दादा दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लो, गीत गोविंद ज्ञान ध्यान चो गोट मन सुनते रहो ने समया चो पता भले नहीं चले। और मोचो जातो समय भले होली तो, और तुम्हें भले जान चाहस कि समया चो कितरो मोल आए, समया ने गिलो ने समया ले एक हुआ है। तो सपाए के सुनते सुनते मोचो जातो समय होले तो मोके जातो पूरे मोके विदा दिया, फिर कोनी देने भेंट गाट हों दे एची संगे कला और कलाकार सुन तो सपाए गाँव करिया दादे दीदी सियान सजन और संग जोहरिया मन के मैं सेवती कने से जुहार।

कला और कलाकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, मीडियम वेव पर ये सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम फिर हाजिर होंगे। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए जानें हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रम क्या हैं। पहले जानें आज के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर हम प्रसारित करेंगे गोंडी समाचार बुलेटिन। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:00। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव प्रसारित किया जाएगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 कार्यक्रम कुड़े फूल में आज हम आपको सुनवाएंगे भतरी लोकगीत। कलाकार होंगे मेरी राम बघेल और साथी पीला मन काजे गोट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी माधुरी यादव की। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। वार्ड कार्यक्रम में रात 9:30 पर शासकीय योजनाओं की जानकारी के अंतर्गत आज जानकारी दी जाएगी जैविक खेती मिशन की। प्रस्तुति होगी दीपिका ठाकुर की। रात 10:00 हल्बी बोली में हम प्रसारित करेंगे भेंट वार्ता ग्राम विकास संगठन की पारंपरिक व्यवस्था। इस विषय में श्री मंधर राम नाग से बातचीत होगी बलवीर सिंह कच्छ की। और रात 10:30 पर हम प्रसारित करेंगे पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब जाने कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनिएगा सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा शिव सागर त्रिपाठी का। श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:25 पर। सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर हम प्रसारित करेंगे कृषि सामयिकी की बेड़ा खाड़ा चुगोट। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर कल सुनिएगा उलट भैरम पाड़। वादक कलाकार होंगे भारत और साथी। सुबह 7:05 पर प्रसारित होगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे झलकी कुंदरू। लेखिका होंगी जयश्री शेंडे। प्रस्तुति होगी मयाराम नेता मावर नारायण सिंह बघेल की। साथी होगी सुमधुर फिल्म गीतों से सजी मधुरी माँ। सुबह 8:30 पर सुनेगा बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कल की फिल्म होगी रांझणा। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00 हम प्रसारित करेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गाने। गुरुदुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा आयतू नाग और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। सुबह 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कल का हमारा एक कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेता आर माधवन पर। गैर फिल्मी गीतों गजल सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में सुबह 11:30 पर। दोपहर 12:00 कार्यक्रम पाटा केंजा में कल सुनिएगा महागुराम और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार हम प्रसारित करेंगे दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। कला और कलाकार आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी चांदीकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी हम प्रसारित करेंगे शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा रामो बिसाई के स्वर में भद्री लोकगीत। शाम 7:00 हम प्रसारित करेंगे दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 डांडा माली कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे झिनकी नाग और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पीला मन काजे गोट। प्रस्तुति होगी शांति नाग की। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। इसमें सुनिएगा वार्ता साहूकारी लेन देन पर प्रतिबंध अंधविश्वास
जादू टोना, वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम घुमकली में नाटगीत, कलाकार होंगे लीमधर और साथी। रात 10:00 सुनेगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और रात 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हॅलो, गुड इव्हनिंग संगवारी मन. आशा करून से आप मन सपाय नंगत आसत होती. आम्ही भले नंगत आसो. मैं आप मन चो कंपियर दोस्त रोशनी नाग
1: और मैं है ममता साहनी. आम्ही दोनों करू से आप मन सपाय के जुहार.
0: कसा नसेत ममता?
1: मैं नंगत आस रोशनी, तू कहा नसेत?
0: मैं भले नंगत आस.
1: तू तो नंगत आस बल सीत रोशनी, घाम के नहीं दकीस?
0: देखें से क्या ममता, आजकल तो ऐसा घाम छे के सने, और घाम संग संग गोटक भर पानी बल मारन दे.
1: हाँ, दिन भर घाम छे के से और सांझ बेरा पानी लहरा दुखा.
0: हाँ, और ये पहिल पानी ने नहीं ममता.
1: हाँ?
0: कहाँ बाहर रले बले काय तो आम तो जोन बाहर कहाँ रहो से नहीं आमी हुदल दानी कोनी रुख खुट खाले नहीं रतो रहा.
1: हाँ रोशनी.
0: तो ममता,
1: हाँ?
0: आज आमी गोठियावा गोटक असन विषय के बारे में जोन की गांव जो तस्वीर बदलुक सके. तो विषय है स्मार्ट गांव.
1: स्मार्ट गांव सुनले ही लोग मन के लागे से कि गांव ने बड़े बड़े मॉल, छिगमिक छिगमिक सड़क और शहर जहन जिंदगी.
0: हाँ, मानतर स्मार्ट गांव जो मतलब सिर्फ आधुनिक इमारत न है, असली स्मार्ट गांव हूं है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और तकनीक सब पाँच सुविधा लोग मन लगे आसानी ले अमरो.
1: सत्य बलिश रोशनी. आगे गांव ने छोटे छोटे जरूरत काजे लोग मन के शहर जाओ पड़ते रहे. मानतर अदाय इंटरनेट और तकनीक जो मदद ने बहुत कुछ गांव ने ही होए से.
0: हाँ, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग, किसान ऐप, टेलीमेडिसिन और सरकारी संस्थान मंचो जानकारी.
1: हाँ, और अदाय तो कितलो गांव चो लोग मन मोबाइल ले बिजली बिल भर सोत और ऑनलाइन सामान मंगा सोत ने.
0: हाँ ममता, और सबले अच्छा गोट ये है अदाय गांव चो युवा नौकरी डगराओ शहरे नहीं पड़ात, बल्कि आप लोग गांव ने ही नया काम शुरू कर सोत.
1: सत्य बलिश रोशनी. कौन तो डेयरी चलाए से, कौन तो ऑनलाइन बिजनेस करे से, और कोनी तो आधुनिक खेती.
0: ममता,
1: हाँ,
0: तू के पता से स्मार्ट गांव चो सबले बड़े ताकत का है?
1: तकनीक.
0: तकनीक तो आई ची ममता, मानतर सबले बड़े ताकत है जागरूक लोग.
1: वाह, ये गोर तो जीव के छून गेली रोशनी.
0: काय का जब बोलो ने लोग साफ सफाई संगा दे, पीला जिला के पढ़ा दे, पानी बचा दे और नया चीज सीख तो का जे तैयार रह दे, तेवे तो गांव सत्य स्मार्ट बने दे.
1: मतलब सिर्फ सरकार नहीं, गांव चो लोग बले भागीदार बले बनुक सकत ने.
0: सोच अगर गांव ने हर

0: अपने शौचालय हो, हर पिला जिला के शिक्षा मिलो और हर महिला के आत्मनिर्भर बनतो और किसान मन के नया तकनीक अपनातो ने गांव कितलो आगे बढ़ सके ने।
1: हाँ, और जब गांव आगे बढ़े दे तेवे तो देश आगे बढ़े दे। आखिर भारत जो आत्मा गांव ने ही बसुआ ने।
0: हाँ सत्य बोले ममता।
1: मानते रोशनी स्मार्ट गांव बना तो का जी कई चुनौती बल तो आसे होती।
0: हाँ सत्य खूब जगह आज बोले इंटरनेट से समस्या आसे, अच्छा सड़क नहीं आए और खूबे लोग नया तकनीक के डरुआत।
1: हाँ, और सियान मन बोलवात ये मोबाइल और इंटरनेट इंटरनेट आम जो बस जो बात नु आए।
0: मानतर धीरे धीरे बदलाव एते जाए से अदाए गांव जो पीला मन आप लो दादा आई के बोले सियान सजन मन के बोले मोबाइल चलाओ सिखा सतने।
1: हाँ वाह रोशनी, ये तो डिजिटल इंडिया आए।
0: और ये गोटक जरूरी गोट स्मार्ट गांव जो मतलब प्रकृति जो रक्षा बोले आए,
1: मतलब
0: पेड़ लगा तोर, सोलर ऊर्जा अपना तोर, पानी बचा तोर और स्वच्छ वातावरण बनाउन संगा तोर।
1: हाँ, अगर विकास जो संगे प्रकृति सुरक्षित रह दे तेवे असली तरक्की हो दे ने।
0: हाँ आजकल कितरो गांव सोलर लाइट ले रोशन हो से और ये कहीं गांव ने बारिश के पानी जमा करून बावर सोत।
1: हाँ, और ये सब के दखुन लागे से कि गांव अदाय खेती तक सीमित नहीं आए बल्कि नया सोच और नया अवसर जो केंद्र बसे से।
0: संगवारी मन अगर आम चो गांव स्मार्ट बनने दे तो युवा मन के आप लोग सपना पूरा कर तो काजे शहर चो भीड़ ने भटकुक नहीं पड़े।
1: सत्य बलिश रोशनी, गांव ने ही रोजगार शिक्षा और सुविधा मिले दे तो जीवन और भले बेहतर हो दे।
0: हाँ तो संगवारी मन ये आमी सपा मिलन आप लोग गांव के साफ शिक्षित डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाते चो संकल्प धरो,
1: क्योंकि स्मार्ट गांव सिर्फ सरकार चो योजना नहीं बल्कि आमी सब चो जिम्मेदारी बले आए।
0: तो संगवारी मन ये तो रही आज चो चर्चा अदा आमी आपन का जे धरो नीलो से यादव केसवर सामान्य ज्ञान चो गोट रोजगार सूचना और वार्ता।
1: तो संगवारी मन अदा मुर करू पहिल गीत बाटे।
0: संगवारी मन आप मन के आमी पहिल गीत सुनावा फिल्म मिस्टर नटवर लाल ले जोन थाने आप लोग मधुर स्वर दिला से किशोर कुमार, लता मंगेशकर, गीतकारात आनंद बख्शी और संगीतकारात राजेश रोशन आले इया सुनो ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन, जहालाल पहिल सुनते रहला गोटो गीत रली फिल्म मिस्टर नटवरलाल ले। ये पहिल असन फिल्म रली जोन थाने अमिताभ बच्चन खुद पार्श्व गायक के रूप ने गाना गाउन रला। ये फिल्म चो नाम भारत चो मशहूर ठग नटवरलाल ले प्रेरित रली, जोन की ताजमहल और लाल किला तक के बिकतो कोशिश करन रहे।
3: रोशनी, संगवारी मन का जे ज्ञान ध्यान चो गोड बोले आनलू से आले हुन के बोले हम रान दियो।
2: हाँ संगवारी मन, भारत दुनिया चो सबले बड़े लोकतंत्र देश आए। बोलवात जोन थाने अलग अलग भाषा संस्कृति पहनावा और परंपरा चो बावजूद लोग गुटकी संगे मिलन मिसुन रोवत। भारत ने सैकड़ों भाषा और हजारों बोलियां गोठियावत।
3: कुंभ मेला दुनिया चो सबले बड़े धार्मिक मेला आए। बोलवात जोन थाने करोड़ों भक्त गुटकी संगे पवित्र नदी ने नहाव जावत। ये मेला हर 12 साल ने अलग अलग जगह ने आयोजित करवात।
2: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरिक्ष विज्ञान चो क्षेत्र ने पूरी दुनिया ने आप लोग अलग पहचान बना ली से। भारत ने बहुत कम खर्चा ने मंगल ग्रह तक अमरुन इतिहास रचन रहे, जो कि दुनिया भर चो वैज्ञानिक मन सराहनी बल्ला से।
3: सुंदरवन दुनिया चो सबले बड़े मैग्रोव वन क्षेत्र आए। ये जगह खास तौर ने रॉयल बंगाल टाइगर का जे प्रसिद्ध से और ये तक कहीं प्रकार चो दुर्लभ जीव जंतु दिखा दीवात।
2: तो संगवारी मन, ये तो रली आज चो ज्ञान ध्यान चो गोट अदाए फिर ले मोर करुबे गीत गोविंद बाटे। अगला गीत हम सुनावा फिल्म राजा हिंदुस्तानी ले, जोन थाने आप लोग स्वर दिला से उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी। गीतकार आज समीर और संगीतकार आज नदीम श्रवण। अले या सुनो ये गीत के।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: संगवारी मन जहालाल पहिल सुनतेरला सापमन गोटो गीत रली फिल्म राजा हिंदुस्तानी ले। ये फिल्म चो भारी सफलता करिश्मा कपूर और आमिर खान के बॉलीवुड ने सुपरस्टार चो दर्जा मजबूत करतो ने मदद करन रहे। करिश्मा कपूर के अभिनय का जे पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बोले मिलन रही।
2: रोशनी गीत गोविंद तो चलते ची रह दे ने।
1: हाँ।
2: अदाय संगवारी मन का जे रोजगार सूचना आनलु से ये के बोले
1: अमराव।
2: तो संगवारी मन छत्तीसगढ़ जो युवा मन का जे गोटुक महत्वपूर्ण भर्ती सूचना पूरे इली से cg.vyapam बाटले सहकारिता विभाग ने सब ऑडिटर जो 69 पद ने भर्ती निकल ली से। ये पद मन का जे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ले ग्रेजुएशन रतो जरूरी है, जबकि bcom अभ्यर्थी मन के विशेष प्राथमिकता मिले दे। ऑनलाइन कर तो आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल ले शुरू होली से। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मई 2026 सांझ 5 बजे ले आवेदन कर सकस। और अच्छा गोट तो ये आए कि छत्तीसगढ़ जो स्थानीय निवासी के एग्जाम शुल्क देव नी लागे। परीक्षा जो आयोजन 5 जुलाई 2026 के हो दी। परीक्षा केंद्र अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर और दुर्ग बनाला से। संगवारी मन यदि आप मन कॉमर्स जो क्षेत्र ले जुड़ला साथ
1: तो आप मन का जे गोटक अच्छा असर हो सके। आवेदन और विस्तृत जानकारी का जे आप मन vyapam.cg.cgstate.government.in ने जाऊन जानकारी प्राप्त कर सकास। संगवारी मन अदा सुना करियर और रोजगार ले जुड़ लो अगला खबर सीजी व्यापम बाटले। नगर सेना, अग्निमिशन और आपातकालीन सेवा मन ने विभिन्न पद ने भर्ती प्रक्रिया जारी कर लो राशि। ये भर्ती अभियान चो तहत लगभग 295 पद ने नियुक्ति हुआ है। ये थाने स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, वाहन चालक, स्टोर कीपर, मैकेनिक और वायरलेस ऑपरेटर जसन पद शामिल आसे। ऑनलाइन आवेदन चो अंतिम तिथि 5 जून 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित कर लो रासे। भर्ती चो लिखित परीक्षा 19 जुलाई 2026 के संभावित आसे। महत्वपूर्ण गोट तो ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया केवल होनी स्थानीय अभ्यर्थी भरुक सकोत जोन पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET उत्तीर्ण करला से। अगर जानकारी का जे आपन आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cg.cgstate.government.in ने जाऊन दखुक सकास। तो संगवारी मन ये तो रही रोजगार सूचना। अदा फिर ले मोर करो गीत बाटे और सुनो गोटो गीत फिल्म आशिकी ले जोन थाने आप लोग मधुर स्वर दिला से अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, गीतकारात रानी मलिक और संगीतकारात नदीम श्रवण। अले या सुनो ये गीत के

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन अदय सुनवा कुटुक वार्ता जो चु विषय है स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत। वार्ता का रात दामिनी जा।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी झा आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की भूमिका। भारत एक युवा देश है। हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या युवा है। यही युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। जब यही युवा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वे स्टार्टअप रूप में नई नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक ऐसा नया व्यवसाय होता है जो किसी नई सोच, नए आइडिया या नई तकनीक के आधार पर शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं होता बल्कि समाज की किसी समस्या का समाधान करना भी होता है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है ऐसा भारत जो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे बल्कि खुद अपने संसाधनों और क्षमता से आगे बढ़े। आज के समय में स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को आगे बढ़ने में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा नई सोच रखते हैं, वे जोखिम लेने से नहीं डरते और वे बदलाव को आसानी से अपनाते हैं। यही गुण उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। आज भारत में हजारों युवा अपने अपने क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ऑनलाइन सेवाएं। उदाहरण के तौर पर कई युवा ऐसे ऐप और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को आसान बना रहे हैं। इससे न केवल उनका खुद का विकास हो रहा है बल्कि वे दूसरे के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। स्टार्टअप के माध्यम से युवा न केवल नौकरी मांगने वाले बनते हैं बल्कि नौकरी देने वाले भी बनते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता, परीक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। लेकिन स्टार्टअप शुरू करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मेहनत, धैर्य और सही दिशा में काम करने की जरूरत होती है। कई बार असफलता भी मिलती है लेकिन यही असफलता हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। इसीलिए युवा को चाहिए कि वे अपनी असफलताओं से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़े। आज का युवा डिजिटल तकनीकी का बहुत अच्छा उपयोग कर रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपने व्यवसाय को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। इससे भारत की पहचान विश्व स्तर पर भी बढ़ रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा भी अब पीछे नहीं रहे। वे कृषि, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे गांव का विकास भी हो रहा है और देश में आत्मनिर्भर बन रहा है। आज के समय में इनोवेशन, नई सोच बहुत जरूरी हो गई है। केवल पारंपरिक तरीके से काम करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। युवा के पास नए विचार होते हैं और यही विचार स्टार्टअप का आधार बनते हैं। जब कोई युवा किसी समस्या को देखता है और उसका नया समाधान खोजता है तो वही से एक सफल स्टार्टअप की शुरुआत होती है। हमें यह भी समझना होगा कि हर युवा के पास संसाधन और अवसर समान नहीं होते। इसीलिए समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे हर युवा को समान अवसर प्रदान करें। शिक्षा, परीक्षण और सही मार्गदर्शन के बिना कोई भी युवा आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आज जरूरत है कि हम युवाओं को केवल डिग्री नहीं दें, बल्कि उन्हें स्किल्स यानी कौशल भी सिखाएं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स। ये सभी चीजें एक सफल स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। परिवार और समाज का सहयोग भी युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है। अगर परिवार उनका समर्थन करे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो युवा और भी आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे देश का हर युवा अपने अंदर की क्षमता का पहचानने और उसे सही दिशा का उपयोग करे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने देश के विकास में योगदान देंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
4: संगवारी मन सुनते रहला स्वार्ता दामिनी झाचो शब्द ने।
2: तो संगवारी मन फिर ले मुर करू बे गीत गोविंद बाटे। फिल्म आए हम किसी से कम नहीं, स्वर दिला से आशा भोसले, मोहम्मद रफी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। तो यह सुनो ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ममता,
3: हाँ,
2: जहालाल पहिल तो काय सुंदर गीत सुना लिस तुई।
3: हाँ,
2: गोटो कसनी गीत और सुना देती साले, बढ़िया लागन जाती ने।
3: हाँ रोशनी, अगला गीत है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्वर दिलासे कुमार सानू, लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित। तो यह सुनो ये गीत।

0: रोशनी,
1: हाँ
0: कहन लागली गाना?
1: काय सुंदर लागली ममता।
0: तो संगवारी मन, आमी हमेशा यही कोशिश करवाऊँ कि आम चो कार्यक्रम ने आप मन की जानकारी बले मीरो और मनोरंजन बले।
1: ममता,
0: हाँ
1: आज ऐसा नहीं लागे कि समय खूब झटके निकले से?
0: हाँ री, उस नीच लागे से
1: तो किशोरता से जब आमी नानी बेरा असनी पानी मारते बेरा बढ़िया रेडियो चालू करो, उनका सुंदर असनी गीत मन सुनते रहते रहने।
0: हाँ, मैं तो गाना बाजले नाचते बोल रहता रहा।
1: तो जानिस, मैं सोच रहा है कौन मन चला सो तो ती गाना इतरो अच्छा अच्छा बजाते रहता रहा है, मके तो बंद करुक ची नहीं भात रहा है रेडियो।
0: मकी बोले उसनी लागते रहे रोशनी।
1: और जब मैं पहली बार रेडियो सुन लेने, मैं सोचते रहा कि कभी आमी बोले असन आम के बल को नहीं सुन दे कि कसन असन असन लागत रहा मके, मानते रहता है सही में आम के को नहीं सुन सोत ने।
0: हाँ, मैं तो सोचन बोल नहीं रही कि मैं बोला सन गोटिया बोलती।
1: और आज कल जो मौसम बल इतरो अच्छा से कि आम के मतलब नहीं जसन मन रहे उसन टाइप से सब चीज मिल जाए से ने, जसन मूड रहे उसन गाना मेरे से, अरे पानी मार ले पानी असन, अरे घाम बेरा घाम असन ने।
0: जसन सब पाया अलग अलग प्रकार चुने।
1: और का तो गर्मी चो मजा कसन धर से तो
0: नी पूछ रोशनी, असन लागे से इनाम करे अच्छा खोज
1: जैसा। का तो मंडा पेच पी उतरा है तो
0: पीउचिया है मैं।
1: हाँ अच्छा कर सकते ममता।
0: हाँ?
1: आम चो जाते समय बल होली याद आए आम बल संगवारी मन संविदा धरू बने।
0: हाँ वाल धरू।
1: हाँ तो संगवारी मन, मैं आप मन चो आज जो कंपेयर दोस्त रोशनी नाक
0: और मैं है ममता साहनी।
1: आम फिर भेट घाट हुआ अगला कार्यक्रम ने, तब तक का जी दिया सुविधा। जुहार,
0: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप ट्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करें शुभारंभ। 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग है अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई व्यापारी मन दुकान राखिन बंद। अब समाचार विस्तार ले। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज रायपुर पुलिस परेड मैदान में डायल 112 फेस टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के शुभारंभ करीन। ये मौका मा उमन 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के रवाना करीन। उमन किहिन की पहली डायल 112 सेवा सिर्फ 16 जिला तक सीमित रहीस, जेकर बढ़वार अब प्रदेश के सबो 33 जिला में कर दे गए है। उमन यहू बतेन की सबो गाड़ी में आधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक हवे। डायल 112 में पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन और हाईवे इमरजेंसी जैसन सबो आपातकालीन सेवा ले जा सकत है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के आदेश जारी करे है। ये नवा दर सरकारी स्कूल के संगे संग आत्मानंद स्कूल और अनुदान मिले विद्यालय मन में घलो लागू होही। जारी आदेश के मुताबिक हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थी मन के स्थानीय शुल्क 410 रूपया ले बढ़ा के 500 रूपया करे गए है। उन्हें उच्चतम माध्यमिक स्कूल के लयिका मन ला 445 रूपया के जगह 550 रूपया देवर पड़ी। विभाग के मुताबिक नवा दर अवैया शिक्षा सत्र ले लागू हो जाही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार ले उर्वरक लेना मुश्किल हो जाते। उमन रासायनिक उर्वरक मां निर्भरता कमती करे बर जैविक खेती मां ज्यादा जोर दीन। श्री चौहान कहिन कि वैश्विक चुनौती के बादो केंद्र सरकार किसान मन पर पर्याप्त खातु आपूर्ति सुनिश्चित करे के प्रयास करत है। उमन छूट वाले खातु के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दीन और राज्य ले नकली और घटिया किस्म के खातु के आपूर्ति करैया मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे बर किहिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के अगुवाई करीन, जेमा अवैया नीट UG के फेर ले परीक्षा के तैयारी ला देखीन। परीक्षा के आयोजन में ईमानदारी और साफगोई के जरूरत में जोर देवा श्री प्रधान निर्देश दीन कि पाछू परीक्षा में जौन कमी रहीस तेला दुरियाए जाए। बैठक के बेरा सबो राज्य के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के संग मिलके बैठक करे के निर्देश देगीस, जेकर ले परीक्षा के व्यवस्था बने ढंग ले होवे। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधा के बढ़फार करे जाही। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्था महादेव कावरे रायपुर में समीक्षा बैठक करीन। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंक के प्रतिनिधि संग्रीन, सहकारिता आयुक्त बैंक ला मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसन सुविधा शुरू करे के निर्देश दिन है। एकर ले प्रदेश के सहकारी बैंक में डिजिटल सेवा ला बढ़ावा मिली और लोगन ला बने सुविधा मिल सकी। भारतीय सेना कोती ले अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पद पर हुए परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे गए है। ये परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 उम्मीदवार मल्ला सफलता मिले है। परीक्षा के नतीजा भारतीय सेना के वेबसाइट में हवे और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड में घलो देखे जा सकत है। पास हुए उम्मीदवार मल्ला काली 21 मई के बिहनिया 9 सबो दस्तावेज संग नवा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित हो बर पढ़ी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। राज्यपाल रमन डेका हा आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ले भेंट करीन। ये दौरान

राज्य में पर्यटन वाले जगह के बढ़वार और पर्यटक मन बर बने सुविधा ल लेके गोट बात हुई। राज्यपाल है चित्रकूट जलप्रपात, गंगरेल बांध और बूका जलाशय में पर्यटन सुविधा के बढ़वार में जोर दीन। उमन की हिन की ये जगह में पर्यटक मन बर जरूरी सुविधा के बढ़वार करे जाए, संगे संग वरिष्ठ नागरिक मन बर ज्यादा सुविधा दे जाए। उन्हें कोरबा जिला के बूका जलाशय में क्रूज सेवा शुरू करे के सुझाव दीन। राज्यपाल ने आज लोक भवन में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के परिवार वाले मन भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल है तीजन बाई के हाल चाल जानीन और उखर जल्दी स्वस्थ होए के कामना करीन। तीजन बाई के परिवार वाले मन बतैन कि तीजन बाई के सम्मान में अवैया 7 अगस्त के एक समारोह रखे जाते, जिमा राज्यपाल ला मुख्य माई पहुना के रूप में शामिल होए बर न्योता दीन। दवाई की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आने आने केमिस्ट संगठन मन आज देश भर में हड़ताल के आह्वान में छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई दुकान बंद राखी। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता संघ के बैनर में दवाई व्यापारी मन रैली निकाली। व्यापारी मन आरोप लगेन कि बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन दवाई बेचे जाते, जेखर ले मरीज मन के सुरक्षा ला खतरा हो सकत है। उन्हें छोटे दवाई दुकान के व्यापार में घलो असर हुआ थे। इस बीच जिला प्रशासन सरकारी अस्पताल, जन औषधि केंद्र और धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवाई के उपलब्धता सुनिश्चित करी है। आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के मौका में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र कोती ले वॉकथन राखेगी। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, अम्पियर, श्रोता और शहर के नागरिक संग्रीन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल है बदलत बेरा में रेडियो के पहुंच और ओखर महत्ता के संबंध में अपन विचार साझा करीन। उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह कहिन कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र ले जुड़े है और लोगन ला सरलग जोड़ा थे। एति आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन रेडियो के महत्व और वॉकथन के संबंध में जानकारी दीन। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 ले 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। एमा आमा के 250 ले ज्यादा किस्म दिखाए जाही, संगे संग आमा के आने आने किस्म के प्रतियोगिता होही, जेमा छत्तीसगढ़ और आने राज्य के आम उत्पादक संघरी। ये मौका में आमा ले बने कतकुन व्यंजन के प्रदर्शनी लगाई जाही। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश मुफ्त में है। ये महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन और प्रकृति की ओर सोसाइटी को तिले जुर मिल के आयोजित करे जाते। अब थोरकुन समाचार सारमा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के जांचे उत्तर पुस्तिका के स्कैन करेंगे। प्रति बार अर्जी देके आखिरी तारीख ला एक दिन बढ़ा दे है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अर्जी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के आदर्श उत्तर जारी कर दे है। उम्मीदवार कोनो प्रश्न या उखर आदर्श उत्तर में अपन दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकत हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के जमानत याचिका खारिज कर दी है। बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद श्री बघेल हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करे रहीन। धमतरी जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिहावा चौक तीर पाछू रतिया गश्त के बेरा चौपाइया गाड़ी के चपेट में आए ले एक प्रधान आरक्षक के मौत हो गए, उन्हें एक नगर सैनिक गंभीर रूप ले घायल हो गए हैं। और दुर्गमा 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप लगाए जाही। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होवैया ये आयोजन में 10वीं ले लेके इंजीनियरिंग, नर्सिंग और मेडिकल योग्यता वाले उम्मीदवार मल्ला रोजगार के मौका मिलही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करीन शुभारंभ। 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई व्यापारी मन दुकान राखीन बंद। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

युगाडकिन सोब्बे 33 जिला नग इत्तुरु सुरक्षा किन दुर्स कियलाय उबाय सहायता दोरकलाय डायल 112 सेवा तेगा नेकाय पूना तरीका जोड़ा कित्तोड़ अदेनग तिपालते फंसे मत्तोर किन उबाय पतकी सहायता इया परदितोरु मुतेना सुरक्षा किन उड़सोरेन इदेनग ऑन बटन आर निगरानी सुविधा वेन जोड़ा कित्तद मिंदे इद आधुनिक पूना तरीका तलाय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वेन बना कित्तोड़ इद कार्यक्रम तेग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आर उप मुख्यमंत्री विजय सरमाल वेन मत्तोरु छत्तीसगढ़ तेग जनगणना 2026 तलय ओण तारीख मई तीना लोना लेखना आर सूचीकरण भूता चलेम आयम त प्रदेश तेग इंजी आना 60% दीबे लोना किन लेखना भूता पूरा अत्ता इद अभियान तेग डिजिटल तरीका ते इंजी आना 48,700 ते दीबे ब्लॉक नगटीना 29,600 तो दीबे ब्लॉक नगा गणना बूता पूरा अत्ता गणना बूता किया नगा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला सोबेड़ मुन्ने मिंदे अगा 100% बूता आस मिंदे जनगणना बूता ते राज्य तग नार आर जुई मंदान जिला नगा काम केन रोकते आयम ता मती बिड़िय शहर आड़ नगर निगम क्षेत्र नग जनगणना बूता नकाय जम्मे वेण आयम तक मिंदे की प्रदेश तग लोह किन लेखना बूता 30 मई एवना चलेम आता छत्तीसगढ़ तक जनजातीय नाटे नग सरकारी उवाट किन लाभाम एवी किया लय 18 मई तीना जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले इंदन पेदर तद अभियान मोदुल अत्ता 25 मई एवना चलेम आयन अभियान प्रदेश ता 8,000 ते दीबे नार नग चलेम आयम ता आदिम जाति विकास विभाग तद अभियान ते प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ते जुड़ेम अत्ताव नारकिन शामिल कित्तोड़ रायपुर जिला किन विरसी प्रदेश ते सोबे जिला नगर स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और उंडनत एर वाट किन लाभाम पात्र मंदनोर एवी किन तोरु अभियान तेग सिकल सेल बीमार और टीबी बीमार त जांच तलय स्वास्थ्य शिविर वाटम तोर अधिकारी नाटे नग जनता माटा केंजी सेवा केंद्र नग शिकायत किन निराकरण की अम तोरु राज्य सरकार नाटेन मुते किन ऊर्जा क्षेत्र ते दुर्स बना किया लय वर्षा 2026 तीना 2031 एवना दीप्ति योजना इंदान तान मंजूरी इत्ता इद योजना ते नाटे नग सोलर दीदी बना किन तोड़ू आर अवेन किन सौर ऊर्जा प्लेट वाटनाद अदेन चला किया नाद निर्शि किन तोरु यु मुते सोलर मिल कोल्ड स्टोर और सिंचाई लेखट ऊर्जा बूता किन चला किन ता बस्तर आड़ महासमुंद तचुडुन समूह यू बूता की अमता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इदेन ऊर्जा आत्मनिर्भरता ता अर्थे बिड़िया डाह का इंजो के तोड़ू लोक निर्माण विभाग तोर सचिव मुकेश कुमार बंसल अत्तत 17 मई नेटेन कांकेर जिला तगा सड़क पुलिया आड़ भवन पाड़ान बूता किन समीक्षा कित तोड़ू और अधिकारी लोर यू पाड़ान बूता जपे केन पूरा किया लय के तोड़ू श्री बंसल के तोड़ की बेदेवेन लापरवाही की अनद आयो नरहरपुर कॉलेज भवन निर्माण ते देरी आयान में दे ठेकेदार की नोटिस ये लय के तोड़ और मुसूर कालाम ते मुन्ने ने सड़क की नला की अनद इंजो के तोड़ अगन लोक निर्माण विभाग तोर सचिव श्री बंसाल 16 मई नेटे नारायणपुर तग विभागीय अधिकारी रा आ ठेकेदार लोरा बैठका पोई तोरु बैठका तग और जिला तग बनेम आयान सड़क पुल आड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पाड़ान बुताकिन समीक्षा की तोड़ू और अधिकारी आड़ ठेकेदार लोर केत्तोड़ की बूता की उभय मापनद आड़ नल्ला गुणवत्ता ते संगे बूता की अनद बैठका था पेर के बंसल महाराष्ट्र सीमा एवना बनेम आयन बिड़िया सड़क 130 डी ता बूता किन वेंड उड़ तोरु बस्तर ता पेकोरा खेल प्रतिभा की नला किया लय जगदलपुर तगा उबाय केन ओंड आवासीय खेल अकादमी मोदुल आयनद मिंदे खेल और युवा कल्याण विभाग ता संचालक तनुजा सलाम अत्ता 16 मई नेटेन जगदलपुर एवस अकादमी ता तैयारी बूता किन उड़ता इद अकादमी तगा पेकोर किन एथलेटिक्स फुटबॉल तीरंदाजी नरसी किन तोर इग मैदे जपे केन चयन बूता आयनद मिंदे अगा 13 तीना 17 वर्षा उमर तोर खिलाड़ी भाग पोईता पर्दी तोर अधिकारी लोर खिलाड़ी मैदे नल सुविधा इलाय निर्देश इत्ता इदे नेटेन श्रीमती सलाम पांडरी पानी तद खेलो इंडिया लघु केंद्र तग चलेम आयन हॉकी सेंटर तग वेण अंज मत्ता अगा हॉस्टल भवन और जिम हॉल तीन उर्स प्रशिक्षण पोईतान खिलाड़ी रा संख्या आर खेल सामान त जानकारी वेण पोईता आकाशवाणी त 90 वर्षा पूरा अत्ता वेड़का त मैदे 17 मई नेटेन आकाशवाणी जगदलपुर ताकेट पैदल ताकनत कार्यक्रम आस मत्ता इद दंतेश्वरी मंदिर तीन मोदुल आस आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर तगा एवना मता इद कार्यक्रम तगा आकाशवाणी तोर अधिकारी कर्मचारी उद्घोषक कंपियर कर्मचारी लोर लोरा लोत्तोरु आम जनता वेण कली मत्तोरु इद मोहकते आकाशवाणी जगदलपुर तत कार्यक्रम प्रमुख चंद्र ऋषि ठाकुर केत्त की वाक्थान त माध्यम ते आकाशवाणी
प्राणी स्वास्थ्य और अनुशासन और सामाजिक सहभागिता तक संगे संदेश इम कोशिश किया ता नारायणपुर जिला तक गारांजी तग अत्त 15 महीने टेन मुनेटा हिसाब ते काना हर्राल पेन करसाड़ आस मत्ता अग बस्तर संभाग त नर्ग क्षेत्र तिना संगेन महाराष्ट्र गढ़चिरौली तिना वेण पेन वास मत इत कार्यक्रम तक वन मंत्री केदार कश्यप वेण अंज मत्तोर अगवर केत्तोर की इसोन तक करसाड़ते समाज मुनेटा रीति नीति नल्ला बनेम आता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ताकेट दंतेवाला जिला अस्पताल किन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र इत्तोर जिला अस्पताल किन इत प्रमाण पत्र अगा स्वास्थ्य सुविधा नल्ला बीमार तोर्क नल्ला सुविधा इतमय दे दोरकता। बीजापुर जिला प्रशासन ताकेट चलेम आयान बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम ते इंजे आना 25 ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त घोषित अत्ता। इत बुताते महिला और बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग त टीम सहायता की अमता। इत कार्यक्रम त संगे समाज त सभ्य वर्ग तोर्क सुडला पिकी पियकनद पेंडोल कित के अंगड़ाम और इदेन संगे जुड़ेम अत्ता कानून की न जानकारी ई अम तोड़ू। नारायणपुर जिला त ओरछा विकास खंड त नार रायनार तग पूना मोबाइल टावर लगा की तोड़ू। रायनार तग मोबाइल टावर लगे मत्तांक झोरी गांव नुलवट्टी आर डीडर भट्टी नार तोर्किन फोन ते वेतन सुविधा दोरकीता। इवेन संगेन रेंगा बेड़ा आर मडाली तचुडून क्षेत्र ना के वेण मोबाइल सिग्नल एवता। मुन्ने इग मोबाइल टावर इलवांक नाट और फोन किए न मुश्किल आसोर मत्ता। मोबाइल टावर लगे मत्तांक इंजे अबुजमार तोर फेकोर लोत्ती नाय देश दुनिया ता जानकारी पुंदा पर दितोर। अगन नार तोर शासन तुआट डिजिटल लेन देन त सुविधा वेण दोरकीता। इलेकेन बात है बेमाड़ बात अर्थ क्या चोन नार तोर्क इंजे एम्बुलेंस गाड़ी डॉक्टर संगे जिला प्रशासन संगे वेहता पर दितोरू। मारेंगाड़ प्रमुख समाचार वेंडोन टेप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केत्तोड़ की वायनाव एंग वर्षा लोपा छत्तीसगढ़ त बस्तर संभाग देशम तसोबेड़ विकसित आदिवासी संभाग बनेम आता। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर जिला त नेतानार तग जन सुविधा केंद्र त मुदुलमुर केत्तोड़ केत्तोड़ की वायनाव डेढ़ वर्षा ते बस्तर तग मंदान 70 सुरक्षा शिविर कीन इलेकेन सेवा केंद्र बना कीन तोरू। छत्तीसगढ़ त जनजाति नार तग सरकारी वार्ड के नद लाभाम एवी कियलय 18 मई तिना मोदुल अत्ता जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले इंदान अभियान। राज्य सरकार नाटेन मुत्ते की ऊर्जा क्षेत्र तक दुर्स कियलय दीप्ति योजना तीन मंजूरी इता। इदेन संगेन गोंडी समाचार बुलेटिन त इव माटा इगय मारता जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे गोंडी समाचार बुलेटिन। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
9: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
11: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जिलों में आज मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सभी वाहन अत्याधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है।
12: उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी है, कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है, उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पॉन्स टाइम के समय में ही आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
11: वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के पुराना पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 16 आधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी बलौदाबाजार स्थित रक्षित केंद्र परिसर से डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यह नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। परीक्षा परिणाम भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कल 21 मई को सुबह 9 बजे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना होगा। प्रारंभिक निर्देशों के लिए उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए यह परीक्षा बीते जनवरी माह में धमतरी में आयोजित की गई थी। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में दवा दुकानें बंद रखीं। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता के संघ के बैनर तले दवा व्यापारियों ने रैली निकाली। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही है, जिससे मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं छोटी दवा दुकानों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच विभिन्न जिलों के प्रशासन ने आज सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी सेवाएं संस्थाएं महादेव कावरे ने रायपुर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सहकारिता आयुक्त ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से तकनीकी सहायता के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को भी कहा। इस पहल से प्रदेश के सहकारी बैंकों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बदलते समय में रेडियो की पहुंच और उसके महत्व के संबंध में अपने विचार साझा किए।
13: लोगों के दिल से किस तरह से कनेक्ट हुआ जा सकता है, ये आकाशवाणी ने हम सब लोगों को बताया है। और हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, हमारी लोगों की क्या जरूरत है, लोगों के कल्याण के लिए क्या चीज़ें बढ़िया है, लोगों के सुखी होने के लिए क्या बढ़िया है, जिसका मोटो ही इतना बढ़िया हो, भोजन सुखाए भोजन हिताए, तो वो तो अच्छे काम करेंगे ही।
11: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है और लोगों को लगातार जोड़ रहा है।
14: आज 90 साल होने जा रहा है। हर श्रोता मनोरंजन के लिए सिर्फ आकाशवाणी नहीं सुनता है, बल्कि अपने समग्र विकास के लिए भी जो योगदान होता है अपने जीवन के माध्यमों का, उसी तरीके से आकाशवाणी हमारे जीवन में उपयोगी है। प्रामाणिकता, मौलिकता इस कार्यक्रमों में रहती है। जिले में लोगों को, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए कि पुलिस और पब्लिक किस तरीके से समाज में अपराध को कम कर सकती है, उसका भी एक माध्यम आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग बात करते रहे हैं।
11: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने रेडियो के महत्व के बारे में जानकारी दी।
15: कैसी स्थिति रही होगी देश की स्वतंत्रता के बाद, चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे जन जन तक फिल्मी गीत पहुंचाने की बात हो, शास्त्रीय संगीत को सहेजने की बात हो, या जो भी हमारी कला संस्कृति और जो सामयिक चीजें, चाहे समाचारों की बात हो, रेडियो ही एक माध्यम रहा जो उस समय भारत को एक दिशा दे पाया। लेकिन आज जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो रेडियो भी आज आपके साथ न्यूज ऑन एयर ऐप के साथ आपके हाथ में है।
11: वक्तन आज सुबह आकाशवाणी परिसर से शुरू हुआ, जो नूतन चौक सीपत चौक होते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुआ। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। यह महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा पश्चिम बिहार और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से उत्तर तेलंगाना तक विस्तारित है। साथ ही प्रदेश में गर्म और शुष्क हवाएं आ रही है। इसके असर कल मध्य छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने और एक दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना भुजको भाइ राम राम
1: राम राम गर्भु दादा राम राम
0: होइन हेन हामी त भेटघाट होलु महन्त रामचो दादा दिदी मन बोला हामी बाढ देखते रहेछ है दादा दिदी मन बोला भेटघाट हो
1: आले हो तबे
0: बस्तर के शोर कार्यक्रम सुनतोर सबै गाउँ करिया दादा दिदी सिहान सजन माय माता बाप भाइ और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं गबरु
1: और मैं भुजको राम राम करलु भेटघाट बोल होलु ने मान तर नानी नानी पिला मन के कसन भूल सके
0: ना उन मन के पर कसन भूल को ने आले पिला मन बोले फिर सुरता करू ने आले रेडियो कटा कटा बोसलो सब पाई नानी नानी पिला मन बोले आम दोनों चो बाटले खुबे खुबे मया और चुमा ये ना भुस्कु भाई मैं दकी यहाँ से तू कहाँ ले जाओ रिलीज ना इतलो तू ये दक तो झोरा डांड इनका एक का भरुन बती रिलीज इतना
1: का है संग में दादा आज कल साग भाजी नंगा तो झोरा झोरा है तो झोरा झोरा धरुन बाते मैं मर हाट पर जाओ रिल का है बजार हाट मेरा
0: अच्छा ना इन्हें आज कहाँ छाट रही ना पक्का सुकाल रैली का इनु खाट
1: ने ओके जातो रहे से बाट बाट साग साग की बोल कई मिलतर होले जाले झोरा झोरी धरन बात बोलते रहत रहे देन
0: हो ना हाट जाव रे तेबे दकिया तू बोल काय बोरन बोरन जो साग भाजी के तू जो झोरा ने भोर ली से अच्छा गोट के बोल लीस ना उसको भाई काम चो आजकल ने गांव गांव ने आम चो हाट बाजार मन बोल होए से आगे मान के चला ने आम चो कई बोले घेन तो काजे आम के शहर नगर ने जाऊ पड़ते रहे ये दाए तो गांव गांव ने हाट मन बोल होए से और हडरी मन बोल बोसे से
1: हां दादा
0: हडरी चीज आम के नहीं सुकाल और एकदम ताजा ताजा बीती मन आम के गांव ने मीरे से
1: पक्की जिनिस मन आसे दादा काय बोलो ऐसा आजकल साग भाजी मन बोले थोड़े से आम के नंगत लागे थे और साग भाजी वर संग संग हम के नी कई कई साग पान बन मिल ले जाल उनके साग रान तो थान बन मीट लागे थे जानू
0: अदक अदा हम जो हाट बाजार मन ने दक आम के एदा शहर बाटे उक नी पड़े ना गाची मन ने दक हाट मन ने आम के ने गोपा टुकना टाटी बीचना तू जो कपड़ा लता पोनी सब चीजें ना मिले से ने
1: ये चीज संग नहीं दखते दादा हम ही कहे शहर चीते हम जाते रहूं सफाई चीज जिनिस मन के धर्म आनते रहो है नहीं ये कहे होली हम तो गांव गांव ने हम तो दादा दीदी से अनसजन मन आप लोग बेड़ा कमाने के धरुन भाती नगत जिनिस मन के बल बना सोत और साग मन के बल नगत बना सोत है कि नहीं
0: मतलब तू चुत सांग तो गोटा सन होइस नहीं आम के सब ये चीज आम के गांव ने
1: गांव ने चीज मिरे थे पक्की थी 43 तू इते बे दादा
0: मतलब आम चो हाट बाजार मन ने नाम चो हडरी ने होली नाले ने गांव चो हाट मन ने सब चीज आम के मीरे से
1: मीरे से
0: मैं बोलते रहने ना भुस्कु भाई गोट मन तो खूबे आसे ने
1: खूबे आसे
0: मैं बोलते रहे लाम चुला की कि जहाला मन बोल रहे ली अले जहाला के आम बोल सुनो और आम चो दादा दिन मन सुनो
1: आले सुनो ते
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोय लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोय 18% टैक्स किसी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच ये नोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी ना पर्रो मुनिटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मोला देने दोर किता अदेन के अवसर व्यर्थ कम टैक्स तगाड़ी बने मास मनता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एबर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे, ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
0: एना भुजकु भाई,
1: हाँ दादा,
0: हम जहाला मन बोल सुन लू ने,
1: हाँ जहाला सुन लू मांतर मैं बोलते रहले मोचो लगे गोटक कविता पाठ आते ना।
0: अच्छा है ना, ने
1: हाँ, और ये आए हल्बी नार नाता आले ये कि हम ही सुनो और हम तो दादा दीदी मन के बल सुना
0: आले ना,
1: हाँ पाचे चुनाव के सांगो।
7: मोचो कविता है नाता, नाता ने सबले पहिल सुनो बाबा, तो बाबा कविता ने सुना। सियान सजन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। सियान सज्जन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। बाबा जीवना बाट दखा तो बीता पीला चो बाट आए, बाबा अंडकी धरुन हिंडाऊ बीता पीला चो पाए आए। काम नसाले बाबा टीरका नगद बेरा मीठ आए, बाबाचे रोटी बाबाचे कपड़ा बाबाचे घर आए। सियान सज्जन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। सियान सज्जन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। बाबा नीरले कहीं निमीरे कहाले रुपया आना, बाबा रले स्कूल पढ़ई गोठके मचो जाना। बाबाचे आए पोस्तो बीता पीलाचो मिठई आए, बाबा रले नियम कानून ने घर चलू आए। बाबा रले डर आसे घर चो रखवा राय, बाबा नीरले कई निहाय घर चूछा आए। सियान सजन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। सियान सजन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। नानी कुटुंब चो बड़े बदरी बाबा के तुम्ही जाना, बाबा रले जमाय बानी तुम्हें घेनुन आना। असन ताकत देव बीता बाबा पीलाचो मान आए, नानी असन पीलाचो बाबा बड़े मंजपुर आए। बाबाचे मसागत बाबाचे सपना बाबाचे रुपया आए, बाबा नीरले मंजपुर ने जमाय सुना आए। सियान सजन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। सियान सज्जन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। बाबा नीरले कई जमक कोनी नी देवत जाना, बाबा नीरले घर कुड़िया अनाथ बोलून माना। बाबाचे माय चो टिकली लाली बाबाचे चूड़ी आए, बाबाचे माय चो हंसी खेली धन माल आए। बाबाचे घर चो साग भाजी बाबाचे चाऊर आए, बाबाचे घर चो तिहार बहार देव धामी आए। सियान सज्जन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। सियान सज्जन बाबू नोनी मन गोठके हम चो सुना, बाबाचे जीवना बाबाचे पालना बाबाचे ताकत जाना। बाबाचे पढ़ई बाबाचे कॉलेज बाबाचे डिग्री जाना, ज्ञान भंडार बाबाची आए गोठके मचो सुना। बाबा नीरले कई निमीरे जीवना करला नी आए, येचो बाबा निहाय हुंचो मरण दशा आए। बाबा नीरले जीवना के जीवक नी भाय, बेटा बेटी चो संसार ने बाबा बड़े धन आए। सियान सजन बाबू नो नीमन गोठके हम चो सुना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। सियान सजन बाबू नो नीमन गोठके हम चो सुना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। मन चो गोठके जान तो बीता बाबा चे आए माना, मंजपुर चो जीवना गोठके बाबा चे सांगे से सुना। माए बाप चो कमी के कोनी पाटुक सकू नुहाय, भगवान बले माए बाप के हरौक सकू नुहाय। माए बाप रले बेटा बेटी के कई डर निहाय, माए बाप निरले पीला जीवना भींग अंधार आए। सियान सजन बाबू नो नीमन गोठके हम चो सुना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। सियान सजन बाबू नो नीमन गोठके हम चो सुना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। माए बाप ले बड़े कई हौक नी सके जाना, बेटा बेटी का जे बाबा चो मया सबले बड़े जाना। माए बाप चो कीर्ति के कोनी नापुक सकू नुहाय, बाबा रले मंजपुर जमाय आमचो हाते आए। बाबा नी रले मंजपुर चो काई नी भाय, बाबा नी रले पीला जीवना जाना अनाथ आए। बाबा ले बड़े धन काई निहाय, गोठके हम चो सुना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। बाबा ले बड़े धन काई निहाय, गोठके हम चो सुना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना, बाबा चे जीवना बाबा चे पालना बाबा चे ताकत जाना। मोचो दूसर कविता है माँ बल्लो ने आया, आले ए कविता के सुनू। हरिक उदिम 18 बरक माए बाप घरो मान, कुड़ुम छुटली बिया मोहरी 17 घरे ठान। केबी बेटी ले बोहरी बनली नी पड़ली जान, चुलबुल दिन गेली अदाय होली सियान। रांधा बाड़ा 17 घर देउक पड़े से ध्यान, रांधा बाड़ा 17 घर देउक पड़े से ध्यान। जेठ पुरली गोंचा पुरली 3 बरक होली, पेटे थेबली चरफर काजे अदाय चिंता होली। दखू दखू 9 महीना लेकी जन्म करली, खुदे रली एक दिन पीला अदाय पीला पोसुक सिकली। पीला चो दखा रखा ने आपलो नींद भूख के भूलकली, पीला चो दखा रखा ने आपलो नींद भूख के भूलकली। गोटक पाट पीला गोरस खाए, गोटक पाट मारे लात, लात खाउन बले गोरस खोआ तो एके माय ताकत बोलुआत। पीला पोसा संगे रांधा धुआं, रांधे से साग भात, घर कुड़िया चो चिंता संगे पीला सेवा दिन रात। ससरा सतरी ननन देवर चो बले सेवा करे दिन रात, ससरा सतरी ननन देवर चो बले सेवा करे दिन रात। असन करुन पीला के पोसे से धर्मकारी माए, केवे धरे से जरमुंड दुखा नी जाने एके माए। दंड पाउन बले बेटा बेटी पोसू एके बोलू से माए, माए चे गंगा माए चे काशी माए चे लक्ष्मी आए। बेटा काजे उजर बाट बेटी काजे मित आए, बेटा काजे उजर बाट बेटी काजे मित आए। माय चे आए बिहा गीत माय चे जाली आना, भूखे पेट काजे भात साग बेमार बेटा चो दवई जाना। पीला पोसू पोसू केस पंडरी होली निहाय जाना चिन्हा, बेटा बेटी के पोसे से डरने माय चो मया के जाना। दुख दंड के भूलकुन माय पीला पोसे से जाना, दुख दंड के आपलो भूलकुन माय पीला पोसे से जाना। लात खाउन पीला पोसु बीती सिरप माय चे आए, बेमार बेरा पीला चो दवई सिरप माय चे आए। भूखे रलो पीला चो पेज भात सिरप माय चे आए, शुभ काम ने जातो बेरा नजर उतरऊ बीती हुन माय चे आए। बेटा बेटी चो अमदिया सहारा हुन माय चे आए, बेटा बेटी चो अमदिया सहारा हुन माय चे आए। माय ले आए बेटा जीवना संगे रांधा चूला चो सान, माय ले आए बेटा जीवना संगे रांधा चूला चो सान। बेटा बेटी तुम्ही करा आपलो माय चो मान, माय केवे नी करे बेटा बेटी चो नुकसान। माय आसे तो बेटा बेटी जीवना ने आसे खूबे शान, मंजपुर ने कम नी होए केवे माय चो मान। मंजपुर ने कम नी होए केवे माय चो मान, मंजपुर ने कम नी होए केवे माय चो मान। और नाता कविता भित्रे मचो तीसर हलवी कविता है बेटी आले एके बोले सुनो। रति घरो पेटे थेबली सुनलू पानी घाटे दस बरक पाछे हरिक उदिम जहाला गुलाए बाटे कौन बले से बेटा होए दे कौन बले से बेटी रति बले से बोकड़ा मारून बनाए दे मैं सटी दखू दखू नौ महीना जन्म कर ली लेकी पोल आए बलते सबके सांगली बुलुन बुलुन काकी बोकड़ा नहीं कुकड़ा नहीं थीपाओड़ा ने सटी मंदचो भोर ने गागू को धरलो रती गुलाए राती छह बरक पाछे गुरजी बले से पढ़ू के ओ लेकी स्कूल पढ़ून पूरे हिंडे दे सीखे दे दखा दखी रती बल्लो गुरजी के काय करे दे पढ़ून रांदा बाड़ा सिकू रले घर के दखे दे बाड़ून असन बलून लेकी जीवना के बनालो अंधारी रात यही लेकी पढ़ू रले हिंडती उजर बाट जेठ गेली गोंचा गेली पुरली अठारह बरक जुआए खोज तो चिंता होली फेर रती के हारक जुआए खोजुक गुलाए परगन बुलुन थाकलो रती बुलुन बुलुन झुरा होलो रती चो निहाए गति शहर कटाचो गोटो कुबा गरी रती के दिलो मान बले से फटफटी दिलो ने मैं बिया होए दे सियान गोट के सुनुन रती बल्लो अक्तई दिने इया फटफटी दाइज दें दे करुन दें दे बिया बेटी चो जीवना ने हारक फेर अमुस रात उबागरी के बेटी सोपलो सगा खादला भात सतरा घरे बेटी गेली रोजे झगड़ा दंत मुहूर्त सौत होली कितरो लंद फंत दुई घरो कहनी एके तुमी नी माना डंडी का निकरा खोर दुआरे एई गोट चे सुना आमचो पूरे कितरो उबागरी कितरो आसोत रती सबू मिसुन बेटी जीवना के कर सोत नाना गति जोन दिने लेकी के देवा माए बोलुन ठान मंजपुरले दुख हाजे दे सबचो बाड़े दे मान जोन दिने लेकी के देवा माए बोलुन ठान मंजपुरले दुख जाए दे सबचो बाड़े दे मान मंजपुरले दुख जाए दे सबचो बाड़े दे मान।
0: है ना भुस्कु भाई तो कितलो अच्छा ने कविता भीतरे जोन गोट रहे मान तार ये चीता लिस ना
1: ओके चीता लिखा है और एक लिखो डाला शिव नारायण पांडे
0: अच्छा द कितलो ज्ञान ध्यान चो गोट रली कविता भीतरे ने द बाप नहालो ने बाप चो बोले रली माए चो बोल रली और बेटी चो बोल रही कहानी भीतरे कितलो ज्ञान ध्यान चो गोट रली है मैं बोलते रहल ना अले ने हम चो लोग तो अच्छा अच्छा गोट रहे से ची है तू फिर आज आन ली सीट पर हाट बाट ले पोकाए बोरन बोरन चेप जेन तू बोले रांधुची आज भी ने
1: रांधुची हम भी कह दादा मानतर हम चो आज कल दक सीते हम चो किसान दादा दीदी मन बोले ये भी कह है पानी धीरे धीरे बोले हम चो बेड़ा खड़ा ने बोले ये तो जाए से और नागर रोपाई धराई बोले करते जा सो नहीं आजकल ये भी धान रोपाई संग संग बोले भी हम चो कुन कुन किसान भाई मन बोले साग भाजी मन बोले लगातार हुन भाते ये भी नगत वो काट कर सो
0: का ये भी मरण धरान ने सब ने भी हम चो दादा मुन ने खेती बाड़ी करू आद वे मैं बोलते रहना ना भूस भाई हम चो लग तो गोट मन खूबे रहे
1: खूबे रहे
0: हम इसका समय यानी ये उन रहे
1: समय नहीं रहूं से राम चो लगे कि नगत नगत गोट संग संग हम दादा दीदी मन के काय सांगवा काय नहीं सांगवा बोले हरी का उन बात बोले का तो हूं से नहीं मैं बोलते रहले जसन कि हम चो ये बस चो जित्रो बोले हम चो हाट बाजार आसे ये था तो हम चो नगत नगत हम चो जिनिस मन के बोल निकरा सो दादा और का आज कल हम चो जसन बोले किसान भाई मन बोले आसो उन मन आप साग भाजी कमानी तो बना सो मान तर हम चो जो काश्तकारी दादा मन बोले ए का तो टुकना टकरा गातु भी दादा दीदी मन बोले आसो उन मन बोले भी कई प्रकार चो हम चो ने हम चो जीवना काजे बोले आप लोग जीवना काजे बोले नगत बनान भाते बेचा भाजी कर सो तो हाट बाजार निष्कन भाती और नहीं उनके आजकल का है से उनके दखन भाते कुन कुन लोग बाग मन भले आप लोग घर घर ने सजा तो बजा तो काज बोले मन मन के उन कर सोत ने
0: बिक्री भांजरी कर आप लोग जीवन को अस्थिर कर सोत
1: हां
0: मैं बोलत रे ना भूस को भाई नाम के समय ने उरल समय ने
1: जाओ जाओ पड़े।, पड़े से
0: हां तू ही बोलत रे मैं तू मुंडरा गड़ रख सकल मैं दादा दीदी मन के विदा धरे
1: आले आले जाने
0: हां जातो पूरे बस्तर के शोर कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव करिया दादा दीदी सिहन सजन माए माता बाप भाई और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं गबरू
1: और मैं भूस को हमें दोनों करूं से राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आमचो गांव।

0: गांव भीतर चुकैर कुचर मन जागे से।
1: काय गाव सिसना चंदर आले खंडिक जोड़ले बोल तो गाव तेवे तो नगर सुना दे दे।
0: आले तेवे सुन ना सुन।
1: हाँ
0: ए मारी रोसोना गांव भीतर चुकैर कुचर मन जागे से। ए मारी रोसोना एके हुन के टूर चाटोया कसन लागे से। ए दे कसन लागे से मारी रोसोना बढ़ती दखुन कोच कुन दिले गति हाजे से।
1: दखना चंदर ठसा तो तू नगत पारसी मानतर ए गोट के मैं नहीं समझ ली कि कोचो ईर्खा कुचर आरु कौन कोचके से और कोचो गति हाजे से।
0: तू ही बोले ना बुद्धू तू ही उन काकड़ा।

0: नी छांडे, मैं तुके नी छांडे, कितरो दिन ले तू ही मके मान नी कर लेसिस, नी छांडे मैं।
1: जुआर लागे महाप्रभु, तू कौन आस महाप्रभु, तुके शरण लागे महाप्रभु।
0: तू चो कर चो देव, पर चो देव, आगे चो देव, पाटे चो देव, ऊपरे चो देव, खाले चो देव, सबले बड़े देव, नानी देव, सपाई मिसुन गोट की देव, निछाने निछाने निछाने।
1: हे भगवान, माफी देस प्रभु, हे महाप्रभु,
0: मोके तू मान नहीं कर लीस। तू ही कमजोर होते जासे, बीमार होते जासे, तू के नहीं सके देव, तू के नहीं सके भूत, नहीं सके सिरा, नहीं सके गुनिया, नहीं सके बीमार चेहरा से डॉक्टर, नहीं सके नर्स, नहीं सके बीमार चेहरा से।
1: महाप्रभु मौके माफी देस भगवान, माफी देस।
0: कोनी नहीं सकत, कोनी नहीं सकत।
1: हे भगवान,
0: ए बेहू सोलो काई नोक, ए बुधू आले उतर ना, रुको परले उतर,
2: उतर ले उतर।
0: ए दे ए दे ए दखनु
2: ए चंदर।
0: हां
2: होली बुता ना
0: कसन
2: काशियान मरलो काई, खंडी खंडी पुट पुट करे से।
0: ए दे दखासन करू।
2: हां
0: मैं जाए से बाहर याले लुकुन रहे दे। आई तू ये के पानी पाना छीच और घरे हम रहूं दे। हां हो आले आले
2: ये हम रहे से।
0: हाल छीच छती
2: आए पुतो ने मैं काय बोले दे चंदर,
0: यही बाटले जाते रहे बोलून बोल काय समझ लीस।
2: हाँ
0: है
2: हाँ हाँ, ये दे पानी आन ले, ये दे पानी छींचे से। काका कसम काका काय होली ना।
3: हे बाबू मैं देव के देख ले ना, खूब डर ले बाबू, हुने ने बेउसन के ले ना पर ले होली। हाय राम,
2: काई नहीं होए काका, काई नहीं होए, आली पानी पाना पीऊ काका। यही बाटे जाते रहे गुनुक, विचार कर ले काका लगे ओलून दखें दे बल्ले।
3: दिया बाबू भले कर लीस ना।
2: हाँ
3: इलीस।
2: हाँ
3: मांतर ये मैं कसन करें दे जाले बाबू।
2: हाँ
3: मके काई ना आले, काई तो करू चलागे दे।
2: आले काई करू आज जाले कर काई काका। हाँ मैं जाए से काका, जाए से
3: माल जा।
2: हाँ मैं जाए से
3: क्या हुआ साले जा। दाए मैं कसन करें दे, काई तो करू चलागे दे, मके तो ठाने जर जर असल लागली, मुंड बोले खिंडी खिंडी दुखे से। जय माता माई, माय कंकालीन, माय दुर्गा दंतेश्वरी, सब पाए के मैं पाए पड़े से, मुझे रखिया करा भी माँ।
2: काका ए काका, राम राम काका, कसन उजर लीस ना।
4: ए बुध बाबू आत का काय के उजरु आता बाबू कर ले होली में जसन चो हुसने चीसो नसत
2: आए
4: दुनिया के बोल दो खालू जे के बोलो ने हुनके दखाऊ से।
2: हां
4: मान तरे मन गोट किछि गोट के बोल सोत बाबू सुना तो।
2: हां काय गोट की बोल सिस ना काका। ए काका
4: सांगा हो दे
3: नोय बाबू, हुन देव नहीं पर छोट हुन गोट की गोट के बोलते रहे। बीमार चेरसे बोले ना, मोके तो सुरता करूं ये भी बोले डरे चलागेस ना।
2: एना काका बीमार से मारी होले बोली इलाज करालो ने हूँ नगत हुआ ना काका।
3: नुआ है बाबू, हम देव बोलते रहे ना, उनके कोनी चिनी सकत बोले, सिराहा गुनिया वैद डॉक्टर कोनी चिनी सकत मने। सुन लीस बाबू, मैं नहीं उजरे बिना मके तो मुश्किल होन गेली, जाले काई करनी करू रही बेना, एक आजे असन भूखते से काए ना।
2: वो गायरा काकी असन नोआई काका, तू नगत हो से ना।
3: सपाय फंद गोटाय बाबू, अबर मैं नी उजरे बेना।
4: हे भगवान, मुझे तो करम ची फूट ली, हाय रे मुझे करम, मैं कौन दिन चुका चुकर जा खाऊ रहे जाले परले होली।
2: वो गाय रहा काकी, वो गाय रहा, काई नहा ले काई जतन करवा, आरु काका के कसनी करुन बोले उजरा मा।
4: अले कसनी बोले करा बाबू, ये मन के उजरा तू वाट के बनावा, अल काई चिबल करा,
2: करवा नू, करवा करवा मैं तो आसे। आले आले मैं जाए सी काकी आए
4: हाँ बाबू आले फिर
2: आए परले होली ना चंदर
5: काय होली
2: आमी असन विचार नी करून रहू
5: हाँ हुन दिन चो गोट के सियान आपलो मने धरलो जानू ना यही कारण हुन तेबे बीमार ऊपर बीमार हो इसे
2: हो ना कौन बोले से
5: हाँ
2: हुनी देव नी उजरीस बोलून बोललो यही काजे मरले बोले नी उजरे बोले से उनके कसन समझावा जाले काकी ऐसा गाकते रहे ना
5: जाले बुदू काई तो खुरुक लागे दे है
2: अल कसन करवा चंदर तू इसे सांग ना
5: आय जानू जाले नसाले से तो मैं बनाओ बोले मुखीच पड़े दे ने तू ही चिंता नहीं कर
6: मच संगवारी बोले से मने बांधू बाली फूल मच संगवारी बोले से मने बांधू बाली फूल बिन उट चौगती हाजली मंच झुल ना झुल
2: तू यसन चिपा समय बोली ना गीत गाओ सीस तू की हिसाब नहीं आए ना खिंडिक बनी है
6: बोली सी आनचो मन डरली कसन काजे ना बोली सी आनचो मन डरली कसन काजे ना बनन जाए दे चिंता नी कर रया तराजे ना मच जोड़ी रे हाय जोड़ी रे दोनों मिसुन फेर जावा आमा बनवाड़ी रे
2: आले ते भी हिसाब बनाओ कहीं बोले चंदर हिसाब बनाओ ना
6: होय दे ना आले जो
2: काकी ए काकी
4: ए, कौन आए ए कसन बाबू बुदू
2: ओए
4: ए चंदर बली लो से अली आया भीतर ही हा ए तो काय करू हस बाबू ए तो काय मन के दखानो
2: तू चिंता नहीं कर काकी ए बे मैं गोटो खूबे जानकार माने के आन ले से
4: काय की चिंता नहीं करे बाबू अले कौन आए हुन जानकार माने
2: ए दे काकी ए दे ये आ जानकार माने
4: ए चंदर बड़े बड़े बोई दे मन तो सर लावे बाबू ये चंदर फिर कसन करून तुम चो काका कुजरा हुआ है भी
2: ये खार करून दखलून काय होई दे काकी केवे केवे नानी लोग बले बड़े बड़े काम करून दख हुआ
5: हो काकी केवे केवे सत्य ओसो मिर ले बड़े बड़े बीमारी मन बल गुचुन जासो मांतर मोचो ओसो के मैं काकई नहीं दखाए आले तुम के बाहर या जाऊ लागे दे हैं आले जा
2: आले जाऊं दे जाऊं दे जाऊं
4: दे
2: जाऊं दे
5: ए ना सियान
3: कतई कोन आस ना
5: ए मैं आए चंदर अल कसन आसिस अल सांगुंद
3: चंदर नांगत नी आए बाबू मोके देव बल्ली सेटा मैं नी उजरे बोलन बाती
5: नो आए ना काकू देव मोके राती बेरा सपना ने बोलली
3: हाँ।
5: तू काल के जा से
3: अच्छा।
5: और बोली के बोल से
3: हुन
5: उजरे दे बोलून
3: हाँ।
5: हाँ। हाँ। मोके शक्ति देउन भाती हुनी देव यथा पठाली से ना
3: तू ही बाबू
5: हो
3: मोके नी हैंड साव ना
5: मैं नी हैंड साए काका तू ही मोके सांग हुन देव तू के काय काय बोलू रहे बोलते
3: हुन देव मोके तू बीमार पड़ से बोलू बोलली बाबू तू के कोनी नी उजरा दे बलून बल तो के मैं बीमार पड़ते गेले कितरे ही लोग इलाज करून था कुन गेला देव चो गोट सत्य होली मैं नी उजरे बे बाबू
5: दक काका मैं सुमरना करे से और तू ही बोले एक हार खेमा मांगून दक से आए
3: आले
5: आले
3: ठीक है ठीक है
0: मैं फेरी ले मैं फेरी ले तू चाहे काजे तू चाहे काजे मैं फेरी ले तू ही नगत हो से तू ही नगत हो से तू चार पर हो से तू ही चार पर हो से
3: जय हो आया तुझे जय हो भले होली आया मोके गलती काजे खेमा देस मोके खेमा देस आया जय हो तुझे जय हो
0: तू ही नंगा तो से तू ही चरफर हो से तू ही चरफर हो से
3: जय हो तू चो जय हो आया भले होली आया तू ही परचट होली साया मोके गलती काजे खेमा देस आया खेमा देस हेमा देश जय हो तुझो जय हो।
0: तू ही नंगा तो से तू ही चार भर हो से तू ही चिंता निकार तू ही फिकर निकार तू के खेमा मिली तू ही दो ही कार तू ही काके नहीं डर तू ही काके नहीं डर तू ही चार भर हो से तू ही चार भर हो से
3: होइं दे मैं चार भर होइं दे काय काजे नहीं होइं मैं चार भर होइं दे जे अदाय मुके विश्वास होली मैं पक्का चार भर होइं दे मैं
7: कसन ना काका कहीं दखा दिली ना मान तारी गोट के काका ही नहीं सागना।
3: तू जो भले हो बाबू सत्य ना मरतो लोग के तू अमृत के आनंद दिलीस ना मुके हुनी बनवाड़ी चो देव दखा दिली ना मुके हुन उदरुन जासे बोलून नमत आशीर्वाद दिली सुन ली जो भले हो जय हो जय हो जय हो।
7: हाँ तो ये भी कसन लागे से ना काका
3: अच्छा लागे से बाबू
7: मैं तो बोले से तू ये भी खिंडी कमजोर बोले हो उनके लिए सीस
3: ने
7: मैं डॉक्टर के काली हाथ देऊ ना ने दे उनके बोले दिखाओ और मन ने कहीं चिंता फिकर नहीं कर
3: नहीं नहीं करे बाबू नहीं करे। डॉक्टर बाटले बोले दवाई चलाऊं रो बाबू मानतर एबर मैं नंगत होए देना मां के बे चिंता धोखा निहा
7: नहीं होय नहीं होय।
3: हां वो उजरें देचे असने मोके लागे से जाले मोके मोचो दवाई मिरली
7: होय ना काका। हां उजर से जाले मैं काकी के आरो बुदू के हाक देन ते भी है।
3: हां हां हां होय ना अब खिंडी के मोके कसन बोल लागी
7: ए बुदू काकी आलिया या भीतरिया
3: ए सोनाय सत्य मोके मोचो दवाई मिरली एदाम उजरें दे भले हो ये चंदर और ये बुदू चो आले मोचो काजी खिंडी के मां कन की चपेट तड़ाके रानों देस यू भाई से
4: दखानु ये मन तो चंग चंग का देखा दे सत भले होली बेटा मन ये पांच दिन पाछे नहीं पेज के मां सताजी आने से अले दिन मैं एक बे आने से पेज
7: अले काका आमी जाऊं से बे ना आज जो
3: बुरा जहाँ सा आज जो ये तेरा बाबू ये तेरा है। खूबे अचरज गोट है
8: काय होली डॉक्टर साहब खूब भी अचरज गोट बोल सास।
3: अरे ये खिंडी कागे नहीं ये जो सिया ने भी अस्पताल ने भर्ती होलो से नहीं
8: हाँ
3: ये मजीगता ने छाडून जाते जाओ रहे
8: हसन।
3: हाँ और फिर काय होली जाले एवं फिर इला भर्ती होला और फिर झपके एसियान चंग चंगा होते जाए से
8: गोट तो सत्य है डॉक्टर साहब ये भी एसियान नहीं झपके नंगा थोन जाए से
3: हो अले ये कंपाउंडर अले ये इंजेक्शन लगाऊं दे से के
8: हो डॉक्टर साहब मैं लगाऊं दे सियान खिने पीना टेढ़ा करते बट हाँ हाथ गुचाओ हाथ के गुचाओ
3: दुख हुआ बाबू।
8: ये रुई रुई धर तो हाँ लगड़ अच्छा से लगड़ है।
4: हाँ अले चुगे हाय हाय नहीं करा बे देह पाई नाम कमजोर हो जाऊं रह जानू एबे तुम्हें खिने चंग चंगा दिखा दे हसीस
3: मैं कसन दे नगत हो से एक तुम्हें नहीं जानू सकास डॉक्टर साहब तुम्ही बाहरिया ले दवाई दे सास मानतर भीतर चो दवाई के तो मैं खादले से आगे जानू मौके भरोसा नहीं रहे बाज तो ये मैं बाचें देचे मौके कौन मारुक सके यही काजे मैं जीन दे चे हाँ सुनाए मैं जीन दे चे
8: ठीक है सियान तू 100 साल ले आगर जीव से ना
3: आम जो बाट ले बोले शुभ कामना दे उसे आमी 100 साल ले आगर जीव।

0: आले कसे नबुदु सांग हाँ तू का कहे ऐसा नाम के अरुसियान मन के बले था बसाली चीज ना जाके सांग
1: हाँ देख ना काकू अरुसियान मन आजी मैं गोटो कहानी सांगे से गलती होली जाली माफी दिया से
0: आले सांग सांग सांग सांग सांग सांग
1: देखा ना घतवार चो घत के सकुक नहीं होई और केबे केबे असन बले होई से कि गलती कर तो मन नहीं रहे मानतर गलती हो उन जगवाई ये हिसाब ने गलती बोले हुआ है
0: सत्य
1: मानतर होन गलती के सुद्रोग बोले पड़े से
2: अच्छा अच्छा अच्छा
3: तो बुधू
1: हाँ
3: तू ये धंधा पकालो आसन नहीं गोठे आवरा तू ये आम के सीधा सीधा सांग कि तू जो काय बोल तो रहा है
1: देखा ना सियान मन मैं और चंदर आमी दोनों के आमा खाऊ भाव तो की आमी विचार कर लू बली काका चो निरलो समयानी ओलू नामी आमा के टूटाते टूटावा और जाते जावा मानतर होन दिन काय होली सियान बोहरते बोहर लो आमचो तो बुद्धि गुपली और चंदर तेबे देव चो सुवांग कर लो आमी बोले काय जानू की बोली सियान सुवांग चो गोट की आप लो मन ने धरे दे बोलून तेबे पाचे सियान धीरे धीरे खुबे बीमार पड़तो के आम की चिंता होली और होनी सुवांग हिसाब ले चंदर फिर मन चो बल के जगाउन बोली काका के चर पर बना तो काम कर लो गलती तो होली आरु गोटोक हिसाब ले गलती के सुधरा तोर काम बले होली मानतर आमचो लागून बली सियान के जित्रो बले दुख तकलीफ भुगत मानी होली से एचो काजे मैं मचो आरु चंद्र बाटले माफी मांगे से हाथ जोड़े से
0: तुमी ये गोट के सांगन मौके खुबे रिस करून दिलास कहाँ गेलो हुन चंदर मैं आज ही सांगे दे उनके कहाँ से जाले उनचो देव
3: आले बे सियान गलती तो कर ला मातर खेवा बोले तो मांग सोतना
0: नहीं ना ए बुधू तू जा और आगे चंदर के हक दे उन आन
1: आने से ना होन खोर बाटिया से लाज काज नहीं है इसे हाथ दे उन आने से ना
0: मैं तो आजी कचे गोट के नहीं माने
3: कसन नहीं मान से गलती करो बीता ले माफी करो बीता अगर बड़े हो इसे माने ना माफी करो
0: सत्य हाले इलास ए बटिया अले ये लगे
1: ये उसी ना अय्या
0: ये बटिया ये बाबू मन तुम्ही मोके माफी दियास ना
1: का बोलिस यार
0: मोचो ले गलती होली ना मैं मोचो गलती के आजी माने से कि मोचो मन ने बसुन गेली कि बीमार पड़े दे बीमार पड़ून ची गेले मोचो मन ने बसुन गेली कि नंगत होए दे नंगत होऊन ची गेले ये सफाई मंचो सियान मन सुना ना आज ये लेका मन सत्य गोट के सांगला इतरे ही नहीं ये मंचो गलती माफी होली और ये भी आमचो गाँव ने पारा ने सफाई लगे डर भय शंका ये सफाई मन आसे मानतर आपलो मन ने आमी जसन मानुसे उसने चहोई से यही कारण सफाई लोग के आजी मोचो यही बोलतर होई से कि मनचो हार ले हार
1: अच्छा
0: आ मनचो जीत ले जीत
1: हाँ
0: सुन ला आजी ये लेका मन मोचो आई के उघाड़ला यही काजे मैं ए मन के सहराय से आरु ए मनचो संगे संगे इलो सफाई लोग के आप लो बनवाड़ी चो स्वाद आमा खाऊ दे से बोरु तो खाऊ नहीं सकला एसु मन भर खा पेट भर

0: ना भुजको भाई
1: दादा
0: तो गीत बोल कितलो अच्छा लागे
1: ने नगत लाग दी जानो
0: एना तू गीत कुरिया मन चीता लिस ना
1: हो फिर कसन नी चीता दे गीत कुरिया मन रला शिव राम नाग अरुण चो साथी मन ने अपर हम चो ये जित्र बोल हमी तो सांगलु दादा हम चो नगत गोट और नगत गो बानी मन के ने अरी
0: ये ना मुझको भाई द गो ज्ञान ध्यान जो गोट मन तो खूबे आसे महांतराम के समय आने और ले आम के समय आने जाऊ बोल पड़े से मैं बोलते रहने तू मोंडरा गडरा के सकल मैं दादा दीदी मन के बिदा धारे दे जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव करिया दादा दीदी सिहान सजन माए माता बाप भाई और संग जोरिया संगवारी मन के मैं गबरू
1: और मैं भुस्कू
0: हम दोनों करूं से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव, मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम कुड़ई फूल।

0: ढूंढी जुलाई जुलाई न चलो जाती जुड़ूंगा आज पालो
1: ओदरला टेंड काचे गीला गाचे चे गीला गाचेलो मुड़ी ऊंचाई ऊंचाई ना चलो जाती चारिया ना बेलो
0: सुरू जापो बाजे मेला ही काजे लो बोड़े जापो बाजे रोजे लो जाती जुड़ूंगा जो पालो
1: सुरू जापो बाजे मेलाई काजे लो बोड़े जापो बाजे रोजे लो जाती चारिया ना बेलो
0: सारे लाडोरी लाडोरा काजे लो चनागे नी देवू रोजे लो जाती राय कम बीड़ा जो तो न करालो
1: असलो लाडोरा लाडोरी काजे ओ चना गेनी देवू रोजे लो जाती चारिया ना बेलो
0: टीप बहु सर टीपनी गरी लो बूंदा बहु सर छाता लो जाती जुड़ूंगा जो पालो
1: टीप बहु सर टीपनी गरी लो बूंदा बहु

0: পাউ আই পোকো না দেলালো জাতি জুড়ুঙ্গা জ পালো
1: লগে টানা গু।

रोसिला पानी ठिकरा कोसमी बरोसिला पानी चेगी गला बरगनी चेगीला माचके मुडे बार बारे ना पो जानी बेलो जानी रे दोंदो ना पो जानी बेलो जानी रोना बेलो का सुंदर चलो डुडू केलो चकड़ा लगी जाए अरे साढ़े छे सली चाउरो ना पोला बाबू लाल घरे आसा बोलो बाके आसो तेरे लुकाए बाटे वो रोसिला पानी रोना बेलो का सुंदर मचो संगे खेलो चकड़ा लगी जाए अरे उठन पाउन मधुरुन जाते नानिया माँ बाले गा गा मोर गा चो मलिका गाते बेसुनी दकु पालिया उड़िया पदो पीटी गले का।

आयक अरे आकी झुमझा मझुमरा लागली जो बे घरे नांग साप गुद गुदे बोली देली नांग साप गुद गुदे तम गुड़िया पिला गीत गाय बाबे राती राती रो बे रुदे रना बे लोकाले की चलो डुडू खेलो चकड़ा लग जाय अरे चटाम चाटा नंगरा काड़ी चाटील करे पानी बीर बोरो बालू तो कुमरो पानी बीर बोरो बना रे दंद पानी बीर बोरो बना आकाश भुवने मेड़ो बांधु आए पकी नई लारो डेना

ओस ओस रली पानी टूब गली बसी दे लाबू बाटो के तू नहीं बोली ले सुले का सुंदरी उठी जी भी लोके बाके रे दंद उठी जी भी लोके बाके रोनो वेल का सुंदर चलो डूडू खेलो चकड़ा लग जाए को अरे आओ ताले की खेलू ता खोरे संगे जावा घरे ए बाटर आई बाटर गाड़ा गारनी का झिकिलू कांदा सारनी अमर घर भाई पिला गारनी का या सबे पेजो रांधनी रे दंदवा सबे पेजो रांधनी रोनो वेल का रे रानी चलो डूडू खेलो चकड़ा लग जाए को अरे उठन पाउन मधरून जाते सिलीमा घरे काकड़ा कोड़ीली गोजिया डांगे का बेताल गाँव रो टंगे आसारे लाडरी धर भी अंगे का साया भी लाहू जो संगे रे दंद साया भी लाहू जो संगे रोनो वेल का रे रानी मचो संगे खेलो चकड़ा लग जाए को अरे सुंदर तू आल बने से काय नानिया मा वाले के कंदी के ओरा मोली मंदरा का धोती धरा पाटा धरा रे दंद धोती धरा पाटा धरा मोरला चेली पोरा हाकी के नाद का मुनु आय मेलिया धरा रोनो वेल का सुंदर चलो डूडू खेलो चकड़ा लग जाए को अरे तले बेंडा पाना ऊपरे दोना चाड़ी दिले कल अपना रे उदिला रे जन नीली तो रास का छता डांगो तले बस छता डांगो तले मुआ तो देवी का कांदो नहीं रस रस रे दंद कांदो नहीं रस रस रोनो वेल का रे रानी चलो डूडू केलो चकड़ा लग जाए को अरे अकिजु मोजा मोजु मुरा लागली जो बेगारे तेलंगा मंडिया झुमका जोता का तालो पोतोरिया चाता रे दोंदो तालो पोतोरिया चाता तोरा या मोरो पेटर वाता का यो सलो भिड़ीला नाता रोनो वेल का रे रानी चलो डूडू के।

बाजू बैठा ने तो का पाले उड़ीला गोरिया बोतीला माले काय मालो रो गोरिया झूले रे दोनों मालो रो गोरिया झूले।

के दुरा सुजुन लाई दुरा दुरा सियो नि गले बदरा सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन अमर तुंग गुड़ाए लगे नहीं अमर तुंग गुड़ाए लगे नहीं डंगरी उतरा नि गाई सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन लगे टाना गुड़ी जगू न चूला लगे टाना गुड़ी जगू न चूला पाऊ आई पो को न डेला सुजु न बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन ये देलु या लोभी दर्पो न डोबी ये देलु या लोभी दर्पो न डोबी जेने गले तेने ने भी सुजु न बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन पांच पोड़ी गले पोचासो देवी पांच पोड़ी गले पोचासो देवी हाथ के दरी गरे ने भी सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन तो कहने वाका जे अंगुर वाचे तो कहने वाका जे अंगुर वाचे मामा के संग लिया चे सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन तोर मन वाचे के बे के बे तोर मन वाचे के बे के बे मोर मन वाचे ये बे सुजुन कोन गाइन मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन गच के मारी लुती नि टेंगिया गच के मारी लुती नि टेंगिया गच डुले के सरिया सुजुन कोन गाइन मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन तोमार गुरु दादा नीली रंगिया तोमार गुरु दादा नीली रंगिया गरे गले ही सलिया सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन ये देउदान बोके चिली पार के ये देउदान बोके चिली पार के दादा काजे ने भूत के सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन दादा नारा कले मुहिरा कवि काये कर विषम के सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन डांडा बाड़ी लगे द कली तो के डांडा बाड़ी लगे द कली तो के पोराऊ बोल लिस्म के सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन ये देखे लिखाऊ खेल के जाऊ ये देखे लिखाऊ खेल के जाऊ दादार बाए ले बहू सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन बासी भात खाऊ टुकु ना दोहु बासी भात खाऊ टुकु ना दोहु दादार बाए ले बहू सुजुन कोन गाइन मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन उसुका गुरु लपाऊ टोके उसुका गुरु लपाहिला टोके बरो में गुड़ी लाबो के सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन बोरो में न जाकाई बोके बोरो में न जाकाई बोके ठटायो बीस जिया रुके सुजुन बोला ले की मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन काला माली धान बूंदे पोलका काला माली धान बूंदे पोलका पुजारी मुंडार पानी अलका जन के बोली भाई मोका सुजुन कोन गाइन मुन कौन सब दुन ताली बाजे रन जन
আমি পিলে মন গীত গাইবা বেলা, আমি পিলে মন গীত গাইবা বেলা, লাইয়ে টুজোর মারি দেখা সুজন, বোলালে কি মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন, লঙ্গা মন্ডিয়া ঝুমু কাজ তা, তেলঙ্গা মন্ডিয়া ঝুমু কাজ তা, তাল পোতরিয়া ছাতা সুজন, বোলালে কি মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন, ছাতা উড়ি করি সেবা করুয়ায়, ছাতা উড়ি করি সেবা করুয়ায়, তোমার গুড়ার বাউড়ি মাতা সুজন, বোলালে কি মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন, চিচি মোর চিড়ই শিকা, চিচি মোর চিড়ই শিকা, তোর বায় বুয়া কুকুড়া বিকা, তোকে দেলাই গোর রাখা সুজন, বোলালে কি মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন, আশা বোলো বাকে আসো তেরলু, আশা বোলো বাকে আসো তেরলু, বাটে বোরো শিলা পানি সুজন, বোলালে কি মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন, উড়িলা চে চান বসিলা বাড়ি, উড়িলা চে চান বসিলা বাড়ি, খেদিলে ন যায় উড়ি সুজন, কোন গাইন মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন, শিশারি পড়িলে মুসরি সিজে, শিশারি পড়িলে মুসরি সিজে, তোর কাজে মন মনরি যে সুজন, কোন গাইন মন কংস বদন, তালি বাজে রান জন।

कूड़े फूल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे मेरी राम बघेला और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन काजे गोट। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जानकारी दे रही हैं माधुरी यादव।

0: अरु यही गोठमन के जानूरले आमचोहक अधिकार के कोनी झिकुक नि सकोत असन समाज सेवा चो कई काम करते करते अरु देश सेवा का जे जीवना के सोपून काम करते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 के देवलोक होला। मरलो पाछे सन 1990 ने एमन के भारत चो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ले सम्मानित करला। तो पिलामन असन रली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चो जीवना। पिलामन आजी काय सीखुक मिरली, आजी चो गोठले ये शिक्षा मिरे से कि जीवना ने आगे बाढ़तो का जे पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए। शिक्षा सामाजिक बदलाव और न्याय का जे जरूरी आए। बुद्धि चो विकास आमचो आखरी तक चो करतो कोशिश ने रतोर खूब जरूरी आए।
1: हाँ तो पिलामन दखा गोट गोट संगे नहीं, मैं तुमन मन कच गोटो गीत बलधारू नीले से काय हरे खोलास ने गीत जो नाव सुन काय है कि जीवना ने हरे कुदिम का जे गीत गोविंद रतोर खूब जरूरी आए। खिंडी नाचा कूदा बोल करतो रे चियाई ने देह पाए कच बोली अच्छा चियाई। तो पिलामन सुनू ता ए गीत के ने।

आज ही तो गोटबात ने मैं भीमराव अंबेडकर चो गोटबात के पीला मन तुमके सांगले तो आज ही चो गोट इतरे ही रहो फिर भेंट खाट होले और गोटबात मन के करवा जातो पूरे तुम चो दीदी बाटले सब पाए पीला मन के खूबे खूबे माया।

0: अभी आप सुन रहे थे पीला मन का जिगोट। प्रस्तुति थी माधुरी यादव की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9 बजने वाले हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
4: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
5: दोनों देशों के startups, research centers और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम India-Italy Innovation Center पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
4: मिस्टर मोदी stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
5: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है. यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं. भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए.
4: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
6: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
4: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
5: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है, जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
4: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Defence Minister Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation.

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पूनम की रात से, बोल शैलेंद्र के हैं, धुन तैयार की है सलील चौधरी ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। वाइट कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। जैविक खेती मिशन वार्ताकार हैं दीपिका ठाकुर।
1: उवाट कार्यक्रम सुनतोर सप्पाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन के जुहार। आमी रेडियो ने सरकार बाटले योजना मन सांगते रहुन से आजीवले आमी गोटोक उवाट धरुन इलुन से छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जैविक खेती मिशन चो क्रियान्वयन काजे उवाट। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग बाटले जैविक खेती नंगत ढंग ले करतो काजे सरकार चो सरसराले दिशा निर्देश आए। जैविक खेती काजे विकास खंड चो चयन हर जिला ले एक नाई तो दुई विकास खंड मंचो चयन करतोर होय से। समूह चो चयन गोटो क्लस्टर ने 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल संगातोर आए ताकि समूह जैविक प्रमाणीकरण काजे दिलो सहायता चो अलावा किसान मन के खर्चा करुक नी पड़ो। जैविक खेती काजे असन गांवपारा चो चुनाव करतोर आए जहां खूबे संख्या ने पशु जनावर और जैविक खाद बनातो काजे संसाधन मिरो। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों खच्चो उपयोग कम मात्रा ने हो। समूह चो नक्शा खसरा चो संधारण करतोर होए से परिवर्तन का

जनजाति किसान मन के प्राथमिकता मिरो जैविक खेती का जे चुनलो क्षेत्र और किसान समूह मंचो अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ले करातोर सुनिश्चित करतोर होए से किसान समूह बनाउन हुंचो पंजीयन करातोर होए से बेसलाइन सर्वे चयन करलो क्षेत्र और किसान मंचो बेसलाइन सर्वे और दस्तावेजीकरण निर्धारण प्रपत्र ने पूरा करतोर होए से आधारभूत जानकारी चयन करलो विकास खंड ने तैयार करलो क्लस्टर ने एतो किसान मंचो सपाय नाव गांव पता ठिकाना सपाय जानकारी तैयार करून दस्तावेज बनातोर आए मैदानी अमलाचो चयन प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण जिला स्तर और विकास खंड स्तर जैविक सेल काजे योजनाचो मार्गदर्शन हिसाब ले नंगत लोग मंचो चयन करून और स्थानीय स्तर ने स्किल अपग्रेडेशन बल्लो ने सिक्तो काजे तकनीकी प्रशिक्षण सत्रचो आयोजन करतो राय और चयन करलो लोग के जैविक खेती मिशन चो काम के प्राथमिकता संगे दिलो समय में पूरा करतो काजे निर्देशित करतो राय जैविक खेती मिशन चो क्रियान्वयन काजे 5 दिन चो तकनीकी प्रशिक्षण राज्य स्तर ने आयोजित करुआत जहां सबुचो एतो जरूरी है नी इलो लोग के हुनमन चो अवैतनिक अवकाश मानतोर होए से मैदानी लोक काजे राज्य ले बाहिर 10 दिन चो शैक्षणिक भ्रमण बुलातो काजे योजना आसे किसान मंचो प्रशिक्षण जैविक खेती मिशन भीतरे चयन होलो किसान मन के जिला स्तर ने 2 दिन और राज्य स्तर ने 3 दिन चो तकनीकी प्रशिक्षण दिवात जहां किसान मन के जैविक खेती चो सप्पाय गोट बात सांगुआत किसान मन काजे शैक्षणिक भ्रमण जैविक खेती काजे चयन होलो किसान और जैविक खेती मिशन चो लोग मन संगे राज्य ले बाहर प्रमाणित जैविक खेती करतोर परदेश जगा चो शैक्षणिक भ्रमण करातोर होए से बल्लो ने किसान मन के जैविक खेती अपनातो काजे प्रेरित करतोर आए और हुन मन चो तकनीकी ज्ञान बले बाढ़ो ये काम काजे एनजीओ मंचो सहायता धरुकलाय सको सिखातो काजे बुलातो बेरा दक्तोर सिखतो बेरा जैविक खेती तकनीकी सिखातो बेरा चो फोटो वीडियो तैयार करून सप्पाय किसान मन के देतोर आए शैक्षणिक भ्रमण काजे सबू समूह दल ने लोग मंचो संख्या समान रहो सप्पाय किसान मन के सिखतो काजे समान मौका मिरो माटी जांच जैविक फसल प्रबंधन काजे चयन समूह चो हर बेड़ा माटी चो वैज्ञानिक विधि ले बीज बुनतो पहिल माटी नमूना धरून माटी चो जांच करातो जरूरी है और जांच चो पाचे जरूरी पोषक तत्व चो बलबपू काजे प्रबंधन करतो जरूरी है जैविक खेती तकनीकी फसल प्रदर्शन चो आयोजन प्रदेश ने जैविक खेती के बढ़ावा देतो काजे जैविक खेती चो तकनीकी फसल प्रबंधन काजे धान और दार फसल मन काजे मापदंड निर्धारित आसे जेठ और बरसा सीत बेराचो फसल ने फसल प्रदर्शन आगर ले आगर 0.4 हेक्टेयर गोटोक किसान आयोजित करतोर आए जहां कोनिबल प्रकार चो रासायनिक दवाई ओखचो बिना संपूर्ण जैविक प्रबंधन ले आगर उपज धरतो उवाट के सांगुआत जैविक फसल प्रबंधन धरतो काजे उवाट सुना खेती चो तैयारी किसान चो बेड़ा जेचो 0.4 हेक्टेयर ले आगर नी आए उनके बीज बुनतो काजे और बेड़ा तैयार करतो काजे 1500 रुपए मिरुआ बीज किसान मन जैविक खेती प्रदर्शन काजे जैविक वाट ले उपज बीज प्रमाणित बीज और आपलो चो बीज के उपयोग करुकला सको जीएम बीज चो उपयोग नी करतो रहे बीज चो प्रकार जैविक फसल प्रबंधन काजे सांगलो अनाज दार फसल तिलहन फसल चो बीज उपचार जैविक फसल प्रदर्शन काजे सांगलो अनाज दार फसल तिलहन फसल चो बीज उपचार करतो काजे स्यूडोमोनास माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा वीर्डी आदि चो उपयोग करतो राय हरी खाद जैविक धान फसल प्रदर्शन काजे हरा खाद बल्लो ने डारा पाना खाद चो उपयोग कर ले किसान मन के अनुदान बल्लो ने पैसा मिरुआए जैविक उर्वरक किसान मन द्वारा जैविक फसल प्रदर्शन ने राइजोबियम एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम

एसबी पोटाश घोलक जीवाणु केएमबी, जिंक घोलक जीवाणु जेएमबी और चूना जिपस्म बेनेटेनाइट उपयोग करतो राय। संगे संगे कृषक मन के पंचगव्य बीजामृत और जीवामृत बनातो काजे 200 लीटर चो पीवीसी ड्रम घेनतो काजे आर्थिक सहायता मिलुआ है। पीवीसी ड्रम काजे आर्थिक सहायता योजना समयाने एक हार मिलुआ है। लाटा बूटा खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण काजे किसान मन के अम्बिडा वीडर और दूसर मिंजानी घसानी मशीन और 2 ले 3 साल में खुद ले मिंजानी करतोर हो से और ये जो आर्थिक सहायता मिलुआ है। हाथ ले मिंजानी कर ले योजना समय बेरा एक हार पैसा मिले दे। जैविक फसल प्रदर्शन ने कोनी बल प्रकार चो रासायनिक खाद उपयोग नी करतो रहा है। जैविक कीट प्रबंधन, फसल प्रदर्शन ने कीड़ी ले बचाव काजे जैविक कीटनाशक और NPV ट्राइकोकार्ड बेसिलस स्पीसीज लाइट टैप स्टिकी टैप और रसायन नीरलो समान उपयोग कर ले अनुदान मिरुआए। फसल चो चयन और जैविक बीज उत्पादन, जैविक खेती काजे असन फसल और किसम मन चो चयन करतो काजे किसान मन के सलाह देतो राय। जोन खातो काजे नंगत रहो और जे फसल चो जैविक बाजार ने खुबे मांग रहो। जसन बास चाउर, जवा फूल, विष्णु भोग, दूबराज, जीरा फूल, सरबती गेहूं, चना, मूंग, उड़ीद और तिलहन फसल। जैविक किसान मन जैविक उत्पादन काजे चुनलो फसल मन चो बीज चो मांग के धरून मांग हिसाब ले फसल चो जैविक बीज उत्पादन सरकारी कृषि जगाने और बीज निगम क्षेत्र ने करुक लाए सकोत। जैविक उर्वरक प्रबंधन, किसान मन के बेड़ा ने जैविक खाद उत्पादन नापेड कंपोस्ट टंकी और डारा पाना कुआउन सड़ालो बनालो खाद वर्मी कंपोस्ट टंकी बनातो काजे और जैविक खाद चो उत्पादन करतो काजे आर्थिक सहायता मिलुआ है। जैविक कीड़ी व्याधि औषधि चो निर्माण, जैविक खेती चो उद्देश्य खेती ने कम ले कम पैसा लगाउन टिकाऊ उपज धरतो राय, माटी चो उपजन बजातो राय और किसान मन के खेती बाड़ी ने आमदनी करुक और आत्मनिर्भर बनतो काजे सिखातो राय। ऑन फार्म जैविक प्रबंधन, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच के बढ़ावा देतो संगे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक दवाई ओखत किसान खुद बनाउन उपयोग करुक लाय सकोत। असन उवाट किसान मन जानोत और सीखोत। अगर सिखातो काजे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले सहायता धरुक लाय सकोत। कोनी बल स्थिति ने बाजार ले मिरतो जिनिस के दवाई ओखत काजे नी घेनतो राय। बाजार व्यवस्था, किसान चो जैविक उत्पादन के बिक्री भांजरी काजे किसान चो गोटुक समूह बनातो राय जे जिला और प्रदेश भीतर और प्रदेश चो बाहरे बाजार होतो संभावना के खोजन भाती जैविक उत्पादन चो बिक्री भांजरी करुक लाय सकोत। जैविक किसान मंडई, जिला स्तर जैविक किसान मंडई चो मूर करुन साल भीतरे ही करतो राय। किसान मंडई चो जरूरी तैयारी जसन साहित्य जैविक तकनीकी उपरे वीडियो CD दखातोर पोस्टर पॉम्पलेट चिपकातोर बुता जरूर करतो रहे और संगे संगे कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र चो खोजाकारी भाई मन संगे समूह बनाउन जैविक किसान और वैज्ञानिक संगे गोट बात बसका सभा करतोर होए से। जैविक प्रमाणीकरण, जैविक खेती करतो काजे चयनित फसल मन के जैविक प्रमाणीकरण करतो जरूरी आए। सामूहिक जैविक प्रमाणीकरण काजे 3 साल काजे 10,000 चो प्रावधान योजना के मिसालो आसे जे के पहिल साल ने 3,000, दूसरे साल ने बल 3,000 और तीसरे साल ने 4,000 रुपया चो आर्थिक सहायता उपलब्ध करावा। प्रचार प्रसार, जैविक खेती मिशन चो सप्पाय बाट प्रचार प्रसार काजे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चो माध्यम ले प्रचार सुनिश्चित करतो रहे। एक्सटेंशन रिफार्म योजना नाई तो काई दूसर योजना संगे गोट बात करून जैविक गांव ने जैविक खेती चो व्यवस्था ने फार्म स्कूल चो आयोजन करू लाय सकोत। जैविक प्रमाणीकरण काजे भारत सरकार चो राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम और PGS पद्धति चो सपा स्तर चो जानकारी किसान मन के जरूर देतो राय। जैविक खेती संबंधी सपाय काम बुता चो कैलेंडर तैयार करून संचनालय के उपलब्ध करातोर आए। जैविक खेती काजे चुनलो किसान के 2 दिन चो किसान प्रशिक्षण प्रावधान आसे।

0: राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना चो प्रावधान अनुसार जैविक खेती का जे चुन लो 20-20 किसान समूह के 2 दिन चो प्रशिक्षण आयोजन करतो रहे। प्रशिक्षण चो आयोजन शासकीय आदर्श जैविक कृषि विज्ञान केंद्र चो प्रक्षेत्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चो प्रक्षेत्र और जैविक कृषक समूह चो जैविक प्रक्षेत्र ने करातो रहे। प्रशिक्षण चो खर्चा प्रावधान में सांगेन से 20 किसान मन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण लॉजिंग और बोर्डिंग 150 रुपया हर किसान के देतो रहे, जेचो काजे खर्चा प्रावधान 6,000 तक आसे। किसान साहित्य स्टेशनरी और परिवहन करतोर जे में खर्चा चो प्रावधान 2,000 तक आसे। जैविक आदान केचुआ वर्मी कल्चर आदि चो विवरण करतो काजे जेचो खर्चा प्रावधान 3,000 तक आसे। किसान वैज्ञानिक रिसोर्स पर्सन चो भत्ता 250 रुपया गोटोक वैज्ञानिक के देतोर जे में खर्चा चो प्रावधान 2,000 तक आसे। ये सबू चो टोटल होए से जे सबू चो टोटल खर्चा आए 13,000 रुपये। दादा दीदी मन आजी आमी जैविक खेती चो नंगत वाट के जान लू, तुमी बल असन वाट के धरा और नंगत कमानी करा। जुहार।
1: वाट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हल्बी बोली में वार्ता जैविक खेती मिशन। वार्ताकार थी दीपिका ठाकुर। अब इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना गोंडी बोली में। वार्ताकार हैं जयराम कवासी।
2: वाट कार्यक्रम के जनोर उनके दादा दीदी के नया कर जोहार। वाट कार्यक्रम ते मोम सरकार था पुना पुना योजना किन केचो मन तोम नेंड आले तेन ओंड योजना मिंदे राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना। इद योजना ता बारे में ते नेंड ननमी किन जानकारी इता। छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता इत कचोन पाल पीरी व मनद हर तो अर निकय तो पिता पाल अर पाल दव बनेम अत्तव जाकिना नेट दिनम ते निकय मांग तिन उड़ी हविना पूर्ति की लय डायरी इकाई पाड़नद निकय जरूरी मिंदे। नेलोटा नेलोटा गोट बर्रे दिव्य पोड़पी तेना निकय नापा पोईत तोड़ जुआन लया लयोड़ किन डायरी क्षेत्र ते व्यापार ता मोह का ईनद उद्देश्य ते राज्य डायरी उद्यमिता विकास योजना लागू की। इद योजना ते लोपा मुन्ने पुनर डायरी उद्यमिकिन कोन इद बूतोथिन खीले नेला लागते मतु निन्ने उन दिन गोट बर्रे पोड़पनोड किनवेंड आउर दिब्बे गोट बर्रे पोड़पनद मन वाना कीता तान लागी मनवराज ते फाल पीरन बूतो हाड़ उंकिड़किन फाल वेंड दुर कीता। तेना उद्देश्य इद मेंदे की इद योजना ता लाभ पोई के अपुन खुद तविंडे रोजगार बड़े माता डेयरी विकास ता माटा मेंदे की दिव्य मूल दिन नाप आई अर्थान संग संग ते डेयरी उद्यमिता व्यापारवन बड़े मई मन व राज ते पाल उंडनोड अड़ फाल व मनोड़ नड़मा पाल व मनोड़ परिवार तोड़किन डेयरी क्षेत्र ता विस्तार कीनद उद्देश्य मिंदे पाल व मनोड़ अड़ फाल दव जाकी किन मुन्ने पेंजितिनद ईसाप मिंदे डेयरी इकाई ता अनुदान विवरण इले मिंदे घटक न पिद्देड़ उनकी वित्तीय लागत सहायता प्रकार पेर किटा पूंजी अनुदान सबले मुनेन घटक न पिद्देड़ भारत देशम ते नेलोठा फाल इनव गोट साईवाल रेड रेड सिंधी गीर तारपारकर नेलोटा शंकर की तो बर्रे गोट उनकी वित्तीय लागत रेंडिन ले दिव्य पाल ईनव गोट न पैसा 1,40,000 आड़ ओंडिन पोरो 70,000 रुपया मुंड वेडसन मेदले मंता सहायता प्रकार फेर केटा पूंजी अनुदान सामान्य श्रेणी तोड़किन मेदले सामान्य श्रेणी तोड़किन मेदले 50% ता अधिकतम 70,000 रुपये छूट मिंदे एससी एसटी तोड़किन मेदले 66.6% छूट मिंदे अनुदान पात्रता और लाभ पोईतनोड़ा विवरण इले मिंदे इद योजना ते अधिकतम रेंड पशु असा परदतोर सामान्य श्रेणी तोड़ किन मदले फाल ईनव पशु न वास्तविक लागत ता 50% और अधिकतम 0.70 लाख आड़ SC ST तोड़ किन मद फाल ईनव पशु न वास्तविक लागत ता 66.6% अधिकतम 0.932 लाख रुपया अनुदान दोरकता। योजना ता प्रावधान तीन में ज्यादा खर्च अत के पशुपालक खुद अपन खर्च किया परदतोर आड़ ओन अनुदान दोरको असम पे बेवे वेंड गोटक बर्रे पाल इयन ले मन्नी आड़ताना उमर एंग वर्षन ले हागेड़ मनमकी अस्तद गोटक नालोक बर्रे पाल इनद नपन ते कम 10 लीटर पाल इनद मिंदे फास अस्तव गोटक बर्रे ना मेंदुल इले मन्नी की हवन अविनगा अविनक्टीना ओंड दीन ते कम औसतन 8 लीटर पाल दुर्की गोटक बर्रे ना पशु बीमा एंग वर्षन लय मंदनद डेयरी इकाई ता पाड़ तद नफंते कमते खम मुंड वर्षन लय अनिवार्य मंदनद नेलिल वरोड सुडू नेल मंदनोड आड़ सीमांत कृषकीड गरीबी रेखते दौड़ मंदनोड दुग्ध सहकारी समिति तोड़ दुग्ध संकलन मार्ग मंदनाव नाह नोड नरवा योजनते मंदनोड पशुपालकेड महिला स्व सहायता समूह नव आड़ मुनेट के पाल पीरा नोड इद योजना तीन मैदले मुने लाभ पोयत पर दतोड़ इद योजना तल लाभ पोयतले इत ग्रहीड छत्तीसगढ़ दोर आयनद मिंदे संयुक्त परिवार दोर बिच वेरठोरे लाभ पोयत पर दितोर बेनु नगे मुनेट के रेंड पाल इन गोट मिंदे जाले और इद योजना तल लाभ पोयत पर वोर इद योजना तल पंडिंग पैटर्न क्रियान्वयन आड़ डेयरी इकाई ता दिशा निर्देश इले मिंदे इद योजना ता इकाई तीन मैदले बैंक ऋण ताकेट ना लोग खुद अपुन वेंड पूंजी लगा किस बूतो किया पर दतोर तेन लाभ पोयतनोन बेदे वेंड होंडोय इतके बैंक लिंकेज या सब वित्तीय ताकेट अनुदान दोरका पर दिता ओणदम अनुदान दोरकता फिर की हेंग वर्सन फिर की दोरकिता योजना तल लाभ पोयतले इले आवेदन कीनाद विकास खंड तग बोकते मंदनद पशु चिकित्सा संस्था पशु औषधालय कृत्रिम गर्भदान उपकेंद्र मुख्य ग्राम इकाई पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भदान केंद्र मुख्य ग्राम खंड तग अंजमन फार्म एदा परदितोड़ दस्तावेज फोटोकॉपी पहचान पत्र छत्तीसगढ़ द मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र पता सत्यापन दस्तावेज डेयरी पाड़तद नेल द उनके जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब वित्तीय प्रकार आसुनता कागजी लागता मुनेट के पाल पीरनोर जाले ओना मुनेन ओंडले किताव खागेतीना फोटोकॉपी लागता इद योजना तीन मैदले पंजीकरण विकास खंड तद संस्था तक पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भदान केंद्र मुख्य ग्राम खंड तक पंजीकरण आयनद मिंदे पंजीयन तद क्रमांक वित्तीय वर्ष संस्था तपे देड़ आड़ अंडिन तद दिनांक मंदनद अये विकास खंड तक पंजन अत्त पेर के आवेदनी किन जांच की सीधा विभागीय जिला कार्यालय तक लोथी तोड़ आ फिर के जिला कार्यालय तक टीना दुर्ख तद बैंक लिंक ता जांच की पंजी तक संधारित की तोड़ इद योजना तक लाभ पोतनोड़ा चयन बैंक तक लिंक्ड आयनद मिंदे संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ताकेट दुर्खतव आवेदक नाकेट बैंक ताकेट लोहतव आवेदन मुन्ने दाता बैंक ताकेट ऋण स्वीकृत आड़ पैसा जारी कित के संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा तिन एनेक्सर एक लोहता वैतनद एनेक्सर एक ताकेट चयन अत्तरोर बितल मंदनोर चयन अत्तरोर उम्मीदवार जिला थोर अधिकारीन संग डेयरी इकाई तर्त ता अनुबंध कीनोर सब वित्तीय पंजीकरण की तव आवेदन पत्र जनपद पंचायत कृषि स्थायी समिति तक टीना फिर की जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति दायनव आड़ अगय लास्ट चयन आयनद आ फिर के चयन अत्तो ओन सूचना इनोर आड़ ओन फिर के डेयरी इकाई खोला की ले सत्यापित किस मंज अनुदान तीन मैदले आवेदन लोहतनोर डेयरी इकाई ता स्थापना बाले आयनद लाभ पोतनो नाकेट डेयरी इकाई स्थापना ता संबंधी सामान्य निर्देश इले मिंदे लाभ पोतनोर बितल उनके विवरण ये वैतता और बेगटीना गोट बरे अस्तोर अगर टीकाकरण की न सुविधा में देखी वाले ताना लेख किए वे तनत मुनेट के पोर तपाल इन गोट किन इद योजना अंतर्गत शामिल की न दियो SC ST तोड़किन सक्षम अधिकारी नाकेट जारी कित जाति प्रमाण पत्र इनद अनिवार्य मनता लाभ पोतनोर आड़ गवातीन मैदले मंदनोड़ा दस्तखत कीनद अनुबंध पत्र मन्ने इत ग्राहीन कम ते कम एंग वर्षन मैदले डायरी तीन चलाकीय वैतता डायरी तग अस्तव गोट बरे किन बीमारिया वत के ताना आयनद नुकसान तीन मैदले इत ग्राही बैंक तक लिंक मंदनद कागत संबंधित पशु चिकित्सा सहायक आड़ बैंक तोन प्रभारीन आड़ सब वित्तीय स्थिति ते पशु चिकित्सा सहायक संलग्न आड़ सरपंच नालोक पार्षद नग लिका किसमंज सूचना इया प्रदितोर सूचना इत फेर के भौतिक सत्यापन आड़ पुना पशु इले इत ग्रहीन डोलतत पशु ता फल्टा पुना पशु असीमंज इत ग्रहीन इतोड़ इले ता स्थापित इकाई ता पशु डोलता फेर के दोरखता बीमा राशि ते इत ग्रहीन पुना पाल इनद गोड असीमंज वेंडे अस्के गोटकिन एंगवर्सन तग एवना पोड़पतोर पशु विक्रेता बित्तलोड़ ईनद रसीद तग उनके विवरण मंदनद ना नसल उमर बियत संख्या पाली नदी साप आदि इकाई सत्यापन कियम पे सत्यापन करता पशु विक्रेता ताकेट इत्तद रसीद तग उनके विवरण ता मिलान कीस डेयरी ता थोनग मेदद पशुतिन तासना आता बैंक तक लिंक आयनद ऋण स्वीकृत आड़ वापसी ते इतग्राहीन अनुदान तीन मैदले बैंक तव उनके शर्त लागू आता इतग्राही तनग आवेदन पत्र लिखा कितद बैंक साकता फेदर लिखा कीले मरंगमा कीर बैंक ताकत नियम अनुसार आवेदकिन डेयरी स्थापना कितद नपन ते ऋण स्वीकृत कितोर आड़ और इतग्राहीन तनवा पशु किन वमले इतग्राही खुद वम परदितोर डेयरी स्थापना किस स्थापित तद डेयरीता संबंधी खर्च जानकारी पशु टीकाकरण प्रमाण पत्र बीमा प्रमाण पत्र और विभागीय जिला कार्यालय आड़ भोके तद पशु चिकित्सा सेवा संस्था तीन जानकारी इया पर तोर सब वित्तीय इतग्राही नाकेट डेयरी स्थापित किस स्थापित तद जानकारी ता उनके उल्लेखित किया वैतता हाड़ बैंक पशु पासबुकता फोटोकॉपी बोकेतल डोर डॉक्टर अस्पताल तग जानकारी या प्रदतोर इकाई ता सत्यापन इले आयनद बैंक लिंक्ड बैंक ताकेट सत्यापन खीले सत्यापन समिति तले किए वैतता समिति तग संबंधित बैंक तोर शाखा प्रबंधक अध्यक्ष मन तोर और नारदोर सरपंच नालुक पार्षद पशु चिकित्सा सहायक संलग्न वेंड शामिल मन तोर सौवित्य इतग्राही नाकेट सत्यापन समिति तग सत्यापन करा किया वैतता समिति तग स्थानीय सरपंच पार्षद पशु चिकित्सा आड़ इतग्राही सदस्य मन तोड़ अनुदान स्वीकृतिता प्रक्रिया इले आयनत इद माटा उच्च स्पष्ट के चीनद आता कि अनुदान योजना अंतर्गत विभाग आड़ शासन सहायता ते राशि मनता इव राशि किन मैदले दावा किया परवोर बैंक लिंक्ड इकाई स्थापित अत फेर के जिला अधिकारी पशु चिकित्सा सेवा कार्यालय ताकेट एनेक्सर एक ताकेट दोरखतद दिनांक और सत्यापित कितद समिति प्रमाण पत्र दिनांक थद इसापते योजना ते मंदनद अनुदान राशि स्वीकृत आता सब वित्तीय इतग्राही ना राशि स्वीकृत अत फेर के इकाई लागत वायनद राशि खुद त पैसने असप्रदतोर प्रकरण स्वीकृत अत फेर के इकाई तग पशु किन वमनद मानदंड इतग्राही खुद किया प्रदतोर इकाई स्थापित अत फेर के अनुदान दुर्कम इतग्राही न आवेदन दुर्क तद इसापते संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ताकेट राशि स्वीकृत आता अनुदान दोरकनद प्रक्रिया इत ग्राहीड किन अनुदान राशि दोरकले इव जा किन लागता गोटबरे व मनत संबंधी दस्तावेज सत्यापन कित्तव कागजी बीमा कित्तव कागजी अस्तव गोटकबरे ना टीका वाट तव कागज इत ग्राही आड़ इड़वुड़ गवा मत्तरोड़ ओड़ा दस्तखत इत ग्राहीन इकाई तीन कम ते कम एंगवेड़ सा चला किया वैतता तेन मैदले इतग्राही आड़ विभाग तोड़ उड़ा बीच ते नेलोटा माटा मन्नी बैंक खाता था विवरण आयनद मिंदे जाति प्रमाण पत्र वेंड आयनद मिंदे एस सी एस टी तोड़ इतग्राह सक्षम अधिकारी ना दस्तखत अत्त जाति प्रमाण पत्र मन्नी नारदा पेदेड़तीन संग संग उनके सीता कियन लायक ना कागज वेंड आयनद मिंदे छत्तीसगढ़ द मूल निवास प्रमाण पत्र वेंड लागता बैंक लिंक आयनद मिंदे इत योजना त लाभ दुर्कचुन अनुदान राशि पैसा इनद बैंक जारी कीता अनुदान बैक एंडेड अनुदान रूप ते दुर्कीता इदिन बैंक पेर के लॉक इन पीरियड वेंडे किया परदता बैंक पेर के अनुदान राशि तीन बीने खाता तक तासा परदता इत ग्रहीन बैंक पेर के ब्याज पोयो बेदे कारण ते बैंक एंडेड अनुदान दुर्कोक अव पैसा संबंधित संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा तिन वापस दाता सवित्य इतके खुद था पैसा योजना का लाभ दुर्कता फेर के अनुदान राशि इत ग्रहीन बैंक खाता तक डीबीटी ता माध्यम ते पैसा दुर्कता अनुदान तव पैसा ना गलत उपयोग के बाले आता इत ग्रहीन दुर्कता पैसा ना गलत उपयोग के ओन पोर्रो फेर के कार्रवाई चले माता अनुशीलन एवं अनुसरण लाभ पोतर और इतग्राही तनग ओंड पंजीतासी मंतोर अगा उनके विभाग त जानकारी प्रशासनिक अधिकारी रा जानकारी इकाई बेट त उनके जरूरी सुझाव आर डेयरी इकाई ताकेट तव तकनीकी सेवना उनके विवरण अगा मन्नी विकास खंड स्तर ते आवेदन अग्रसरण करता संस्था ताकेट सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी नाकेट कम ते कम लेंज मेट ते ओंडम जांच की सोमन तोर हाड़ पशु चिकित्सा सहायक सलग्य थाकेट वेंडे रेंड लेस ने ओंडम इकाई पंज तक लेका जो कतासी तोड़ जिला स्तर ते स्थापित तद डेयरी इकाई तक कम ते कम आरू लेस ने ओंडम जिला अधिकारी वेंड जांच की सोमन तोर आड़ तम व पंजीनक लेका जो का किसोमन तोर इद योजना त जानकारी इच्छोरे मत्ता मी कुंकेड़कीन इद योजना त लाभ पोइसमन मुन्ने बड़ेम हई मोट मीड़ उंकेड़ इद योजना त लाभ पोइसमन मुन्ने बड़ेम आई मोट अले इंजे नाक ई मुड बीदा मी उंकेड़कीन सेवा जुहार।
1: वाट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जयराम कवासी की वार्ता छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना। मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं हल्बी बोली में परिचर्चा। सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। प्रतिभागी हैं मंथर नाग और बलदेव मोरे। संचालक हैं बलबीर सिंह कच्छ।
3: रेडियो सुन तो भाई भिन मन दखा आमे बेरा पस्ता अपन मन के कई गुड बात करूं से अपन मन लगे अमराव से मंत्र दखा आमचो बोले ने पूरा बस्तर ने बोले कई किस्म चो त्योहार बार मन होते रहे से तो आज यही हिसाब ने बोले आज गुड बात कर तुका जे आमता नीला से श्री बलदेव राम मौर्य सामाजिक कार्यकर्ता और श्री मंधर राम नाग प्राचार्य ले सेवानिवृत्त होला से सबले पहल भेंट गाठ हिसाब ने खूबे खूबे जुआर
4: जुआर जुआर जुआर और खूबे दिन ले अलग अलग रलू मातर नवा जुआर निकाजे आम सुतर होन बाती ये था एक दूसर जुआर करूं से और आम चो जितले वाले रेडियो सुन तो भाई भाई मन के आम तीनों बाट ले आम के
5: जुआर सब के कोना कोना में सब जितले वाले आसो सब के जुआर सब की करूं से का
3: तो देखा आसन आए ये तियार बहार बोले ने हरी कुदिम ने आमी बनाऊ से ये सांगा सुना ने बोले आमी बोले पढ़ा लिखा होलू पढ़ू से जानू से कि आगे आमी बोले ने कहा कि अंग्रेज मंचो गुलाम रलू बोले ने हन मंचो हिसाब ने आमी चलते रलू आम के असन कहीं तियार बहार ना ले आमचो मन हिसाब ने कहीं चीज आमी नहीं करते रलू
4: नहीं करते
3: है कि नहीं तो डर रह रहे तो हन हिसाब ने एवे गोटोक आजादी चो अमृत महोत्सव मनातोर मोर होली से तो यही गोट बात आजी आमी तीनों एता बोसलू से करवा कि कई जोन बाढ़ती उन्ती बाढ़ती जो बाट आए जैसे कि समाज चो विकास आए बौद्धिक बल्ले ने पढ़ाई लिखाई चो आए आर्थिक बल्ले ने धन दौलत चो विकास आए ये सब चीज के भी आम के जानतो रहा है आमी कहाँ तक गेलू से और नहीं गेलू जाले आमी आमी कसन आगे बाढ़वा आई के नहीं तो सबले पहले मैं बलदेव राम मौर्य से मैं पूछूँ अभी कि समाज जो बढ़ती हिसाब ने सामाजिक उन्नति जो हिसाब ने तुमके पूछे से कि ये आजादी जो बाद ने बोले ने कतलो विकास होली से और आम के काय का रुख लाए पढ़े दे
5: आजादी जो बाद में पहले हम जो बस्तर संभाग ने सबे लोग एक ही हिसाब ने पींदा ओढ़ा रहे जोन बोले ओबीसी मले रहो चाहे जोन बल रहो नहीं एक ही स्टाइल में पहना ओढ़ा जसन आजाद होती बाय होलो बाद में धीरे धीरे पहना ओढ़ा बदल ली सब ये जब जब तक के कागज में लिखलो ना हलो के जनजाति है कि ओबीसी है लिखलो ना ले समझी नहीं हो ये भी बराबर टाइप के दखा दे सो पींदा ओढ़ा ने पींदा ओढ़ा ने बदलाव ही ली हुंचो बाद में खान पान ने बोले बदलाव ही ली हुंचो बाद में खिंडिक कृषि खेती ने बोले बदलाव इली सबे बाटे खिंडिक बदलाव इली मंतर ये भी तक के नहीं हम चो लोग मन खिंडिक दुख सुख ने बोले ये भी परेशान आसो ची बदलाव धीरे धीरे उन होए दे कसन बोले उन लगे नील आसो तेसे ते जासो दुख सुख बाटे कसन बोलो ने हम चो देवी देवता के देवी देवता बोले अच्छा है लेकिन हुनके बोले भुलकसो थुन मन हमन बोलू से कि आगे देवी देवता देखो हूं जो बाद में दवाई दारू को सरकार बांट ले जो मुहाय करा सुनके बोल देखो तेबे हुन हमन मन चो खिंडिक डेवलप हम चो आगे जातोर अच्छा होए दे
3: हाँ
5: कसन बोलो ने नहीं ये भी सरकार बोले कोशिश करे से हमन मन चुका जे हर स्तर ने कहीं ना कहीं बोले गाँव गाँव ने सुविधा दे से ये चीज के मन में कान में सुनन बाती गांव पारा ने बल बोस्तोर सियान मन ये ना ये कसन है हुन कसन है आपस में विचार कर तो रहा है ना ये कसन बीती है ना कसन कर लेने अच्छा होए दे है जब तक कि हम ही एता ने सांगू से लेकिन ये चीज बोले गांव पारा ने बल बो सुन बाती विचार कर तो होए से ये बहुत जरूरी है कसन बल लो ने नहीं हम जो लोग मन पढ़े लिखे कमास हो शिक्षा बाटे कमास हो कसन बोले ने शिक्षा ये भी तक के सबले पाठ कुती होला आसोते अभी शिक्षा नीचे आसो खूबे पाठ ने बाकी खान पीन पींदा ओड़ा बार तो सबले आ गए होली से लेकिन शिक्षा बाटे कम आसे कसन बोल लो ने नहीं हम चीज जानते रहे हम बोले खिंडी खिंडी पढ़ लू हम कई बोलो ए ना ये पढ़ लो मैं डीसी बनुआ है ना बोलो है कि नहीं अब हम ही डीसी ची मतलब कुछ नहीं जानते रहो और ये भी पीला मन के पढ़ो बोले जासो और गांव च सियान मन पढ़ लो ने कहीं बोले नौकरी मिले दे आजकल पढ़ लेने बोले नौकरी नहीं मिले से नौकरी का नहीं पढ़ तो रहा है ज्ञान का आज बोले पढ़ तो रहा है हर चीज के आज उन्नति कर तो काज पढ़ा लिखा तो आज जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है नहीं पढ़ लो ने आदमी आज ही एक कदम बोले नहीं है बैंक नहीं जाओ नहीं सके ना कहीं नहीं जाए कहीं है असन ये जसन की ऑनलाइन सिस्टम होली से मेरे पढ़ लो सोत लेखा मन बल बारहवीं बड़ बड़ पढ़ ला सोत नहीं जान सोत हनुमन का एप्लीकेशन निकली से कहाँ देते रहा है असनी पढ़ ला सोत ना ऑनलाइन के जानत नहीं कहीं नहीं हूं चुप कारण है हनुमन चलो मोबाइल नहीं आए कहीं नहीं आए और पेपर तो नहीं आए अब टीवी ताने देश होत बोले जानू कतन जाए नहीं मालूम है लेकिन ये मैं सांगे से पीला झीला मन के बोले पढ़ लो लिख लो लेखा मन के बोले कम से कम जाओ जोन लगे नगे ब्लाक आए कहाँ है पता लगाते रहो कहीं नौकरी पे ऐसा जो निकले से कहीं ऊंच मंच कहीं कागजात आसे कहीं आसे के दखुन बैठी दखाओ पोड़ून बैठी घर रहने कहीं बोले नहीं मिरे
3: नहीं मिरे हाँ
5: है नहीं
3: हाँ उन तो आज तो बलदेव मौर्य दादा गोड बात तो करूँ आज मानतर मंधर राम नाग आसो ते मन बल का है कि शिक्षा चो क्षेत्र ने जुड़ू लला से तो मंधर राम नाग मैं पूछू है जसन की आजादी चो बाद ने बोले शिक्षा बल्ले पढ़े लिखे चो स्तर कितलो बाढ़ ली से और उनचो जो फायदा है बोले का है कि लोग मन के कितलो मिरे से और पढ़ोन लिखुन बोले अगर फायदा नहीं मिरे से तो उनचो बोल का है कारण
4: वैसे हाँ ये सही बात है कि ये वे आजादी चो 75 साल गिरा तो आमी अमृत महोत्सव के रूप ने आमी मनाते हैं उसे तो 75 साल पहले तो मचो उम्र 64 साल होली उनचो पाठ कुते 9 साल और जो बोले जो घटना स्वतंत्र होली तो उदल दाले मैं दखे से कि मचो जन्म दर्शन जान तो बेरा ले कि स्कूल तो जुगे नहीं रहे और ना ही बराबर रहे। तो स्कूल नालों का जे गांव च गोली चो लेकी लेका पीला जिला पढ़ाई लिखाई ने आगे नहीं रला, आगे बढ़ते नहीं रहो, क्योंकि स्कूल नाम च कोई चीजें नहीं रहे। तो जसनी जसनी आमी आमच माए बाप जसन नाम पढ़ा ला लिखा ला आगे बढ़ते गेला, तो आमी बल पढ़ते गेलू और अकल ज्ञान सीखते गेलू। अकल ज्ञान सीखते सीखते जो है आमी फेरा मास्टर बनलू। मास्टर बनून माती कई जन पिला पढ़ालू, उन पिला फिर आमच पढ़ाल पिला में नौकरी बल लगला और नौकरी लगुन बाती उन आप लोग पीला जिला बल पढ़ाला। तो उन समय जो है ज्ञान आलो का जे आम चो आना जाना चो बाट बल नहीं रहे। एक गांव ले दूसर गांव जातो काज बाट नहीं रहे, पैदल जातो काज बाट नहीं रहे, मोटरसाइकिल नहीं रहे, फटपटी नहीं रहे, साइकिल बल नहीं रहे। तो अमी जसन की आजाद होलू शिक्षित होलू ते धीरे धीरे ये जातो काजे सड़क बल बना लू, स्कूल बल बना लू, जगह जगह स्कूल खोल लू, गांव गांव ने खोल लू और पीला जिला के शिक्षित शिक्षा ग्रहण कर तो काजे आमी माए बाप के बले जो अनपढ़ आम चो गांव चो दादा दीदी मन बले पीला पठात काजे एक मास्टर के रूप में आमी समझाते गेलू और एबे असन आगे बढ़लू कि आम चो समाज चो आम चो गांव गोली चो जो पीला जिला मना उच्च पद में बल गेला। उच्च पद में जाऊन बाती अच्छा अच्छा नौकरी कर सोत और आप लोग जीवन स्तर के बढ़िया सुधार सोत और आगे जो पीढ़ी आए उनके बोले ये मन जो है पढ़ाई लिखाई कर तो काजे अकल ज्ञान काजे उन मन माने सिखाते जाए सोत और आगे बढ़ तो काजे उन मन एक रास्ता बोले सहयोग बल कर सोत। इतलो आम चो विकास तो वही से संगे विकास होली, खान पान ने बल विकास होली, रहन सहन ने बल विकास होली और जो आम चो रीति रिवाज के बल आम नहीं भूल को आम उनके बल बनाते रहे, जो आम चो संस्कार आए उनके बल आम नहीं ये संगे अमृत महोत्सव संगे जो है उनके बल आम ही सुरक्षित संगाओं से असन काम आम के करते रहे और ये उत्सव के आगे बढ़ाते।
3: तो दख मंदर रामना गारू बलदेव मोरे दा तुम इतलो अच्छा तो सांगलास गुट के मंत्र जैसन की शिक्षा ने बोले बाढ़ती होली लोग मन पढ़ला और कई लोग नौकरी पेशा बोले कर सोत मंत्र ये गोटोक मानसिक धारणा ये आसे कि गांव चो जो आम चो भाई बहन मन आज पढ़ सोत लिख सोत सोजे बल्ले ने कहा कि नौकरी चो हिसाब ने पढ़ सोत मन चो मन ने ये आए कि आम के नौकरी मिलो और कई के कॉलेज बल करला से ग्रेजुएट बल करला से पोस्ट ग्रेजुएट करला से मंतर नौकरी चो भरोसा न रोन बाती अब तक कहीं नहीं करो जोन बले खेती बाड़ी आसे भले का है कि एक एकड़ आसे दू एकड़ आसे ज्यादा बला से नहीं तो नहीं आए बोले का है कि सरकार बाटले भले अभी कितले सुविधा मना से जैसन की पशुपालन क्षेत्र ने उन चुका जमीन जायदाद जुगे नहीं लागे घर ने बोल को रुक ला सके नहीं तो एक एकड़ बोल जमीन आसे तो आजकल सरकार बाटली इतलो स्कीम आसे कि उनके लाखों रुपए चो जन अनुदान पैसा सहायता में रुक ला सके मंत्र का है कि उन मन के आम चो जन पारंपरिक जो धंधा है उनके कहने का आजकल जो नवा हिसाब ने आम के अपना उकलाय पड़े दे उन्नत हिसाब ने जैसे ड्रिप सिस्टम लिया मल्चिंग सिस्टम लगाए सोत और कई आजकल पॉली हाउस बनाए सोत आधा एकड़ ने पॉली हाउस लगा मनाए सोत लाकन होता करोड़ों रुपया आमदनी जैसन की बाहरी च लोग ये उन बाती बोले कर सोत आम दखू से बोले तो ये सब चीज के बोले आम चो जो पढ़ा लिखा उनचो फायदा को उठाता रहा है कि नहीं। तो बलदेव मोरे दादा जैसन की तुम बल्लास पढ़ला लिखला मंतर एची संग संग का है कि आम चो जो पुरका पार्टी चो जो चलत बेरा चो जो रीति नीति रुसुम आए परंपरा है एगोटो काम चो जीवना का जे बलन का है कि खूबे उदुम आए असन जोन परंपरा है रीति रिवाज के आमी का है कि करोड़ रुपया खर्च कर ले बल उनके आमी अनुकलाय नहीं सकू मंत्र का है कि ये बोले मतलब आजकल धीरे धीरे मतलब भूते जाए से असन मक लागे से तो तुम चो बाटले बल्ले एक चो बचरत कर तो काजे बल्ले ने काय बरुक चाहे सास
5: मैं इतले बोले से मैं ये नहीं बोले से कि पाठकुथी जाते रहा पाठकुथी जी ध्यान दे रहा ना ही उनके सुरता कर तो रहा से हम ही भूतकाल के याद करुन बाती आगे बढ़ लो नहीं आगे बढ़ुक होए दे उनके छाणुन दिलो ने आगे बढ़ुक नहीं होए। हाँ यही है कि जैसन की पढ़ाई लिखाई चु बाद में मैं बोले से आज ही हम चो गांव गांव ने बोला असन असन सियान मनासो मानतर उनके पूछ तो रासे उन मन बोले पढ़ लो लिख लो लोग असन अच्छा गोट के सांग दे कसन करतो रहे काय करतो रहे सांगुआ थुन मन ये बे जैसन की ये बे हम चो महोदय बोलला कि कसन आए ये बे सरकार बाट ले नहीं बहुत सारे चीजें कुटीर उद्योग और गांव गांव ने कोई में अगर पढ़े लिखे लेखा मन आसो जुगे जुगे हुन बात हुन गांव ने कहीं गिटी खदान बले आसे नाला और कहीं रेतीज बले आसे आप ले गांव ची हिसाब ने सरपंच माध्यम ने हुनता ने के इकट्ठा होत एसोसिएशन टाइप ची बनाओत हुन मन के हुनता ने दखोत और हुनमन की हुनमन बिक्री भांजीरी करो असन सरकार चो आडरा से असन बल करुक सकत पढ़ला लिखला नौकरी नहीं बल हुन बले नौकरी ले खिंडिक बल तुम मिले दे ये असन बले सहूलियत सरकार बाटले होली से ए सुनाला सोत एबे हम चो समाज बाटले सर्व समाज बाटले सर्व आदिवासी समाज बाटले गोटो के एसोसिएशन बल बनाला सोत लेखा मन हुन चीज के काम कर सोत मैं चाहे से कि हुनमन चो सक्सेस हो रजिस्ट्रेशन वगैरह करला जोन के बल यहाँ से जुड़ तो रहा से अल पढ़े लिखे का मन मन चलक जाऊन बात जुड़त नु हाउ और कलेक्टर साहब महोदय बोले मैं चलक गया बोलून बोले से तुम जीत लो मिलून बात जहाँ से हुन मन के मांगा काम मांगा हूँ काम दाय दे हाउ
3: तो ये तो अच्छा गोटा है मंत्र दिखा कि जैसन की गांव ने तो बलेन कई समाज चो लोग रहसो जैसन की आदिवासी समाज के हटुन बाती दूसर बल समाज चो लोग रहसोत मंत्र का है कि हुन समाज चो लोग बले पढ़े लिखे बल आसोत मंत्र का है कि हुन मन बल का है कि असन हुनर के नहीं जानतो कारण ने नाल फिर सरकार चो जो योजना मनाए हुन के नहीं जानतो कारण ने का है कि आर्थिक रूप ने जोन बले पैसा कौड़ी धन दौलत चो रूप में एवे बल हुन मन आगे नी बाढ़ला से तो तुम जसन बल्लास की एबे आजादी होली तो आजादी हो तो लेक आम के समझ तो रहा है कि आमी कहाँ है बल्ले कोनीज बल्ले धंधा पानी करुक लाए सकूं आरे चुका जे मदद काजे काय की सरकार पूरी आसे हम चु तकलीस काजे पैसा पोड़ी पूंजीपति आए जमीन जायदाद आए ट्रेनिंग आए प्रशिक्षण आए बल्ले ने कहा कि कहीं जो माल आए बिक्री भांजरी सब चुका है कि सरकार बाटी व्यवस्था से मंत्र का है कि ये भी आमचो जोन पढ़े लिखे नौजवान लेखा लेखी चाहे आदिवासी हो चाहे दूसर लोग हो उन सब के पूरे उन बाती आपन खुद के करुक लाए पढ़े दे ते भी आमी का है कि आगे बाड़ुक लाए सकुआ और जसन की मंथर राम नाग भाई फिर तुम चु लग में पूछे से कि आमी फिर असनी सामाजिक जोन हिसाब ने बोलूबे आमचो कई मेरा मंडई पर्व त्योहार मन आसे और ये मन जोन काम आए आम के बलन का है कि बिना बोलोर बिना काकी मतलब जबरदस्ती बोलोर आपनी संपन्न होए से और लोग मन आपनी एते जाए सोत मैं आगे बोल ले कि असन जोन काम आए कि हम करोड़ रुपया खर्चा कर ले बोल का है कि असन कई मंडी बनात रहा है बोल लेने कोई पैसा कोड़ी देवन हाक दी बोलने नहीं आवत मंत्र सन पारंपरिक काम है बोले का है आप निरुंडा हो उनमन की सुरता रहे से तो ये चीज केवल का है कि आम के बचात रहा है तो ये छो का जे बोलने ने तुम जो बाटले
4: तो ये जो है गांव गौली ने एक तिहार संगे संगे बाजार हो से मंडी हो से तो ये एक संस्कार ले जुड़ ली से तो ये संस्कार ने जुड़न बाती उता जानू जसन की गांव गोली ने मंडी आए फलना ताने होए से हैं ये गांव ने होए से एक साल छाड़न बाती दूसरा साल होए से तो ये बोलू भी ये संस्कार ले जुड़न बाती तो हम जो गांव गोली लोग जो है आगे ले जसन की आजादी जो पहले और बाद में बोले तो ये संस्कार चले से ये के सुनन बाती जानून वाती लोग जानू आगे जाए सोत और उन काम के जो है उता जाऊन वाती देवी धाम पूजा पाठ कर सोत तो मैं संग संगे आर्थिक क्षेत्र चो गोट के मैं सांगे से जसन के आगे आजादी पहले ये सुविधा नहीं रही जसन की आम के मछली पालन आए या कृषि क्षेत्र आए या सुअर पालन आए ये कई प्रकार की जो योजना वाले नहीं रही तो ये भी सरकार बाटले आम चो कई प्रकार के योजना हुए से को आगे नहीं जान रोलू आम चो गांव ने बल नहीं चलते रही जैसे मंत्री पालन आए तो गांव में आम चो खेती बाड़ी तो आसे लेकिन तालाब बला से उनता मछली पाल लेने आम के काय फायदा हुए से और काय आमदनी मिरे से उनके जान लेने तो हम ही उन सरकार चो योजना के बल आम धरू खोए दे और नहीं जान ले आम के काय नहीं मिरे उसने सुकर पालन आए जैसे बरा पालन आए उतावले आम की खूब फायदा मिले से उन संगे संगे पढ़े लिखे भाई मन जे को हुनर आसे जे चो लगे अकल ज्ञान आसे उन मन का कर सो तो आजकल सिर में टिटावल बना है गाँव चो गाँव में पानी मिरे से गाँव में गिटी आसे सिर में टाम के धरुक पड़े से उन इटावल बनान बाती आम का छक्की मत गोटो किटाने आम के उतावला आम के मिरे से गाँव चो पानी आए गाँव चो लेबरात गाँव चो ये सब मिर सो तो हम गाँव गोली ने फायदा हुए से ये केवल आम को हुनर रक्त रहा और ये चीज के बले बनाते रहा उसने उसने कई प्रकार के कोसा कोसा पालन लाख पालन है कई प्रकार गांव नहीं लो रोजगार आसे हम तो रोजगार के हमी अभी ये खुशी बनाते बनाते रोजगार के बल हम के बनाते रहा रोजगार मिले नाम का और बल खुशी है ये अमृत महोत्सव अंतर्गत रोजगार मिले तो पूरा परिवार खुशी और उन संगे संगे हम खेती किसानी का ट्रैक्टर बल गेन सको कई प्रकार के कृषि यंत्र वाला हम चल गए दे तो ये चीज की आम की गांव गोली ने पढ़े लिखे हो बाती ये के मसागत ने मूसा मास बलुआत ये सब चीज आम के मिलते जाए।
3: हाँ तो मंत्र राम ना हुए दर्शन की तुम इतलो अच्छा जोन बेरल आम के आजादी मिलने से आम स्वतंत्र होलू से बल्ले कितलो आमी कहीं बल्ले आम चो जीवना के चला तो काजे बोलू बे बल्ले कहीं चे बल काम करुक लाए सकू आपने मन ने सोचो सकू जसन की बल्ले मोरे दादा तुम पूछू है कि तुम बल अपन लो मन ने सोच साच होती कि आम इतलो आजाद होलू स्वतंत्र होलू तेबले बल का है कि लोग बाग बल्ले ने चीज की नहीं कर सोत उन चीज की नहीं कर सोत अपन आगे नहीं बढ़ सोत शिक्षा ने ना आर्थिक रूप ने असन मन ने तुम जो विचार बल ऐसे होती तो ये तुम जो मन चो गोट के में जानुक चाहे से तो असन तुम जो मन नहीं लेने बल्ले ने काय कर लेने होए दे कसन लोग के पूरे उन कसन बाढ़ दका लेने होए दे
5: ये बे हुन चीज के बात पूरी हुन बात करा का चाहिए अभी तो सरकार बांट ले महिला समूह बना ला सोत सरपंच बल बना ला सोत सरपंच मन के बले ऐसा नहीं कि सरपंच मन लो और हम चु काम होतली बोलो नहीं ये चीज के सरपंच और महिला समूह बांटले बले नहीं हुन मन के जाऊन समझोग पड़े दे घर घर ने कि पढ़ लो ने ये फायदा है पढ़ लो ने ये अच्छा होए दे ये सारे चीज के उन्हीं के माध्यम ने होए दे और कसन बलो ने आजकल नहीं कोनी बीती के बोले आगे बढ़ा तो रहा गोटक बात के दस बार बोल लो नाल और गांव के लोग बोले नहीं समझते सत्य आए ना ये बोले से बोलून बाती फिर हुन हिसाब ने आगे बढ़ सो तो ये सारी जो चीज है नहीं सबले आज जसन सरकार बोले से सरकार से बोले हुनी मतलब आए हुनी हिसाब ने बना ली जुगे से जुगे लोग मन के समझोत है कि नहीं समझोत उनके और पीला मन के पढ़तो का पठाओ है नहीं पीला मन पढ़ दे अरे भाई ठीक है नौकरी नहीं मिल लिया ले कम से कम आप लोग ज्ञान वर्जन एक पढ़ाई लिखाई रहे मर तो बेरा मनुक बोले साथ नहीं दे बेटा बोले साथ नहीं दे पढ़ लो लिख रो बोले कहीं कागज पत्री के बल पढ़ुक बोले सके दे एक चीज है पढ़ लो ने ये फायदा है मर तो दम तक के साथ रुआ ये हाँ पढ़ लो लिख लो ने तो ये जो है नहीं ये मैं तो माध्यम हुनी देखे से कि महिला मन जो समूह बना ला सो सरपंच के उन मन की उन बाती कसन बोलो ने सरपंच बोलो ने आज शासन बांट ले राशन मिरे से है कि नहीं कहीं बीती कसन कहीं गाँव चो लोग मन का असन डरा लो नाल और तो नहीं कर सोत का है तू असन कर नाल तू राशन के बंद करूं देंदे है कि नहीं असनी मेलाए मेलाए बोले समझ काज बोलते रहे उनके डरा तो काजी नहीं बोलते रहे उनके नहीं मेरे बाती असन बोलून डरान बाती नहीं पीला मन के पठा दे हुन बोलो ने हुन फट से मान दे गोटू बोल पीला के नी छंडा पढ़ा दे ये सारी चीजें असन बाद में उनचो बाद में नहीं पढ़ा ला बोले आज भी दुख और सुख और दुनिया भर जो आसे है कि नहीं जुगे हुन सिरहा गुनिया लग बल दक्तरा है उनके बल मना नहीं करूं हमी सिरहा गुनिया बल दक्तरा यार अस्पताल आसे गाँव ने नर्स भाई आसे उनचे लोग फटाक नहीं जाते रहे कि असन असन हो से उनके बल दखात रहे तेबे हुन मन खान पीन पढ़ाई लिखाई ये सारे चीज होलो ने हम जो लोग मन शिक्षा बातें आगे बढ़ दे असनी की कर लो नहीं हम चो बीत लोग मन नहीं मैं मचो हिसाब ने अब तक के जसन हम ये बाटू बाट भूलू से सामाजिक बाटले बल्ले शिक्षा ही बाटले कमी नजर ऐसे और बाकी कोनी बाटले खिंडी खिंडी की इम्प्रूवमेंट तो आसे ची ये चीज ये हमन बोले दोकू से हम बोले जाऊंगा हम इस समाज बाटले ये बाटू बाट बोसू तो हमन सांगुआ की पीला मन के पड़ा तो रहा है ये भाई जाऊक दिया ठीक नो है समाज कसन सुधरे दे ये सब हमन बल समझाऊ कि शासन ही चीज नो है नाले ग्राम से ये सरपंच ही काम है महिला मंच नहीं हमन बल समाज लग बोलूआ असन असन नो है कि हम समाज में ऐसे नहीं चिरुआ हम हमन बल बोलूआ कि काय भी थी खा तो रहा है हम तो ये सब मंद मंद मंद के भले जुगिनी पिया ये सब चीज के बल हम समझाइश दीवा हाँ
3: तू बलदेव मोरे दादा तुम्ही इतलो अच्छा सांगलास जसन की आमचो आजादी होरलो बेराले जसन की महिला मंचो गुट तुम्ही निकरला से मन के बले काय की हर क्षेत्र ने बल्ले ने प्रतिनिधित्व आगे बढ़तो काजे मेरे से आरु ये मंचो काजे अलग ले आरक्षण होली से चाहे वो पंच हो सरपंच हो जनपद हो जिला हो मंत्र काय की ये बल्ले आम के दखुकला मेरे से कि आरक्षण कारण ने काय की महिला जोन प्रतिनिधि मनात सरपंच बल बनसोत जनपद ने बल जायसोत जिला ने बले बनसोत मांतर काय की तेबले बले बल्ले काय की काई चीज काई सभा होए से काई अच्छा फंक्शन होए से जोनता ने महिला मन के बोलतो रहे एतान बल काय की महिला मन जाए कि जुगे पूरे नहीं होत बल्ले आम सांगा सुना मिल सोनू से जोसन की कोनी महिला सरपंच आए तो उनचो मनोक बीता के पूरे करे से नाले भाई बीता पूरे करे से नाले कोनी खाए तो ये बले होए से बले ने कहा कि जब स्वतंत्रता होली और महिला मन के बल इतलो अधिकार मिली उन मन बस स्वतंत्र आसोत उन मन बल कहा कि असंता ने आप लो जो दुख सुख आए जो बनात रहे तो एक ही तो उन आपन सांगुक ला सके है कि नहीं काय बोले महिला मन के काय तकलीफ आसे
5: एक बात में सांगे से एकदम सही बात है हमन जे दिन ले हम समझू से अरे बेबल समझू से हम जो समाज ने बायले लेकी सबले आगर बूता करे सर ये बेबल करे
3: सर
5: मनुक ले आगर करे से कसन पर लो ने नहीं ये दखलो रा से जान लो रा से हुनी जो एक ऑटोमेटिकली दबाव कारण में ये खुलून बाती हुन सरपंच गिरी बोले निक रुक सके से तो कम से कम हुनचो मनुक मन के उनके हुनचो काम के बोले घर के हुन मनुक लोग मन हुनचो पुरुष जाति मुगल करो
3: करो
5: तेबे हुन खुल के आए दे कसन बर लो ने देखा ये भी तो खिंडी के एक बात होली की ढेकी उकी खिंडी कम होली
3: कम होली
5: आगे चार बजल धुरुन भाती ढेकी काडुक मुरियाओ ढेकी गाना द्वार बड़ा पानी आंदो थांडी कांदरी के धोत पीला झीला के उठावत गोरस खुआवत फिर कौन तो उन रांदा खानी जो सरा बड़ा करुन भाती कोनाओ तो उनचे बात कह कौन कमाऊ कुलाई गेलो समोनु खुनता ने रांधुन भाती नी खाउन भाती पेज ने उन देवत हुन बाटे पेज ने उन बात हुनता बल पुता करुक लागत फिर उनचे बात ले फिर उन बाती असनी करुन बाती रातली दस बजे तक के काम करो है नी अब हुनी एक चला नीली से एक मनुक लोग मन बोल समझू पड़े दे हो है कि नहीं जबकि सरकार बाटले कानून ने सबके बराबर जो दर्जा दिली से कि भाई हुनमन जो खिंडी बुता के हल्का करुक पड़े दे तेबे सरपंच बोले हुन खुल बाती जसन के अभी तुमन बोलासास की नहीं नहीं हुन जो भाई असन करे सनाल हुन जो मनुक सरपंच बस सही बात है हुनके हुन बाटले हुनके रियायत नहीं मिले से हुन जो आदमी बाटले हुन जो बाटले मिर तो रासे और एक मैं इतलो बोले से असन सरपंच इन भाई मन बोले बनला साथ आले दोनों डोकरा डोकरी गोटिया गोटी हुआ कोई भाई मके इतलो काम के करुक दे तू इतलो काम की तू कर बाटा बटवारा हुन बाती कर लो ने तू समाज चबल काम कर से हुन बल घर चो काम से फिर तू पे घर चबल तो काम कर से ची तो असन जब तक के तालमेल कर लो नहा लो नहीं हुन मन खुलुक नहीं सक दे ये मचो मैं पर्सनली बोले मैं बोले से कि जोन जोन बोले हम चो समाज चो लोग मन असन आसोत नहीं उनमन के मकबले में उनमन के भाई गुआर करे से दखा हो उनमन के खिंडिक तुमन काम धाम ने बोले खिंडिक सहूलियत दिया है नी असन नी बोलू कि भाई तू असन काम करतो रहे तुझे ही काम है बोला बोले नहीं हुन चो काम को बोले हम ही करूं हम चो काम को बोले हुन करे से असन तालमेल बना लो ने दोनों घर बोले अच्छा चले दे समाज बोले अच्छा चले दे सब कुछ अच्छा चले दे
4: तो असनी बलवीर भाई बलदेव दादा तो ये मन जो लाज मेटात काजे ये मन श्रम मेटात काजे आज ही आजकल जो है स्व सहायता समूह महिला मन जो एक अच्छा रास्ता है तो ये मन जो श्रम बल मिटे दे और लाज बल मिटे दे और समाज में आगे बढ़तो काजे एक रास्ता बल खुले से तो महिला मन के आगे आंतो काजे कई प्रकार तो समूह स्व सहायता समूह बन ली थी तो ये समूह में रोन माती नहीं भाई मन शिक्षा क्षेत्र में और हुनर के क्षेत्र में आगे बढ़ला से जसन की खत बना तो काम खत बना तो काम महिला मन काय कर सोत ये जो यूरिया जो सुपर फास्फेट जो रासायनिक खाद है उनले बाज तो काजे किसान मन की काजे ये केचुआ खाद तैयार तो केचुआ खाद बनाते उन मंचो जो बल विधि विधाना से उनके समाज तो सामने रख सोत गाँव गोली ने और ये मन उन खत के दिले ने काय हानि नुकसान आते उनके पूरा सांसद समूह के लोग और उसनी मछली पालन क्षेत्र अंदर समूह बन उन मछली बल बिकुन बाती नहीं आर्थिक स्थिति महिला मन मजबूत बोला थे और इस संग संगे एक जागरूक बल बढ़ ली उन पीला जिला आगे हुनर जो स्तर के प्राप्त करला और उन मंचो खान पान पहनावा है और सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी चीज में जो है ना आजकल ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मने ये त्योहार में उन मन आ गया सो 75 साल के बाद और आगे बढ़ते जाए सो धीरे धीरे ये मन सीख दे एकदम तो है आगे बढ़ तो नहीं सको धीरे धीरे बढ़ दे ये सब चीज गांव गोल इन तो कुलाई मीरे से मयासन समझे से कि ये चीज जारी रहो और कई वैज्ञानिक क्षेत्र में बले है समाज में बले ये वे तुम सरपंच पंचायत बाती ली जो पढ़े लिखे होला जाले उन मन गांव च नेतृत्व बल मजबूत लेकर और जो अनपढ़ होला से है और महिला सीट होली उत पीछे ची आसो उन मनुख काम करे से ना ले उनच कोई सगे समझे रिश्तेदार उनच काम करे से तो ये चो ने कहा कि आम चो समाज आम चो पंचायत खिनिक आगे बढ़ुक नहीं सक किनिक पिछड़े तो आम के शिक्षा में जात रहा है शिक्षा के क्षेत्र में रत रहा है और पढ़े लिखे की प्रतिनिधित्व देत रहा है तेबे आम चो महिला समूह आगे बढ़े दे यही मचो एक सुझाव
3: तो देखा बोले अमृत उत्सव हिसाब ने आम इतना अच्छा गुड बात कर लू जितना आजादी आम के मिरली तेबले बोले तेबे काय के आमी बोले ने धन दौलत चुनती बाढ़ती फिंदा वोड़ा बोले ने कहा बोले आमी जाओ के उकला सकू ये सब गुड बात आराम चुनती बाढ़ती बोले ने कितलो कसन हो से कसन नहीं होली से तो ये सब गुड बात आमी कर लू रेडियो बाटले आमचो गांवकारी भाई बहन मन बल सुनसत होती सुनन बाती हन मनचो मन ने कहीं ना कहीं असन तो विचार ये दे और उन मन बोले ने कहा कि आगे बाढ़ तो काजे नहा काय कमी आसे उन मन चो सोच ये दे और होनी हिसाब ने कहा कि उन मन बोले ने भविष्य ने बोले ने जोन बोल करते रहे उन काम के कर दे और आगे बढ़ दे और घर परिवार संगे संग कहा कि आम चो समाज और देश ने बोलो कहा कि खुशहाली है दे हरी कह दे उदीम है दे तो बलराम मोरे दादा मंधर राम नाग दादा इतलो अच्छा आजी आमी गोड बात कर लू कितलो नंगत रली और आमचो रेडियो सुन तो लोग मन बोले सुनला जानला जरूर कहीं ना कहीं उन मन के उन मन चो मन ने विचार है दे अरे तुम दोनों को खूब खूब जुहार
5: जुहार
1: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास प्रतिभागी थे श्री मंधर नाग और श्री बलदेव मौर्य संचालन था बलबीर सिंह कच्छ का मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं रात के 10:30 हुए हैं प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं पूर्णिमा फिल्म के गीत से आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की गीत है गुलजार का संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने

अगला गीत है प्रोफेसर फिल्म से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का गाया गीत पतिता फिल्म से। शब्द हसरत जयपुरी के हैं, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। गीत रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, नीरज के शब्द हैं, संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का आखिर गीत है फिल्म राम और श्याम से, आवाज है मोहम्मद रफी की, बोल शकील बदायूं के हैं, तर्ज बनाई है नौशाद ने।

0: इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम वेंट पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफी रोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई

महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने